0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, Barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf sahab ya Nabil Ashraf sahab se rabta kijiye 416-466-8782. 416-466-8782. Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service 921 Pape Avenue. अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कैनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777 अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कॉर्पोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनिएंट लोकेशन 6887 डिक्सी Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center. Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough mein 2155 Lawrence Avenue East Lawrence or Bridgemount ka intersection 416-757-9999 Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie intersection 905-232-4000

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
3: जी हाँ, 416-710-6777 शम्स रहमान साहब के रास्ते का नंबर है। इनाम घर ईद फेस्टिवल जो 23, 24, 25 और 26 तारीख को होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में, जहां के लिए बेशुमार बेशुमार एंटरटेनमेंट है। इनामात भी हैं, इनाम घर भी है और कॉम्पिटिशन भी हैं, क्विज भी है, बहुत कुछ होने वाला है और स्पेशल स्पेशल आपके लिए ऑफर भी लगा दिए शम्स रहमान साहब ने। नंबर आप नोट कर लें आप, और इसके साथ फौरी तौर पर आप रब्ता कर लीजिएगा 416-710-6777। हमारे साथ मौजूद है खुशामदीद कहेंगे। शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
3: शम्स भाई कैसी तैयारियां चल रही हैं, कुछ स्पेशल ऑफर आप हमारे सुनने वालों को देना चाह रहे हैं? सुना है?
4: जी बिल्कुल, अब चूंकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं तो मैंने कहा जबरदस्त किस्म की एक ऑफर लगाते हैं। बहुत थोड़े से स्टॉल रह गए हैं, जो लोग हमसे आज बुक करेंगे हम उनको चारों दिन दे रहे हैं $500 में, $500 में चारों दिन। और अभी तक ये हमने बेचे हैं $800 के, सिर्फ आज के लिए हमने लगाया है $500। और थोड़े से हमारे ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल की थोड़ी सी गुंजाइश है, तो जल्दी से कॉल करें और अपना सिक्योर करें अपना स्टॉल।
3: नंबर टू कॉल इज 416-710-6777, 416-710-6777। अच्छा अभी आप वैसे तो बताते रहते हैं जबरदस्त एवरीडे गोल्ड का प्राइस मिल रहा है, इनाम घर के इनाम भी होंगे, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है और कैसी तैयारियां चल रही?
4: जी हमारे 4 दिन हैं और चारों दिन हमारे शोज हैं डिफरेंट किस्म के। अलकरम ज्वेलर्स जो हैं वो हर रोज एक सोने का इनाम देंगे जीतने वालों को। पहले दिन हमारा फैशन शो है और दूसरे दिन हमारा सिंगिंग शो है, तीसरे दिन हमारा फैमिलीज का शो है और तीसरे दिन ओल्ड जो हमारे मदर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए है और बड़े अच्छी गेम्स उनके लिए बनाई हैं हमने सीनियर्स के लिए। और लास्ट डे पे शाजिया हुसैन होस्ट कर रही हैं, बड़ा जबरदस्त शो और वो फैमिली शो है। तो चारों दिन जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी है और चारों दिन इनामात मिल रहे हैं और इसमें खाने पीने के सारे स्टॉल्स हैं। आप आएंगे, शो भी देखेंगे और खाना पीना भी करेंगे। और आज कॉल कर लीजिए और अपना स्पॉट सिक्योर कर लें, आज हम स्पेशल दिया हुआ है इस पे।
3: और आप प्रोग्राम जो है वो दोपहर से लेके रात गए तक, मिडनाइट तक जारी रहेगा?
4: 12 बजे से रात 12 बजे तक, दोपहर 12 से रात 12 तक खरीदारी कर सकते हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो शाम 6 से रात 12 तक चलेंगे।
3: और जनाब आप इसका फायदा उठा लीजिए, 4 डेज स्टॉल आपको सिर्फ $500 में ऑफर कर रहे हैं। शम्स रहमान साहब से भी राब्ता कर लीजिए 416-710-6777, 416-710-6777। कुछ और ऐड करना चाहेंगे शम्स भाई?
4: जी बिल्कुल, जो लोग ट्रेड शो पे जाके $10,000 देते हैं आज उनके पास मौका है, सिर्फ $500 में वो अपनी प्रोडक्ट मुतारफ करा सकते हैं। हमारे पास आके टेबल बुक कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए।
3: और जनाब कैपिटल बैंकेट हॉल मशहूर है ईद बाजार के हवाले से, हजारों की तादाद में लोग वहां आते हैं, आप इस मौके का फायदा उठा लीजिए, अभी कॉल कर लीजिए 416-710-6777। थैंक यू मैम शम्स भाई, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
4: बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
3: नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003। सर अदली की खूबसूरत आवाज, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशात आपकी समातों की नजर।

0: FM Toronto. आवाज का सफर दिल से दिल तक.
1: अलकरम ज्वेलर्स. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: 2nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
2: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 9052829868।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
3: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 4162063200। It's 416-206-3200.
4: पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ्त के हमरा आज़रबाईजान के दारुलहुकूमत बाकू में हैं। उन्होंने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब के पायदार और कम लागत हाउसिंग मनसूबे अपनी छत अपना घर को आलमी शहरी फोरम में पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तामीर 1,60,000 घरों में से 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं और 1 साल से भी कम अरसे में खानदान अपने नए घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम ही वज़राए आला को ये सहूलत हासिल होनी चाहिए कि वो भी अपने सूबे के जो कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं उसे दुनिया के सामने पेश कर सकें। 416-593-0003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM।

0: चले आप अगली कॉल ले लें, बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा चले 8156 अपॉन है सर 8156।
2: हेलो
1: जी जी सर,
2: लेकिन बिजली की जो कीमतों का बात हुई है अभी तो पाकिस्तानी रुपए में 400 है, अगर इंडिया में 100 रुपए उनका तो पाकिस्तानी रुपए में 300 ही बनती है,
1: यानी
2: इंडिया में कम है।
1: ठीक है,
2: जो इन्होंने चैलेंज किया है और मैं स्टडी करके इंशाल्लाह कल आपको
1: चले सर ठीक है
2: करूंगी।
1: ठीक हो गया,
2: 25 साल जो उम्र करने की है
1: मेरा, वो सब लोगों का पहला शोषा ही छोड़ा। अच्छा,
2: वो जिन्होंने फैसला हो जो है जिस तरफ है वो उस तरफ ही रहने, कोई चेंज नहीं होना। और जो 28वीं टर्मिन
1: जी जी
2: 28 वो तो यही कह रहे हैं ना, आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट बनाना नंबर वन प्रायोरिटी, उसके बाद तालीम और हेल्थ में सूबों से खत्म करके फेडरल को दे देना है। फेडरली प्रोग्राम है कहता हूँ, हाँ जी वो ठीक है, वो जिस सूबे में जितने पैसे जा रहे हैं उनको कह के भाई आप खुद ही कलेक्ट करें, खुद ही बांटे, वो हो सकता है। बाकी तालीम वो हेल्थ को, केपीके में सारा काम ही जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर चल रहा है, लाखों लोग उससे मुस्तफीज हो गए, वो फेडरल ले लेगा खत्म कर देगा तो बहुत वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होगी।
1: ठीक ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुजा भाई आप ऑन एयर, उसके बाद 6026 को ऑन एयर करेंगे। जी शुजा भाई,
3: वालेकुम
1: सलाम। जी वालेकुम सलाम
3: भट्टी साहब, क्या हाल चाल है?
1: जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं।
3: भट्टी साहब देखिए 18वीं तरमीम मेरा ख्याल में बहुत जल्दबाजी में यूसुफ गलानी साहब ने, जरदारी साहब ने मिलके पास की थी और उसके बेनिफिशियरी भी सिर्फ सिंध को बनाया, उसका बेनिफिशियरी सिर्फ सिंध है जिसे जो इसको एडवर्सली यूज कर रहा है। देखिए उसके खदोखाल में आपने आपने यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जाना था, पे फंड्स वहां तक जाने थे, आप कहाँ ले जा रहे हैं, ना आप कराची में लगा रहे हो ना आप इंटीरियर सिंध में लगा रहे हो, उनको उन बेचारों को उनको उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं इंटीरियर सिंध में सूबे। जब तक भट्टी साहब 28वीं तरमीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है छोटे सूबे, छोटे सूबे आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की देनी है। आपको कराची की जो उसकी उसके जो खदशात हैं आपको लेने पड़ेंगे, आपको साउथ पंजाब
1: से कराची के खदशात नहीं, साउथ सादकाबाद से लेके आप पिंडी तक देखें एक सूबा है, ये कितनी बड़ी जगह, इधर सूबे बनने चाहिए,
3: बड़ा सूबा नहीं चला सकते भट्टी साहब। मैं दूसरी बात साहब ये जो कहते हैं कि मरसू सिंधना भाई सिंध क्या तुम्हारे चाहते हैं क्या?
1: नहीं नहीं क्या है मतलब सर, तो पंजाब वाले भी नहीं नहीं आप इस, मतलब किसी नहीं ये ना करें ना, इस तरह रेफरेंस ना दिया करें शिवजा साहब, मतलब वो भी अपने भाई पे वतन है, वो अपने सूबे और मुल्क के लिए वतन है, हम सब मुल्क वतन होते हैं
3: सर। बेला डैम बनने नहीं दिया गया, आप देख लीजिए
1: बन गया, तरबेला ही बना हुआ है, मंगला ही बना हुआ है,
3: सॉरी
1: कालाबाग डैम नहीं बना,
3: कालाबाग डैम बनने नहीं दिया, नहरें आप बनने नहीं देते, आप पानी को समुद्र में फेंक रहे हो और फिर ऊपर से 18वीं को मिस यूज कर रहे हो। देखे छोटे सूबे, फिर आखिरी वन लाइनर बिलाएगा, पाकिस्तान के बका और डेवलपमेंट और ग्रोथ सूबे छोटे बनाने में ही है।
1: बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 6026 जी, 6026 सर आप ऑन एयर बात कीजिए। 6026 अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से?
4: शुक्र अल्लाह, आप सुनेंगे कैसे?
1: बिल्कुल ठीक, बड़ा दिन बाद आपकी आवाज सुनी।
4: अच्छा और बस
1: जी सर, क्या कहते हैं आप ये 28वीं तरमीम और
4: लेकिन अभी 28वीं तरमीम की बात कर लें, इससे पहले कितनी तरमीमें आई हैं और कहा जाता है कि इसको पहली 18वीं तरमीम को बहुत जल्दी में हुई भी थी। मुझे एक तरमीम बता दें जो बड़े ठंडे दिमाग से बड़ी आज तरमीम है, उनको टाइम दिया जाता है जल्दी साइन करो। हाँ। आप, मैं यकीन से कहता हूँ कि असेंबली के लोगों से पूछेंगे तरमीम में क्या होता है,
1: पता ही नहीं होता,
4: लोगों को पता ही नहीं होता है तरमीम होती क्या है। तो जिन्होंने ये पीपल्स पार्टी क्या अड़ेगी या नून लीग क्या अड़ेगी, जिन्होंने भेजनी है उन्होंने करवानी है,
1: खुद ही करा लेंगे, सही,
4: वो भी खुद ही करा लेंगे, ये सिर्फ ये होगा, ये डिबेट होनी सर, किसको पागल बनाया जाता है। बाकी नून लीग क्या आप मुझे बताएंगे, पहली दफा गवर्नमेंट में आई है, कितने और गवर्नमेंट में अब इनका जैसे उड़ा रही है नून लीग, आप मुझे बताएं कि कितने एमओयू साइन हुए, कोई एक इन्वेस्टमेंट तो बताएं कि भी हमें कल मुझे बता दीजिएगा कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है जो बड़ी। सर हम तो आईएमएफ के इंतजार कर रहे होते हैं कि जो सारी हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, आईएमएफ इनका भाई कब हमें कर्जा देना है सर आपने, कब हमें हमारा गवर्नमेंट चलनी है, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं जी ये चला देना ये चला देना, सर प्रैक्टिकल
1: बात कीजिए। जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाए। ठीक
5: है, बात यह है कि ये जो तरमीमें है ना, पहले तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होके साउथ पंजाब में भी जाता रहा हूँ और इंटीरियर सिंध बहुत जाता रहा हूँ, थर्ड तक में जाता रहा हूँ मैं, पूरी पाकिस्तान में बहुत प्रोजेक्ट किए। बात यह है जनाब, जिस चीज में नीयत खराब है ठीक है, और जिस जगह पे डेमोक्रेसी नहीं इंसाफ नहीं है ठीक है, वहां आप 18वीं तरमीम 28वीं तरमीम 50वीं तरमीम ले आए, आप सिर्फ मुल्क को कमजोर करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये फेडरल के पास सब लेना चाहते हैं और फेडरल के पास कौन है पीछे, ये फौज है, फौज को पैसे चाहिए, फौज अपना बजट की वो नहीं कराती, ऑडिट नहीं कराती, जंग जीती ये किया वो किया। अभी ये एक खबर में आपने पढ़ा कि उनको हम पता नहीं दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये कहो भाई जिस दुनिया में आप बैठे हुए, अमेरिका जैसा ईरान को नहीं मिटा सका तो आप किसको क्या मिटाओगे। आपको अपनी तरक्की पे तवज्जा दो, अपनी गुर्बत पे तवज्जा दो, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करो, लोगों के लिए रोजगार करो, वरना ये कहानियां मत सुनाओ, जाओ जहां से आए हो।
1: चले थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया, आज इतनी कॉल ले सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह उम्मीद है कल बिलाल साहब होंगे हमारे साथ और फिर इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया आज जो है इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो में आज शूटिंग का एक वाकया हुआ है जहां पे तीन अफराद जो है वो उनकी हलाकत हुई है, टीनेजर से दो कहा जा रहा है जिन्होंने शूटिंग की, और उन्होंने अपने आप को भी चंद ब्लॉक्स जो है वो बाहर दो जाके अपने आप को भी शायद शूट कर लिया है। और इस मौके पर जो पुलिस चीफ हैं वो कह रहे हैं कि इसको एज एन हेट क्राइम भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया, अल्लाह रब करीम आसानी करे सबके लिए, और कल होपफुली इसके ऊपर मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना बल हौसला भी खोने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो यू हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी एक मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर, मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माल।

கடை அவ வந்ததனால.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
3: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
4: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
3: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
5: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
6: CMR FM 101.3 लवी डवी शो पर आप सभी का स्वागत है। आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है ये सफ़र। ट्यूसडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है। लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आपने इंजॉय किया होगा अपने लव्ड वंस के साथ, बहुत खूबसूरत से लम्हों के साथ, बहुत सुंदर से पलों के साथ और अपनों के बहुत सारे प्यार के साथ आपने ये तीन दिन अच्छी तरह से बिताए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और नया हफ्ता शुरू हो चुका है। लॉन्ग वीकेंड के बाद का हफ्ता बड़ा छोटा होता है, क्योंकि मंडे का दिन जब छुट्टी में निकल जाए ना, तो यकीन मानिए फ्राइडे आने में और सैटरडे आने में देर नहीं लगती है। छोटा हफ्ता होता है और ट्यूसडे के बाद से तो ऐसा लगता है कि हम मिडल ऑफ द वीक में पहुंच गए। और मौसम ने क्या खूब साथ दिया। समर ने अपनी दस्तक बहुत प्यारी तरीके से, खूबसूरत तरीके से, चमकते दमकते तरीके से दिखाई। 21 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। ज़्यादातर मौसम आपको सनी ही मिलेगा आज। और अगर हम दोपहर की बात करें तो आपको करीब 28 डिग्रीज़ तक टेम्परेचर मिलेगा। तो भरपूर फ़ायदा उठाइए इन समर के कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का, और सुनते रहिए लवी डवी शो 416-303-3639। गुड मॉर्निंग।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374।
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 4378296023। इट्स 4378296023। मास्टर धनिक महाराज।
3: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
6: कॉल सैयद एम रजा 4169375046, दैट इज 4169375046।
7: द लवी डवी शो, ड्राइविंग यू होम, अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड, ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो Canada, Monday to Friday.
8: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, 23 मई से 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू होने जा रहा है और बहुत लिमिटेड एक या दो सीट्स बची हैं क्योंकि स्मॉल साइज क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है। और लेकिन एक महीने में आप एक ऐसा स्किल सेट के साथ प्रोफेशनल बन जाते हैं, होल लाइफ का आपके पास एक हुनर आ जाता है। एक स्मॉल अमाउंट देकर आपको जिंदगी भर में किसी और की के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी और के ऊपर एक फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से आप अपने मास्टर खुद होते हैं, अपना प्रमोशन खुद करते हैं। कैसे हमें ये कर पाते हैं हमारे लिसनर्स, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या उसमें सिस्टम रहता है, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर रहते हैं?
9: सबसे पहले तो शिवानी, ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि 23 मई ये सैटरडे का दिन बनता है, अभी चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। आप रजिस्टर करवाइए डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के इस कोर्स में। आपको बता दें शिवानी कि ये वाहिद कोर्स है
8: जी
9: पूरे कनाडा में जो हम करवा रहे हैं। हमारे अलावा ये कोर्स इस नौयत का, इस नेचर का, इस टाइप का कोई नहीं करवा रहा
8: जी,
9: है
8: जी।
9: 40 घंटे की ट्रेनिंग है, 40 घंटे की ट्रेनिंग ले लेंगे, अपनी मार्केटिंग खुद कर सकेंगे
8: जी,
9: अपनी सेल्स खुद कर सकेंगे, अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट खुद कर सकेंगे, कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के जितने भी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करके खुद प्रमोट कर सकेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाना आपको सिखाएंगे
8: जी,
9: उस पर कंटेंट कैसे डालना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है। कॉन्टैक्ट कीजिए, इनरोल कराइए 4163033639। रजिस्टर कराने के लिए 4163033639।
8: 416-303-3639 पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-303-3639। आमिर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक महीने में सिर्फ 8 दिन हमारे जो लिसनर्स हैं जो एनरोल करेंगे उनको आना है 1 बजे से 6 बजे तक, बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, जल्दी भी नहीं उठना, वीकेंड पे सब अपने आराम से उठते हैं, थोड़ी मसरूफियत दूसरी रहती है, और 6 बजे का फ्री भी हो जाएंगे टू इन्जॉय द इवनिंग विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस। तो बड़ा कन्वीनियंटली ये रखा गया है टाइमिंग भी आपने 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन?
9: बहुत अच्छा सवाल है शिवानी, मैं आपको बता दूं इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। प्री रिक्विजिट किसी ऐसे कोर्स को कहते हैं जो अगला कोर्स करने के लिए ज़रूरी हो। आप बैक होम से 10वीं जमात पास हैं, यानी आपने मैट्रिक किया है, आप प्लस टू हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं। मुझे इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं शिवानी, मैनी पीपल आर इंक्वायरिंग अस, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर भी हमारी इसकी प्रमोशन चल रही है, हम रेडियो पर भी अक्सर इसकी बात करते हैं, डे इन एंड डे आउट पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग अबाउट द कोर्स। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो हम आपको इस कोर्स पर इनरोल कर सकते हैं। और शिवानी, इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर महीने भर का ये कोर्स करें, उसके बाद हम आपको 1 साल के कोर्स पर चढ़ा देंगे जिसमें आप फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।
8: वाओ, ये फंडिंग क्या होती है और कैसे मिलती है?
9: गवर्नमेंट फंडिंग। 1 साल का कोर्स इसके बाद आप करें अगर, तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आपको लौटाना नहीं है, और वो पैसा कितना हो सकता है, 45,000-55,000 तक भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। सो पहले आप ये कोर्स कीजिए, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, जो कि 1 महीने का होगा, यानी 8 दिन आपको आना है, 1 से 6 बजे के बीच में, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद एक ऑनलाइन कोर्स होगा, वो 1 साल का होगा ऑनलाइन कोर्स, और उस पर आपको भारी भरकम किस्म की फंडिंग मिल सकती है। मान लीजिए साल का अगर 50,000 मिला तो वो तकरीबन कमोबेश महीने के $4,000 बनते हैं, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है ये। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए और रजिस्टर कराइए, 416-303-3639।
8: जी, और आमिर, ये हम अपने जो हमारे इस वक्त क्लाइंट हैं, रियल्टर्स हैं, या फिर ब्रोकरेज के ओनर्स हैं, या फिर ऑफिस के कोई स्टाफ को अपने ये कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक ग्रुप जो कोर्स है वो भी हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि अपने स्टाफ मेंबर्स को या फिर ब्रोकरेज में अपने रियल्टर्स जो टीम है उनको आप ये एज अ ग्रुप ये कोर्स करवा सकते हैं, जिससे कि सब लोग अपने हिसाब से, इस ब्रोकरेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि सब लोग प्रोफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं और प्रोफेशनल बन चुके हैं अपना अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करने के लिए, अपना वर्चुअल टूर को प्रमोट करने के लिए। तो इन सब के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639। इस सैटरडे से एक कॉल शुरू होने जा रहा है और जल्द से जल्द कॉल कीजिए, और जो लास्ट कुछ सीट्स बची हैं उनमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं 416-303-3639। आमिर, ये वीकेंड गया है, लोगों ने कैचअप किया है अपने दोस्तों को, यहाँ पे इस कंट्री में एक चीज़ है कि किसी से बात करने के लिए भी वीकेंड का इंतज़ार करना पड़ता है, दोस्तों से बातचीत करने के लिए। तो दोस्त के ऊपर किसी ने कहा है, जब याद का एल्बम खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
9: कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
8: जब याद का एल्बम खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
9: वाह।
8: अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाके मुद्दत से। मैं देर तलक अगर जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
9: बहुत खूब।
8: कुछ बातें फूलों जैसी थी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं सारे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
9: बहुत खूब।
8: वो पल भर की नाराजगी वो मान भी जाना पल भर में। अब खुद से मैं जब रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
9: वाह वाह। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती कि यादों से कोई रात भी खाली नहीं जाती।
8: क्या बात है।
9: तुम प्यार से मांगो तो हम जान भी दे दें, कि तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती।
8: क्या बात है।
9: आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती कि यादों से कोई रात भी खाली नहीं जाती। और शिवानी, ये यादें इंसान का ताकुब करती रहती हैं सारी उम्र, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी इंसान इधर उधर के कामों में मसरूफ हो जाता है और यादों से पहलू तही करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये हर किसी पर डिपेंड करता है कि उसकी यादें कैसी हैं। कुछ लोगों का बचपन बड़ा महरूम गुजरता है, बड़ा डिप्राइव्ड बचपन होता है, नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से बिल्कुल दूर, कहीं परे, तन्हा, वीरान सा बचपन होता है। उनकी भी यादें होती हैं, लेकिन वो तल्ख यादें होती हैं, तकलीफ दे यादें होती हैं, परेशान कुन, अजियत देने वाली यादें होती हैं। इंसान उनसे फरार चाहता है, सारी ज़िंदगी उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। और कुछ यादें बहुत ही मरमरी सी, नाजुक सी, हसास सी, मखमली सी, खूबसूरत सी, और हमेशा उनमें खोए रहने को दिल करता है। जैसे अगर आप बचपन में आपकी तरह बहुत शरारती रहे हों।
8: नहीं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं शरारती हो सकता, आप तो बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए, मेरे कंपैरिजन में, मैं बिना आमिर का बचपन देखे मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मुझसे वो बहुत कम शरारती रहे।
9: नहीं, मेरा बचपन तो बे इंतहा मासूम था। वाह। खैर, उस
8: तो बचपन का सर आज पूरी हो रही है।
9: नहीं, उस
8: बचपन, आई हैव लिव्ड माय लाइफ,
9: उस बचपन का 90% अब भी मुझ में मौजूद है। यानी वो इनोसेंस अब भी मुझ में मौजूद है। सो मेरा बचपन बहुत इनोसेंट था। मैं बात कर रहा हूँ बचपन की उन यादों की जो बड़ी खुशगवार होती हैं। अगर आप इस्केपिज्म चाहते हैं, आप दुनिया की इन झंझटों से निकल के एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग गुमसुम ही रहते हैं। आप उनको बुलाने की कोशिश करें, उनको पुकारने की कोशिश करें, दे आर लॉस्ट, वो कहीं और ही पहुंचे हुए होते हैं। फिर आपको हाथ पकड़ के उनको जरा थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, हेलो, बात सुने। तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरी तरीन दिन गुजार लिए होते हैं और वो उन्हीं में जी रहे होते हैं। मान लीजिए आपने आधी छुट्टी के वक्त स्कूल में किसी से छीन के उसके टिफिन बॉक्स में से निकाल के खाना खाया हो,
8: उसका टेस्ट आज भी याद है,
9: जैसे आपको याद होगा।
8: हाँ।
9: तो
8: खाने के बारे में और शरारत के बारे में यू कैन नॉट बीट मी।
9: लेकिन एक बात आप में जो इससे भी कहीं ऊपर की है और अच्छी है, आपको खाना खिलाने का बहुत शौक है, विच आई पर्सनली लाइक अ लॉट बिकॉज आई एम वन ऑफ द बेनिफिशरीज।
8: और आमिर, देखिए, आपने भी बहुत खूबसूरत सी यादों की बात की बचपन की। दोस्तों में और फैमिली में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते थे हमारे बचपन में। दोस्त के बिना भी रहना मुश्किल था,
9: बिल्कुल,
8: फैमिली तो फैमिली है।
9: हाँ जी।
8: लेकिन दोनों में बहुत एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि अगर हम बहुत बड़ी गलती कर देते थे और उसके बाद कॉल करते थे घर में, तब फ़ोन तो चलो इतना करीब, तब पता चलता था, मम्मी पापा को बताते थे कि ऐसा ऐसा हो गया, कार टूट, हमारी बाइक टूट गई या साइकिल गिर गई या हमारे हाथ पैर टूट गए, तो उसको फिक्स बाद में किया जाता था। पेरेंट्स दो चार लगा देते थे पहले और डांट पहले पड़ती थी। दोस्त क्या होते थे कि सबसे पहले कुछ कांड हो गया है तो पहले दोस्त को उधर से निकाल के।
9: मुझे दो तरह के दोस्तों से बहुत इख्तिलाफ रहा हमेशा। एक तो गरीब दोस्त।
8: अच्छा, इससे याद आया, शाहरुख खान जो है, ही इज अ वेरी सुपरस्टार और बड़े अच्छे एक्टर हैं और उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं।
9: जी जी जी।
8: वो कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से, मतलब मैंने, आई थिंक ही लॉस्ट हिज फादर जब वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, उनके उसके बाद उन्होंने सारी उनको फेम मिला अपने मदर फादर के जाने के बाद। तो हमेशा याद करते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं एक चीज़ के लिए मुझे दुख है कि मेरे ये जहाँ मैं हूँ अभी, वो मेरे पेरेंट्स देखते मुझे
9: हाँ।
8: उन्होंने स्ट्रगल करते हुए देखा, इस तक तो पहुँचते नहीं देखा। तो कहते अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे वो गुर्बत, गरीबी, इससे बिल्कुल नहीं जाना।
9: नहीं
8: तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहते हैं कि मुझे गरीब का रोल कभी मत दे। मुझे हमेशा एक वेल ऑफ बनाना, उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
9: तो ये जो दो तरह के, या थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, ये जो दो तरह के लोग हैं ना, ये कभी इंसान की जान नहीं छोड़ते, उसको मार के ही दम लेते हैं।
8: आमिर का भी थोड़ी तबीयत यही है, कभी इफ मैं उनको बोलूं शो के हवाले से कुछ भी चीज बोलूं,
1: तो जब हैप्पी चीज होगी, प्रॉस्परस वाली चीज होगी, ही वुड रिएक्ट, अदरवाइज ही वुड चेंज द टॉपिक.
9: सो एक तो गरीब दोस्त है, और दूसरी क्वालिटी जो कमोबेश तकरीबन हर दोस्त में पाई जाती है वो है कमीने दोस्त. जो
1: और कंजूस.
9: कंजूस और कमीने दोनों ही. मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं.
1: कंजूस है इसलिए वो है.
9: तो यानी वो दोस्त भी बज़ाहिर दोस्त होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, आप लड़ेंगे आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन अदावत भी उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा होती है, टांग भी वही खींचते हैं सबसे ज़्यादा, आपको धक्का भी वही देंगे, आपके साथ शरारत भी वही करेंगे, आपका कॉन्सर्ट का टिकट चुरा के खुद चले जाएंगे. इस तरह के जो दोस्त हैं ना, आई स्टे अवे फ्रॉम देम, मेरी जान जाती है जितने भी वो दावे करें कुछ भी करें, लेकिन ये दो चीज़ें किसी दोस्त में नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है.
1: और कुछ दोस्त इतने पजेसिव होते हैं कि इतना लड़ लेंगे, मारपीट भी कर लेंगे, और वो ये हक अपना ही समझेंगे. दूसरा अगर आपके बारे में कुछ भी कह दे तो मतलब उसको मतलब इनफैक्ट ही वुड डू एनीथिंग टू हार्म दैट पर्सन, कि ये तो मेरा था, मैं कुछ भी कहूँ, तुमने कैसे कहा मेरे दोस्त के बारे में, राइट. वो दोस्त
9: बिल्कुल, मुझे लगता है दोस्ती दो से शुरू होती है. और इसमें देना बहुत ज़रूरी है. खुलूस है, मोहब्बत है, चाहत है, वक्त है, और मयारी वक्त, क्वालिटी,
1: सेंस ऑफ गिविंग.
9: बिल्कुल, सेंस ऑफ गिविंग है. और दो से मुराद दो गिनती वाला दो भी है. यानी दोस्ती दो के दरमियानी होती है. टू इज अ कंपनी, थ्री इज अ क्राउड. हाँ, तो जब तक दो लोग आपस में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब तीसरा बीच में पड़ता है ना, तो वो केऑस पैदा कर देता, वो खिचड़ी बना देता. और ऐसी कुछ खिचड़ी बनती है, वो कहा ये जाता है हमारे वहाँ लाहौर में, कि आप बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कोई तीसरा बीच में आ जाए तो पहली भी जाती रहती है.
1: एग्जैक्टली.
9: तो इसलिए कोशिश करें कि अगर दो के बीच में मामला है तो वो दो के बीच में ही रहे. कोई तस्फिया करना है, तसल्ली तशफ़ी देनी है, गलत फहमी का अजाला करना है, तो वो दो के बीच में ही हो, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा.
1: इससे क्या होगा, सुकून भी रहेगा, अमन शांति रहेगी दुनिया में.
9: बिल्कुल,
1: तीसरे
9: बिल्कुल.
1: तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. वो दो ही निपट लेंगे आपस में, राइट.
9: आप सुन रहे हैं लवी डवी शो, आपका हमारा ताल्लुक ये जुड़ा रहेगा आज 11 बजे तक. स्टे ट्यून्ड.
1: 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
5: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: पंजवां महान 3 दिनों का कीर्तन दरबार, मई 16-17 दिन शनिवार अते ऐतवार दोपहर 3 बजे लेके रात 10 बजे तक, मई 18 दिन सोमवार 12 बजे लेके शाम 7 बजे तक,
7: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्डन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पद्म श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहिब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एले वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत नूं कीती जा सकती है 6474481000। 647-448-1000। सेवा भेजन वास्ते seva2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
9: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
8: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटे का पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शियाटे का पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
6: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
7: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
8: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639। 39
7: जी। और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
8: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं, कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना रहे, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिज़ाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड। शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए, 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639
7: जी, 416-303-3639।
6: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639 और बहुत खूबसूरत सी ये गज़ल वो आपके लिए। मीना कुमारी बड़ी अच्छी गज़ल लिखा करती थी और जितनी अच्छी वो अदाकारा थी उतनी अच्छी वो लिखती भी थी और बड़ी एक हमेशा उनकी यू नो गज़लों में एक दर्द होता था। मैं शायद उनकी ज़िंदगी की वजह से या जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरी उसकी वजह से हमेशा उनकी अब ये लगता था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं या कुछ ऐसा जो सोचा था उन्होंने वो नहीं हो पाया। आपने उनकी गज़लें सुनी हैं उनकी लिखी हुई?
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमेशा उनकी एक एक दर्द लगता था कि वो आंखों में आंसू लिए लिख रही हैं। ये भी कला होती है, ये भी एक आर्ट होती है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। हमेशा ऐसा लगता है कभी कभी कि दर्द कुछ ज़्यादा है, लेकिन एक ये भी एक हुनर होता है जो हर किसी में नहीं होता। क्या कहते
1: बात, अगर शायरी की करें तो दो बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसमें। लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से बात की जाए, चाहे आप बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, सफ़रनामे लिखते हैं आप, नावल लिखते हैं आप, कहानी नवीस है कहानी लिखते हैं, या फिर आप बहुत पाए के शायर हैं, दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो कहता है कि आप किसी को देखें, इबरत पकड़ें, किसी को देखें, उसका मुशाहिदा करें और लिखें। यानी कोई इश्क में मोहब्बत में मुबतला हुआ, रुसवा हुआ, उसकी तजलील हुई, वो परेशान हुआ, जुदाई सहनी पड़ी, तवील रातें देखनी पड़ी, बेचैन वीरान दिन देखने पड़े जुदाई में, तो उसको देखें और लिखें। आपके कलम में जान आएगी, आपकी तहरीर में जान आएगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यानी मकतबाए फिक्र ये कहता है कि जब तक आप उस एहसास में से खुद ना गुजर जाएं, आपके कलम में वो ताकत नहीं आती, आपकी तहरीर में वो रंग नहीं आता। यानी इश्क में जब तक खुद मुब्तला नहीं होते तो इश्क के बारे में लिखना बेमानी होगा। आपको पहले इश्क करना होगा तभी उस बारे में लिख पाएंगे आप। और कुछ तो बेचारे हर तीन महीने बात कर लेते हैं
0: और उसी शिद्दत से करते हैं जैसे ये पहली बार हुआ।
1: देखिए ना, ये भी इश्क का हक अदा करने के बराबर है कि हर तीन महीने बात करें और इस तरीके से करें कि ये पहली ही बार जिंदगी में कर रहे हैं आप और ये पहला ही इश्क कर रहे हैं,
0: मल्टीपल हक अदा हो गए।
1: देखिए, अगर तो आपको अपनी शायरी में तनव्वो लाना है, तनव्वो उर्दू में कहते हैं डाइवर्सिटी को,
0: अच्छा,
1: नए नए रंग लाने, नए ख्याल लाने, नए तस्वुर लाने।
0: एक तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी, बड़ा जेन्युइन सा, मैं आपकी फ़ैन हूँ आपके उर्दू की लैंग्वेज की, लेकिन हमारे लिसनर्स तो शायद मुझसे भी कई ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। एक रेगुलर लिसनर है रेनू लखानी जी, वो इस वक्त ज़रूर सुन रही होंगी। वो एक्सरसाइज करती हैं, बड़ी एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करती हैं और जब से 9 से 11 के टाइम में उन्होंने अपना टाइम किया हुआ है अपने रूटीन को, वो बाहर टहलने जाती हैं, अच्छा, अपनी एक्सरसाइजेस करती हैं, तो वो जब आपका इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, अच्छी बात है कि आप उसको एकदम ट्रांसलेट करके समझा देते हैं, वो तुरंत डायरी में नोट करती हैं।
1: अरे वाह।
0: और फिर उसको उस दिन अपनी किसी भी सेंटेंस में ज़रूर इस्तेमाल करती हैं।
1: बहुत अच्छा, ये किसी भी लफ्ज का बेहतरीन इस्तेमाल है कि उसको जुमले में इस्तेमाल किया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: उससे उसका मफहूम वाज़ेह हो जाता है। तो बात तनव्वो की हो रही थी कि अगर आप तनव्वो चाहते हैं अपनी शायरी में तो उसके लिए जरूरी है कि इश्क किया जाए और बार बार किया जाए और मुख्तलिफ लोगों से किया जाए। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ना कि किसी एक ही शख्स से बार बार इश्क करते रहते, तो ये शायरी है।
0: तू ही रे टाइप का गाना आपके लिए आपके लिए नहीं है
1: आपके लिए नहीं, एग्जैक्टली। सो तो ये दो मकतबाए फिक्र हैं। तो वो लोग जो खुद इश्क करके इश्क के बारे में लिखते हैं, जुदाई सह के जुदाई के बारे में लिखते हैं, प्यार करके प्यार के बारे में लिखते हैं और वसल के बारे में लिखते हैं, उस वक्त जब वसल की कैफियत से गुजर रहे हों, तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मयार है किसी भी तहरीर का। कि आप उस सहूबत में से, अजियत में से, उस सहूलत में से, उस राहत में से, उस सुकून में से या उस अजियत में से गुजरे हों और फिर उसके बारे में लिखें, तो क्या ही खूब लिखेंगे।
0: इतना कि तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं।
1: वाह वाह,
0: ये मोहब्बत है हुजूर, इसकी दवाई बिकती नहीं।
1: बिकती नहीं, वाह वाह, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं।
0: लेकिन इनसे उलट मीना कुमारी जी लिखती हैं, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे,
1: मजार गुजरे, वाह वाह वाह वाह,
0: बैठे रहे हैं रस्ते में दिल का खंडर सजाकर, बैठे रहे हैं रस्ते में दिल का खंडर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे।
1: बहुत खूब।
0: बहती हुई ये नदियाँ, घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे।
1: वाह।

0: और साहब बात जरा हादसे की कर लेते हैं। कुछ हादसे बड़े हसीन होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, प्यार में होते हैं, इश्क में होते हैं, लेकिन कुछ हादसे जिस्मानी तौर पर पेश आते हैं जब आप रोड पे हों, शाहराहों पे, रास्तों पे, यूं ही आप बड़े अच्छे मिजाज और मूड के साथ निकले, आप चाहते थे लॉन्ग ड्राइव करें अपने शरीक हयात के साथ, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कोई एक आवाज़ आई और आपको ये अंदाज़ा हुआ कि किसी ने गाड़ी आपकी गाड़ी के साथ टकरा दी है, और अचानक सारा अच्छा मिजाज, मूड, मौसम, हालात, लॉन्ग ड्राइव, परेशानी में और अनसर्टेनिटी में, गैर यकीनी सूरत हाल में, हवास बाख्ता होने में बदल गई है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ नंबर्स हमेशा हमारे टेलीफोन सेट्स में महफूज होते हैं, मान लीजिए आपके घर वालों के कुछ नंबर, आपके रिश्तेदारों के कुछ नंबर, आपके दोस्तों के कुछ नंबर, बिल्कुल ऐसे ही एक नंबर और आपके फोन सेट में महफूज होना चाहिए। ये कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी पल, किसी भी जगह ये नंबर आपके काम आ सकता है। आप ड्राइव करते हैं या नहीं करते, दिस नंबर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेव इन योर फोन सेट। क्यों ज़रूरी है कि आप ड्राइव ना भी करते हो, पिछली सीट पे बैठे हो, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो अपनी ज़ुबान में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी ज़ुबान में आप इनसे बात कर सकते हैं। ये इनका डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ। पर्सनल इंजरी के लिए पूरे ओंटारियो में एक ही मोतबर फुल टाइम नाम है। जब मैं बात करता हूँ एक ही नाम है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही शख्स को मैं जानता हूँ जो मोर देन फुल टाइम सिर्फ पर्सनल इंजरी ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सो ही इज स्पेशलिस्ट। 416-937-5046 सैयद एम रजा बैरिस्टर, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो फैज भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का, आपके इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद लॉ ऑफिस, जैसा आपने कहा कि एक एक्सक्लूसिव पर्सनल इंजरी लॉ फर्म है जिसको एरिया ऑफ प्रैक्टिस है कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है, इसके अलावा एरोप्लेन इंजरी है, यानी जहाँ भी इंजरी है और उसके साथ साथ जो है वो आपको इंजरी हुई है किसी थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से, यू रिटेन सैयद लॉ ऑफिस, और सैयद लॉ ऑफिस इस बात को मेक श्योर करेगा कि आपको आपकी इंजरीज का मैक्सिमम कंपेंसेशन दिलवाया जाए। मैं आज बात करूँगा कि इंश्योरेंस जो लॉ है, यानी जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम का लॉ है, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं ये 1 जून से।
0: सही।
1: उस चेंजेस में बहुत सारे बेनिफिट्स जो पहले रेगुलर थे उन बेनिफिट्स को अब ऑप्शनल बनाया जा रहा है। यानी अगर आप बाय करेंगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप बाय नहीं करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा।
0: सही।
1: जैसे कि पहले हुआ करता था हाउसकीपिंग और केयर गिवर बेनिफिट्स, यानी एक्सीडेंट में

0: इन्वॉल्व हुए और हाउस कीपिंग नहीं कर सकते हैं तो $100 पर वीक इंश्योरेंस कंपनी पे करना शुरू कर देती थी
1: सही
0: विदाउट टू मच प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम फॉर यू। फिर वो केयर गिवर बेनिफिट था यानी किसी के छोटे बच्चे स्कूल ले जाता था स्कूल छोड़ता था वो था $250 फॉर फर्स्ट चाइल्ड एंड $100 एडिशन फॉर एवरी अदर चाइल्ड
1: राइट
0: मीन्स टू से दैट इफ यू हैव वन चाइल्ड $250 इफ यू हैव टू चिल्ड्रन सो देन $350 एंड $450
1: राइट
0: फिर वो बेनिफिट भी ऑप्शनल कर दिया गया और जब बेनिफिट ऑप्शनल हो जाते हैं तो जाहिर ही बात है लोगों की पॉकेट पे जो है वो बर्डन आता है तो लोग बाय नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक
0: तो अब जो है वो इंश्योरेंस बेनिफिट्स को कट करने के लिए इनकम रिप्लेसमेंट जो है वो ऑप्शनल हो रहा है और उसके साथ साथ जो फ्यूनरल बेनिफिट्स हैं वो भी ऑप्शनल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक
0: यानी जो $400 का इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट है जो कि अभी आपकी पॉलिसी में बिल्ट इन होता आएगा वो अब ऑप्शनल होने जा रहा है यानी अगर आप बाय करेंगे तो आपको मिलेगा चाहे आप काम कर सकें या ना कर सकें और अगर आप बाय नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल ठीक
0: इसी तरह फ्यूनरल बेनिफिट जो कि अभी जो है वो $6,000 हैगा यानी फ्यूनरल के एक्सपेंसेस अगर कार एक्सीडेंट में डेथ हो तो
1: जी
0: नेचुरल डेथ का नहीं है कार एक्सीडेंट में डेथ हो तो $6,000 इंश्योरेंस कंपनी देती है वो भी ऑप्शनल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल ठीक
0: और कुछ और बेनिफिट्स भी हैं वो उसके बारे में नेक्स्ट बात कर। तो अब ये है आपके लिस्टनर जो भी इस वक्त सुन रहे हैं
1: जी
0: जिनके पास भी जो है वो शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी ना हो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी ना हो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट जो है वो अपनी पॉलिसी में बाय करें वो ऑप्शनल वो बाय करें जैसे जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मार्केट परचेज प्राइस जो है वो बहुत से लोग जो है वो बाय करते हैं
1: जी
0: यानी अगर आपकी गाड़ी जो है एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो और अगर आपको जो है वो राइट ऑफ हो जाए तो आपको परचेज प्राइस मिलती है। इसी तरह से जो है वो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट जो कि ऑप्शनल होने जा रहा है जो अब नेक्स्ट ईयर से यानी जून के बाद से जो भी पॉलिसी रिन्यू होगी तो आप लोग जिनके पास भी नहीं है तो वो बाय करें क्योंकि अदरवाइज जो है अगर आप कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं और आप काम नहीं कर सकते हैं तो अभी जो $400 इनकम रिप्लेसमेंट पर वीक मिलता आएगा वो आपको नहीं मिलेगा और फिर आपके पास कोई और एवेन्यू नहीं होगा आपके इनकम कंटिन्यूएशन प्लान का तो आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में जो है वो आ जाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक
0: ये बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट आ रही है हालांकि एक तरफ इंश्योरेंस के रेट बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ गाड़ियों का थेफ्ट नहीं रुक रहा है और तीसरी तरफ जो है वो आम आवाम के लिए बेनिफिट जो है वो कम हो रहे हैं और उनका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है। यानी जो क्लेम करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के जी आप हमें जो है वो ये बेनिफिट्स हम करेंगे तो उसके साथ साथ पॉलिसी प्रीमियम भी कम होगा वो वादा अभी तक जो है ये 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ वो वादा पूरा नहीं हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक
0: आप भी तो फैल भाई इधर ही है मैं भी इधर हूँ हर साल रेट कुछ ना कुछ बढ़ ही जाते हैं
1: सही कह रहे हैं आप।
0: तो इसलिए जो है वो इसलिए कि जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज है इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो और जो लेजिस्लेचर है उसने सारा काम करना होता है
1: जी
0: यानी जो लॉ पास करना होता है
1: बिल्कुल ठीक
0: आम आवाम जो है उसको बेनिफिट मिले ना मिले अब आप ये देखें अगर किसी शख्स ने बाय नहीं किया ऑप्शनल बेनिफिट और अगर कोई उसका फ्रैक्चर हो जाता है और वो काम पे अगर नहीं जा सका तो उसका क्या हाल होगा उसके फूड कहाँ से आएगा उसकी टेबल पर उसकी मॉर्गेज कहाँ से जाएगी उसके बिल कहाँ से जाएंगे और पर्टिकुलरली अपना साउथ एशियन कम्युनिटी में जहाँ मोस्टली जो है वो मेल काम करते हैं और फीमेल बच्चे पालती हैं
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज जो है ये मैं आपसे भी कहूंगा कि आपके पास बड़ा स्ट्रांग मीडिया है
1: जी
0: आप इस चीज को जो है वो लोगों को आप लोगों से जो है आप इंटरव्यू कंडक्ट करें ये क्वेश्चन आप रेज करें आपका जो पब्लिक स्पीकर फोरम होता है जो आप थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं
1: जी
0: उस पर आप ये टॉपिक जो है वो लोगों से सवाल पूछेंगे, लोगों के इस पे क्या व्यूज है।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: क्योंकि कोई पब्लिक कंसल्टेशन तो होती नहीं है यहाँ पे कानून चेंज करने से पहले।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
0: और जो है वो चैम्बर में बैठे हुए लोग कानून चेंज कर देते हैं।
1: ये तो बड़ी अचंभे की और बड़ी परेशान कुन बात है कि एक लेजिस्लेशन बना दी जाए, कानून बना दिया जाए और उसके बाद फिर लोगों पे उसका बोझ डाल दिया जाए। पीपल हैव टू बेयर द बर्डन ऑफ दैट लॉ।
0: जी हाँ जी, जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बात है कि एक तरफ जो है वो आपको पता है आजकल क्या कंडीशन हुई हुई है। लेकिन बहरहाल टॉपिक मेरा ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये रियलाइज करवाने की जरूरत थी आपके स्ट्रॉन्ग फोरम पे, जो इस वक्त लाखों लोग इस वक्त सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये कहीं ना कहीं ये आवाज जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इशू को अपने पब्लिक फोरम पे जरा आप रेज करें, और जो है वो आप खुद भी जो है वो अपना इस पर जो है थोड़ी सी आप रिसर्च कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक,
0: मैं भी आपसे जो है वो थोड़ा सा इस पे फर्दर ऑफलाइन जब आप फ्री होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा।
1: जी जरूर,
0: ताकि आप इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो कुछ आप इस इशू को रेज कर सकें।
1: बिल्कुल,
0: इशू रेज ही कर सकते हैं, मतलब ये कि लेजिस्लेटर ने जो करना है वो करेगा। तो खैर बहरहाल आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सैयद लॉ ऑफिस, कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, ट्रिप एंड फॉल हो, आपने कॉल करना सैयद लॉ ऑफिस पे। नंबर तो फैल भाई आप बता देंगे ताकि आपके लिसनर हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
1: सैयद एम रजा बैरिस्टर से कॉन्टेक्ट जरूर करें, इनका डायरेक्ट नंबर इसलिए देते हैं, ही इज अ बिजी पर्सन बट ही विल टेक योर कॉल्स। वी गिव आउट हिज डायरेक्ट टेलीफोन नंबर फॉर यू टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटेड टू पर्सनल इंजरी। कोई क्लेम, कोई प्रॉब्लम, कोई हादसा, कोई वाकया, कोई सानहा आपके साथ हुआ है, उस हवाले से खुल के बात कर सकते हैं। बहुत ओपन माइंड के साथ, खुली सोच के साथ आपकी बात सुनेंगे। 416-937-5046 नंबर अगेन 416-937-5046। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
7: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374।

0: राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। 416-303-3639, दैट्स 416-303-3639। दोस्तों, आजकल का जो टाइम है वो एक सोशल मीडिया का भी टाइम है, बाहर निकलने का भी टाइम है, मिलने जुलने का टाइम है, सोशलाइजिंग का टाइम है। ये दौर जो है वो एक अलग तरीके का दौर है, जिसमें हमें लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, अपने आप पर्सनैलिटी पर ध्यान देना पड़ता है, अपने लुक पर ध्यान देते हैं हम। अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, मेकअप वेकअप भी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपीयरेंस पे सीधा सीधा असर डालती हैं। वो होते हैं हमारे अच्छे, अगर अच्छे हमारे हेल्दी हेयर हैं, हेल्दी स्किन है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर हमारी स्किन खूबसूरत है तो डेफिनेटली वो तभी खूबसूरत है जब हेल्दी है। हेल्दी किस चीज़ से होता है? नेचुरल तरीके से। जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो स्किन क्रीम हो, जो सीधे सीधे हमारी स्किन पर बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के काम करे और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे। आजकल के वक्त में ये बातें जो है वो बेमानी सी लगती हैं, क्योंकि सच है ये बातें, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब एक नाम हमारे साथ जुड़ता है तो ये बातें सच होती हैं। और ये सपने भी सच होते हैं कि हमारा जो बाल है वो खूबसूरत बनेंगे, हमारी स्किन खूबसूरत बनेगी। ज़फ़र मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम है, अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं अपने हेयर ऑयल के ज़रिए। और कितनी ही बार कितने ही जो लिसनर्स हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं उनके हेयर ऑयल्स का, उनके क्रीम्स का। और हम पर्सनली तौर पर, मुझे भी और आमिर जी को भी और हमारे तमाम लिसनर्स ने, तो हमने पर्सनली इस चीज़ को देखा है कि मिरेकल होते हुए देखा है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या तरीका है, कैसे ये कर पाते हैं। और इतने हैप्पी हैप्पी जो लिसनर्स हैं वो आज की डेट में इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़फ़र साहब, वेलकम करेंगे आपको लवी डवी शो पर। प्लेजर टू हैव यू।
3: जी, सबको खुश आमदेद कहते हैं। असल में आपने बुनियादी बात कह दी थी खुद ही, उसको मैं यूं एक्सप्लेन कर दूं
2: जी
3: कि हर खूबसूरत चीज के पीछे उसकी सेहत बुनियाद होती है। वो जिल्द की खूबसूरती हो या बालों की खूबसूरती हो, उसके अंदर सेहत होगी, उसमें जान होगी तो बात होगी।
2: बिल्कुल।
3: अगर वो बेजान है, रफ हो गई है, बाल सूख रहे हैं या झड़ने शुरू हो गए हैं या झड़ चुके हैं, मांग में स्किन नजर आने लगी है या कहीं डैंड्रफ है, कोई ऐसी बात, कोई भी चीज हो, उसके पीछे सेहत होना बहुत जरूरी है। और हमारा ऑयल आपके बालों को गिरने से रोकता ही नहीं, वापस उगाता भी है
2: जी।
3: आपकी बालों की और चेहरे की सेहत का ख्याल हम रखते हैं। हमारे पास फ्रेश एयर टॉनिक के नाम पर है, हम आपके घर पे पहुंचाते हैं। जो लोग लिसनर्स आपको फोन करते हैं, आप उनके हवाले से जो सवाल है वो कर सकते हैं।
2: जी
3: जी
2: जी, बिल्कुल। तो ये जो हेयर ऑयल है, ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं हेयर ऑयल की बात करूंगी, फिर उसके बाद हम क्रीम पर आएंगे। तो हेयर ऑयल जो है, इससे इतना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लेडीज़ जब मुझसे भी मिलती हैं तो कहती हैं कि जो हमारे हेयर थिननेस हो रही थी, उनमें वॉल्यूम ना रहा, और ऊपर तो इतने पतले बाल हो गए थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ भी हम करते थे, चाहे डिज़ाइन स्टाइल करते थे, वो कभी कभी चिपक जाते थे, कभी फ्लैट हो जाते थे बाल, क्योंकि बालों में जब जान ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो उसको एक तरीके से एक अच्छा दिखता ही नहीं है। लेकिन आपका हेयर इस्तेमाल करने के बाद उनको लगता है कि जो लॉस्ट ग्लोरी थी उनके बालों की, वो वापस आई। तो इसमें क्या आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं या कुछ ऐसी हर्ब्स डालते हैं जो कि मिरेकल करती हैं, ज़फ़र साहब?
3: जी जी जी जी, हम डालते हैं
2: जी।
3: हमारे पास 6 ऑयल्स का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ होता है।
2: अच्छा।
3: जिसको हम डिफरेंट टेम्परेचर के साथ निकालते हैं।
2: ओके।
3: किसी को हीट देते हैं, किसी को नहीं देते, किसी को ज्यादा हीट देते हैं, किसी को बिल्कुल हीट नहीं देते। उसको उस तरीके से निकाल के जब उसका अर्क निकाल लिया जाता है, तो उसकी रेशियो को बनाया जाता है
2: जी।
3: तो उसमें कितनी तादाद में किस तरह से उसको मिक्स करना है। जब हम वो सब चीजें आप उसमें मिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसकी स्मेल को खत्म करते हैं
2: जी।
3: आप उसको लगाकर कहीं भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना
2: जी।
3: अब बात यह है कि ये पिछले 21 बरस से हम कनाडा में बनाते हैं
2: जी।
3: और आपके घर पे पहुंचाते हैं जिसमें हमारी शिपिंग फ्री है।
2: क्या बात,
3: कनाडा हो यूएसए हो, हम आपको फ्री शिपिंग देते हैं।
2: क्या बात है, देखिए लोग अपने बालों के लिए कितने सलून में जाते हैं, कितने हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि ओवर द शेल्फ होते हैं, और यहाँ पे आप इतना कुछ उनको दे रहे हैं जो अपने आप में एक तोहफा और अपने आप में एक कहना चाहिए ब्लेसिंग है, उसके आप उसके ऊपर से आप शिपमेंट भी फ्री कर रहे हैं, तो ये इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। मैं आपका नंबर ज़रूर देना चाहूँगी जफर साहब आगे बढ़ने से पहले, 6475215159। जफर साहब कितने एप्लीकेशंस के बाद असर नजर आता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली?
3: पहले दिन में एक दफा ऑयल को इस्तेमाल करें, 4 से 6 घंटे लगा रहे, उसके बाद आपका जी चाहे उसे शैम्पू करें ना करें, दूसरे दिन फिर इस्तेमाल करें।
2: अच्छा,
3: पहले दिन में आपको पता चल जाता है कि बाल गिरने से रुक चुके, और 5-6 दिन में आपको रीग्रोथ भी नजर आती है। हम कहते हैं आप इस्तेमाल करने से पहले भी सर की पिक्चर ले लें और 6 दिन के बाद भी लीजिएगा, आपको फर्क साफ जाहिर हो जाता है कि रीग्रोथ शुरू हो चुकी हुई है।
2: जफर साहब एक और चीज़ है कि हम जब दूसरे तेल लगाते हैं ना, तो एक टेंशन रहता है हमें कि अब हमने ऑयल लगा लिया, अब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते बिना शैम्पू किए, मतलब एक तरीके से हमें एक टेंशन रहता है कि हेयर ऑयल लगा हुआ है तो हम अच्छे नहीं दिख रहे, बिकॉज वो बहुत चिपचिपा हेयर हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि उसको लगाने से बिल्कुल आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बड़ी अच्छी बात है।
3: आप इसको लगा के अपनी जॉब पर जा सकते हैं, देखें।
2: वाओ,
3: एक बात, एक वजह ये भी है ना, जब लोग डाई करते हैं अपने हेयर को तो उस डाइंग से भी बाल झड़ते हैं, वो सुखाता है।
2: हाँ, जी बिल्कुल।
3: डायर जो है जिसमें जो रंग करता है, जिस रंग की पकड़ है उसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। लोगों को लगाना पड़ता है बिकॉज वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो लोग जॉब भी करते हैं, रंग भी लगाते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं और काम चलता रहता है। कैसा,
2: क्या
3: ठीक है क्या नहीं?
2: क्या बात है
3: ये बात, आज से नहीं 20 बरस से हम बता रहे हैं लोगों को। आपने खुद इस्तेमाल कर लिया, लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों के पास इसका टेस्टिमोनियल है, और हमारा 70% तो रिपीटेड ऑर्डर्स है।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि जो रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं या जो परमानेंटली अब जफर साहब के क्लाइंट बन चुके हैं और उनके हेयर ऑयल और क्रीम के फैन बन चुके हैं, तो बस आप क्यों नहीं जल्द से जल्द फोन उठाइए 6475215159, मैं रिपीट कर दूँ 6475215159। जफर साहब चलते चलते क्रीम के बारे में ज़रूर मेंशन आप कर दीजिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो जितने भी ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उनका ये फेवरेट चीज़ है कि हमारी स्किन अच्छी रहे, ग्लो करे, और जब हर्ब्स आपके क्रीम के इस्तेमाल होते हैं और उनके चेहरे पर लगते हैं तो मिरेकल होता है। तो जो नए लिसनर्स हैं जिनको इतना अभी पता नहीं है, तो ज़रा उन्हें बताइए इस क्रीम के बारे में।
3: मैं आज करता हूँ, हमारे पास 4 किस्म की क्रीम्स हैं।
2: अच्छा,
3: सबसे पहली है कि जो पिगमेंटेशन लोगों को होती है, चेहरे पर छाइयां, दाग धब्बे बन जाते हैं, काले स्पॉट बन जाते हैं दानों के ऊपर या किसी चीज पर, ये उस सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास पिगमेंटेशन की क्रीम है। हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम है, जो लोग जिनके चेहरों पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं जल्दी से, लाइनें बनती हैं, ये लाइंस को खत्म करती है। अगर आंखों के 4 लाइनें हैं तो हमारी क्रीम लगाने से वहां पर एक लाइन रह जाएगी जो सुरमे वाली है,
2: ठीक है क्या?
3: इसी तरीके से एक्ने की क्रीम है, चेहरे को ग्लो देने की है, ग्रंग को गोरा करने वाली क्रीम है। आपको किसी किस्म के भी जिल्द की प्रॉब्लम है, चेहरे का रंग 3 किस्म का होता है, माथे का रंग और है, चेहरे का और है, और गर्दन पर्पल हो गई है, सबका इलाज हमारे पास मौजूद है। आप किसी भी हमें फोन करें, हम आपके घर पे क्रीम और ऑयल पहुंचाते हैं, जब आपका जी चाहे हम आपको आपके घर पे पहुंचाने के लिए तैयार हैं।
2: क्या बात
3: और ठीक हो गया,
2: कितनी कन्वीनियंट ये चीज है कि देखिए आपके हेयर और आपकी स्किन दो चीजें जो पर्सनालिटी को एनहांस करती हैं, उसका एक सॉल्यूशन जो है जफर साहब ने कितनी कन्वीनियंटली फ्री शिपमेंट के साथ पहुंचा रहे हैं ये क्रीम और हेयर ऑयल। 6475215159 पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर ड्राइव कर रहे हैं नंबर किसी वजह से नहीं लिख पाए तो आप हमें लवी रवि शो पर कॉल कर दीजिए और हम आपको ये नंबर अटैक्स कर सकते हैं। और जफर साहब चलते चलते कुछ ऐड करना चाहेंगे?
3: सबको खुश खुश आमदीद कहें और सबको मुबारक दें कि हम आप तक पहुंच सकें। अगर आपका ये मसला है और कोई हल नहीं नजर आ रहा तो हमने आपको दे दिया, लेकिन 60-50 डॉलर में एक चीज का हल आपको मिल जाए तो फिर ट्रांसप्लांट कराने के लिए बाद में चले जाना ना 10,000 डॉलर खर्च करने के लिए। एक दफा ये ट्राई करके तो देखो, हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा
2: है,
3: वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। कुछ लेडीज ने मुझे कहा था कि जरा आसानी से बताया करें, मैं उनकी जुबान में उनको बता दूंगा नंबर 647-547-5159 मेरा नंबर है। जदों दिल करे फोन करो, 24 घंटे असीं तुहाडी खिदमत वास्ते हाजिर हो जाएंगे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, प्लेजर हैविंग यू विद अस।
3: थैंक यू सो मच।
4: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
5: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
7: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
6: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
7: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
9: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
8: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
10: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
11: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटिका पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शियाटिका पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399, इट्स 437-438-3399।
2: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639। दोस्तों कहते हैं कि हमारे अगर मॉर्निंग अच्छे से शुरू होती है, अच्छा हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने डाइट में वो चीज़ें शामिल करते हैं जो हमें सारा दिन के लिए थकाती नहीं है, एनर्जी देती है, और ये जो ब्रेकफास्ट की रूटीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, फ्रूट्स हैं, आपके नट्स हैं, कुछ हेल्दी फैट्स भी हैं, हम बहुत आपके जो कॉर्नफ्लेक्स हैं और ओट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के जूस होते हैं वो मिरेकल करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। वो हम किसी भी टाइम पी सकते हैं, नॉट नेसेसरीली इन द मॉर्निंग। कभी कभी मॉर्निंग में बड़ी जल्दी होती है, नहीं हो पाता, तो उसके लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्योंकि हमने जूस नहीं पिया तो आज का दिन चला गया। वो आप लंच में ले सकते हैं, डिनर में, इवनिंग में ले सकते हैं। और कहते हैं कि अगर हम हेल्दी जूसेस की बात करें तो हमारे सिस्टम को क्लिंज और बूस्ट करने का काम करता है जिंजर, कैरेट्स और ग्रीन एप्पल। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिला के एक जूस बनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कुछ ही दिनों में मिरेकल नज़र आएगा अपनी हेल्थ के ऊपर भी और अपने बाकी आपकी एनर्जी के ऊपर भी। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना चाहते हैं, हेडेक को कम करना चाहते हैं, वो आता है कभी कभी हेडेक्स बहुत हो रहे हैं उसको आप कम करना चाहते हैं, कैंसर को भी प्रिवेंट करने में काम आता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये जूस है। ये है आपका एप्पल, क्यूकम्बर और सेलरी। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप जूस बनाइए। एंड अगर आप स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप टमेटो, कैरेट और एप्पल का जूस ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके बॉडी हीट को और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑरेंज ज़रूर लीजिए, और उसमें आप जिंजर और क्यूकम्बर डाल के एक जूस तैयार कीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको मिक्सर मैश भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये इन्ग्रीडियंट नहीं डालेंगे तो आपको फ़ायदा कम होगा, लेकिन इन जनरल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी जूसेस में काम आती हैं। आप कैरेट्स ले लीजिए, थोड़ी सी इसमें जिंजर डाल लीजिए, थोड़ा एप्पल डाल लीजिए, ये बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सेलरी ऐड कर लीजिए, एक जूस में आप सेलरी ऐड कर लीजिए, क्यूकम्बर, टमेटो ऐड कर लीजिए, तो ये चीज़ें ज़रूर एक दो दिन ऐसा लगता है कि काम हो गया, एक बर्डन सा हो गया, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आएगा ना और आपको जब असर नज़र आएगा ना तो आप शायद इसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए अब अगला गाना आपके लिए 416-303-3639।
12: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
5: डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओ दाता जवाब है नहीं।
6: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है।
5: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस, विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
4: लवी डेवी शो, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। 416-303-3639। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स 23 मई से शुरू होने जा रहा है, 23 मई से, और कुछ ही सीट्स बची हैं। जल्द से जल्द आप कॉल कीजिए और डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स जो एक महीने में आपको एक प्रोफेशनल बनाता है, आप प्रो बन जाते हैं अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करने के लिए, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को अपने तरीके से प्रमोट करें। कोई बेहतर आपसे नहीं जानता कि आपका कॉन्सेप्ट जो है, जिस वे में आप प्रमोट करना चाहते हैं, कितना भी आप किसी को समझा लीजिए, लेकिन आपकी जो सोच है और आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये आप ही के थ्रू अगर लोगों तक जाएगा, उससे बेहतर प्रमोशन हो ही नहीं सकता। एक महीने का कोर्स है, एक स्मॉल अमाउंट देकर आप ज़िंदगी का हुनर सीख लेते हैं A to Z। आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे कुछ भी प्रमोट करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, वर्चुअल टूर बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एड्स बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं और कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा फंडिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो 50,000 तक की फंडिंग आपको मिल सकती है, उसके लिए भी आप कॉल कीजिए। अब 50,000 फंडिंग अगर आप साल की मिलती है तो करीब 4,000 महीने का बनता है, और मोर देन 4,000 अ मंथ, और ये बहुत एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। इन सब के लिए आप कॉल कीजिए 416-303-3639। 416-303-3639। दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, 23 मई से 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू होने जा रहा है और बहुत लिमिटेड एक या दो सीट्स बची हैं क्योंकि स्मॉल साइज क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है। और लेकिन एक महीने में आप एक ऐसा स्किल सेट के साथ प्रोफेशनल बन जाते हैं, होल लाइफ का आपके पास एक हुनर आ जाता है। एक स्मॉल अमाउंट कर आपको जिंदगी भर में किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी और के ऊपर एक फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से आप अपने मास्टर खुद होते हैं, अपना प्रमोशन खुद करते हैं। कैसे हमें ये कर पाते हैं हमारे लिसनर्स, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या उसमें सिस्टम रहता है, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर रहते हैं?
5: सबसे पहले तो शिवानी, ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि 23 मई ये सैटरडे का दिन बनता है, अभी चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। आप रजिस्टर करवाइए डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के इस कोर्स में। आपको बता दें शिवानी कि ये वाहिद कोर्स है
4: जी
5: पूरे कनाडा में जो हम करवा रहे हैं। हमारे अलावा ये कोर्स इस नौयत का, इस नेचर का, इस टाइप का कोई नहीं करवा रहा
4: जी,
5: है
4: जी।
5: 40 घंटे की ट्रेनिंग है, 40 घंटे की ट्रेनिंग ले लेंगे, अपनी मार्केटिंग खुद कर सकेंगे
4: जी,
5: अपनी सेल्स खुद कर सकेंगे, अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट खुद कर सकेंगे, कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के जितने भी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करके खुद प्रमोट कर सकेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाना आपको सिखाएंगे
4: जी,
5: उस पर कंटेंट कैसे डालना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है। कॉन्टैक्ट कीजिए, इनरोल कराइए 416-303-3639। रजिस्टर कराने के लिए 416-303-3639
4: पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-303-3639। आमिर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक महीने में सिर्फ 8 दिन हमारे जो लिसनर्स हैं जो एनरोल करेंगे उनको आना है 1 बजे से 6 बजे तक। बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, जल्दी भी नहीं उठना, वीकेंड पे सब अपने आराम से उठते हैं, थोड़ी मसरूफियत दूसरी रहती है। और 6 बजे का आप फ्री भी हो जाएंगे टू इंजॉय द इवनिंग विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस। तो बड़ा कन्वीनियंटली ये रखा गया है टाइमिंग भी आपने 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन?
5: बहुत अच्छा सवाल है शिवानी, मैं आपको बता दूं इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। प्री रेक्विजिट किसी ऐसे कोर्स को कहते हैं जो अगला कोर्स करने के लिए जरूरी हो। आप बैक होम से 10वीं जमात पास हैं, यानी आपने मैट्रिक किया है, आप प्लस टू हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं। मुझे इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं शिवानी, मैनी पीपल आर इंक्वायरिंग अस, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे भी हमारी इसकी प्रमोशन चल रही है, हम रेडियो पे भी अक्सर इसकी बात करते हैं। डे इन एंड डे आउट पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग अबाउट द कोर्स। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो हम आपको इस कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं। और शिवानी, इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर महीने भर का ये कोर्स करें उसके बाद हम आपको 1 साल के कोर्स पर चढ़ा देंगे जिसमें आप फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।
4: वाह, ये फंडिंग क्या होती है और कैसे मिलती है?
5: गवर्नमेंट फंडिंग, एक साल का कोर्स इसके बाद आप करें अगर, तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आपको लौटाना नहीं है, और वो पैसा कितना हो सकता है, 45,000-55,000 तक भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम. सो पहले आप ये कोर्स कीजिए, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, जो कि एक महीने का होगा, यानी 8 दिन आपको आना है, 1 से 6 बजे के बीच में, सैटरडे एंड संडे. उसके बाद एक ऑनलाइन कोर्स होगा, वो 1 साल का होगा ऑनलाइन कोर्स, और उस पर आपको भारी भरकम किस्म की फंडिंग मिल सकती है. मान लीजिए साल का अगर 50,000 मिला तो वो तकरीबन कमोबेश महीने के $4,000 बनते हैं, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है ये. आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए और रजिस्टर कराइए. 416-303-3639
4: जी. और आमिर, ये हम अपने जो हमारे इस वक्त क्लाइंट हैं, रियल्टर्स हैं, या फिर ब्रोकरेज के ओनर्स हैं, या फिर ऑफिस के कोई स्टाफ को अपने ये कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक ग्रुप जो कोर्स है वो भी हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि अपने स्टाफ मेंबर्स को या फिर ब्रोकरेज में अपने रियल्टर्स जो टीम है उनको आप ये एज अ ग्रुप ये कोर्स करवा सकते हैं, जिससे कि सब लोग अपने हिसाब से. इस ब्रोकरेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि सब लोग प्रोफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं और प्रोफेशनल बन चुके हैं अपना अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करने के लिए, अपना वर्चुअल टूर को प्रमोट करने के लिए. तो इन सब के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639. इस सैटरडे से कॉल शुरू होने जा रहा है और जल्द से जल्द कॉल कीजिए और जो लास्ट कुछ सीट्स बची हैं उनमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं 416-303-3639.
0: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी. शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट. और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ. डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल. तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए. लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए. कॉल 416-522-0543.
4: लवी डेवी शो पर आमिर और शिवानी को आप दे इजाजत, होती है आपसे कल मुलाकात. इंजॉय द वेदर, इंजॉय द डे, और आप सभी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस. आपका आज का दिन और ये हफ्ता बहुत खूबसूरती के साथ गुजरे. जो आपने सोचे हैं वो आपके सारे काम पूरे हों, और हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ. और सुनते रहिए लवी डेवी शो. नंबर टू कॉल 416-303-3639, 416

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
3: You're tuned into CMRN 11.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best.

0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियन is the best.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: बिल्कुल अनलिमिटेड। न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड।
1: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा।
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक। पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM।
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई,
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। स्टे ट्यून्ड।

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 31। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 30। Thunderstorms possible after 6 p.m. and kal ka din jo hai phir cooling shuru ho jayegi. UV will be very high and increase from yesterday. Kal ka to temperature was zabardast, you know. Long weekend, people had great fun with amazing weather. Sunset hoga 8:40 par. Minimum temperatures tonight 11, tomorrow 16 and 6, Thursday 14 and 6, 15 and 10, and a lot of rain in coming weekend hone wali hai. So this is Tuesday already, so long weekend hopefully aap sabne enjoy kiya hoga with all the troubles and problems that are going around in the world, globally, locally, provincially. उसके बावजूद भी जब लॉन्ग वीकेंड होता है, कहीं ना कहीं वी पुट आवर प्रॉब्लम्स असाइड और हम कोशिश पूरी करते हैं कि भाई उसे इन्जॉय करें। एंड आई एब्सोल्युटली हैड अ वेरी अमेजिंग वीकेंड एंड आई होप यू गाइस डिड एज वेल। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की हेडलाइंस रेडी है, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस रेडी हैं, और ये पहला गीत आपने कैलाश खेर की आवाज़ में सुना, ओ माई गॉड फिल्म से, ओ एम जी, एंड फिल्म आया ऑन अक्षय कुमार एंड परेश रावल। ब्यूटिफुल सॉन्ग मेरे निशा, जिससे दिन की हमने शुरुआत कर ली है। एंड द गुड थिंग इज इट्स ट्यूजडे, बिफोर वी नो इट्स वेंसडे टुमारो, तो मिड वीक हो गया। ये लॉन्ग वीकेंड की एक खूबसूरती होती है कि एक एंटिसिपेशन होता है, पिछले हफ्ते था कि लॉन्ग वीकेंड है, सो फ्राइडे से पीपल वर इन द लॉन्ग वीकेंड मोड, एंड देन ये वीक जो होता है ये ऑलमोस्ट शुरुआत ही ट्यूजडे से होता है, तो बिफोर वी नो वी आर इन टू वेंसडे एंड देन कपल मोर डेज एंड अनदर वीकेंड अहेड। सो या एब्सोल्युटली गुड टाइम। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 905-206-1008। हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है 12:30 से 3:30 बजे। आप अपनी सीट ज़रूर रिजर्व करवा लें, प्लीज़ डोंट वॉक इन। एंड ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी आगे चलकर हमारे साथ होंगे विद सम अमेजिंग डील्स, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। 3 टोरंटो पुलिस ऑफिसर्स को बार्सिलोना में जो है चार्ज किया गया है, उनमें से एक जो है वापस पहुँच चुका है Toronto and has been suspended. The other two are missing in action for now, लेकिन वो भी आने वाले ही होंगे वापस, उन्हें भी जो है सस्पेंड किया जाएगा। इल्ज़ाम गंभीर हैं जो उन पर लगे हैं। They were with a woman in a taxi, in a car, और उन्होंने कुछ जोर जबरन करने की कोशिश की, and one of the officers punched her on the face, I believe. ये खबरें कुछ सामने आ रही हैं। सो अब क्या होगा, बड़ी दुख की बात है। इन तीनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर को 2020 में सम्मानित किया गया था, अवार्ड से नवाजे गए थे। सो या समटाइम्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन। चिंकूसी पार्क, हमारे ब्रैम्पटन का चिंकूसी पार्क जो है इज़ नोन फॉर ऑल द गुड स्टफ़ दैट द फैमिलीज डू। पिकनिक्स होती हैं, सारा फैमिलीज इंजॉय करते हैं, लेकिन कल विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पर हड़कंप मचा है, एंड द पुलिस हैड टू कम इन विद द गैदरिंग्स एंड ऑल दैट, यू नो, फायरवर्क वाली जो सिचुएशन देखने को मिली थी, एंड पुलिस को बंद करना पड़ा था पार्क। अब थोड़ी देर पहले जो है पार्क ओपन हो गया। न्यू स्टडी सेज 1 in 5 प्रेगनेंट वुमेन इन ओंटारियो नॉट प्रॉपरली स्क्रीनड फॉर सिफिलिस, एंड मिडल ईस्ट में 12 कैनेडियंस अमंग 300 डिटेन्ड बाय इजराइल व्हाइल ऑन एड फ्लोटिला बाउंड फॉर गाजा। Inflation Statistics Canada कहते हैं कि इट्स हायर गैस prices पुश द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप 2.8% इन अप्रैल। एंड या इन्फ्लेशन ही एक शब्द है जिसको हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं, और इट डज़ नॉट लुक गुड कि ये ईयर जो है, साल जो है, एंड भी इसी तरह से होगा अनफॉर्चुनेटली। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड 12:15 की हम हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 to $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon। Make sure please make your appointment, walk-in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters। 289-748-4040 289-748-4040।

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Asian's popular South Asian clothing and textile store, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Brampton TV and Appliances. Shuru karte taza tareen headlines. Ebola outbreak mein Africa CDC declares continental emergency. Donald Trump ne Iran par fresh strikes ki dhamki di. Foreigners ke crimes ko dekhte hue Thailand ne visa free stays for tourists ko cut kiya. Southern Turkey mein gunmen ne ki firing, 4 log mare gaye, 8 hue zakmi. US ke Iranian sanctions ko suspend karne par oil prices dip hue. Dusri aur unconfirmed report by Iranian media cited an unnamed source. Aur no Ebola in India, World Health Organization warning ke baad se airports put on high alert. Iran ne new body ka elan kiya to give real-time updates on Strait of Hormuz. And PM Modi ko Norway ke highest civilian honor se nawaza gaya. 32nd global award for the PM. Sweden-based IKEA to cut 850 jobs at the parent company. Maldives scuba disaster ke baad missing Italian divers ki bodies 60 meter cave ke andar mili. PM Modi ne Norway ke Prime Minister ke saath trade aur green technology par ki charcha. Aur 23 saal ke Tushar Kumar UK ke youngest Indian origin mayor bane. BRICS summit ke liye Russian President Vladimir Putin to visit Delhi in September. And local samacharon mein Halton police ki drug trafficking probe leads to the largest firearms bust in services history. Three Toronto cops facing charges in Barcelona. Heat warning in effect for Toronto. Humidity will make it feel like 35 degrees Celsius. And Parkdale mein hui stabbing mein vyakti buri tarah hua ghayal. Kal sham police ne large gatherings aur fireworks ke chalte Brampton Park ko kiya close. Nayi study ke anusar 1 in 5 pregnant people in Ontario not screened properly for syphilis. भारतीय समाचारों में आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा डिलिबरेट थॉट आफ्टर 88 आवर्स वाज स्मार्ट पावर एंड अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर गए अ डे आफ्टर यूएस ड्रॉप्स ऑल चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी विजय ने एलटीटीई चीफ प्रभाकरण को ट्रिब्यूट देते हुए कहा मुल्ली व्हीकल इन आर हार्ट्स ग्लोबल लंकन टामिल पॉपुलेशन एंड सेक्शंस ऑफ टामिल्स इन इंडिया मई 18th को ऑब्जर्व करते हैं टामिल जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे बीजेपी टारगेट्स राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने 3 बच्चों को आग से बचाते वक्त महिला की मौत हुई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी थी आग महाराष्ट्र में एक ट्रक ने वेडिंग गेस्ट वाली टेम्पू को मारी टक्कर 13 लोग मारे गए अडानी ग्रुप को मिली राहत यूएस सैंक्शंस प्रोब एंड्स इन $275 million सेटलमेंट जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सुजाता शर्मा ने रशियन ऑयल पर यूएस वेवर के एक्सपायर होने को लेकर कहा देयर इज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री नो ड्राई आउट रिपोर्टेड एट एनी एलपीजी डीलरशिप वेदर ऑफिस ने इस हफ्ते के लिए नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के लिए दी हीट वेव वार्निंग और पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के एड को मारने वाले अक्यूज को उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया गया उमर खालिद की इंटरम बेल रिक्वेस्ट डिनाई हुई दिल्ली अदालत ने कहा ग्राउंड्स रेज्ड आर एब्सोल्युटली अनरीजनेबल 2020 दिल्ली राइट्स में अक्यूज्ड हैं उमर खालिद दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से सिंध आईजीपी का कहना है कि पिंकी केस में कई प्रोमिनेंट नेम सामने आएंगे एफआईए ने जांच को ज्वाइन किया टू एग्जामिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन द केस पाकिस्तान ने हजारों ट्रूप्स और जेट्स को सऊदी के लिए डिप्लॉय किया पाकिस्तान ने फुल स्क्वाड्रन ऑफ 16 एयरक्राफ्ट को भेजा सऊदी के साथ किए गए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत यह फैसला लिया गया जबकि इस्लामाबाद इज सर्विंग एज द मेन मीडिएटर इन द ईरान वॉर प्राइम मिनिस्टर के एड के बयान से हुआ डिबेट गवर्नमेंट ने रूल आउट किया रेजिंग वोटिंग एज टू 25 पीटीआई के गोहर ने कहा कि 18 ईयर ओल्ड्स को राइट टू वोट से डिप्राइव करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने वाली बात साबित होगी जेयूआईएफ के कामरान मुर्तजा ने प्रपोजल टू रेज वोटिंग एज को भी अपोज किया सिंध ने 500 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी दी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक्सपेंशन का ऐलान किया फेडरल मिनिस्टर अताउल्ला तरार का कहना है कि करप्शन और मिसकंडक्ट आर एट देयर पीक चीफ मिनिस्टर अफरीदी बोले सेंटर अडॉप्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर गवर्नर कहते हैं कि प्रोविंशियल राइट्स को डिनाई करना अमाउंट्स टू इनजस्टिस उमर हयात हैंडेड डेथ सेंटेंस इन द सना यूसुफ मर्डर केस स्लेन टिकटॉकर के परिवार का कहना है कि यह फैसला सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है
दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआईज के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली हैव बीन इंक्लूडेड जसप्रीत बुमराह रेस्टेड इंडिया लाइकली टू प्ले टू टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका इन ऑगस्ट विद डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स एट स्टेक बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया टू प्ले थ्री ओडीआईज एंड थ्री टी20s इन द मंथ ऑफ सितंबर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद इन आईसीसी जूरी टू सिलेक्ट ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स और मोहम्मद शामी इग्नोर्ड फॉर अफगानिस्तान सीरीज बीसीसीआई गिव्स नो डिस्कशन वर्डिक्ट बॉलीवुड खबरों से सुपरस्टार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सांप दिखा रेस्क्यूअर रिमूव्स इट सेफली आलिया भट्ट के कांस बैकलैश के बाद अमीषा पटेल ने स्लैम किया द इंडियन मेंटालिटी ऑफ पुलिंग अदर्स डाउन अमीषा ने कहा हम अपने आप को वन नेशन कहते हैं यूनाइटेड कहते हैं बट आर वी एक्चुअली यूनाइटेड आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान ने भी आलिया भट्ट के वायरल कांस वीडियो पर हुए ट्रोल्स को लेकर कहा सोशल मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ हेट इट्स रियली सैड सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग रिटायरमेंट को लेकर अदनान सामी कहते हैं कि इट वॉज नॉट एन इम्पल्स डिसीजन इट्स अनफेयर टू स्पेकुलेट अबाउट द रीजन्स पापराजी के साथ हुई आर्ग्यूमेंट में गोविंदा ने सिक्योरिटी गार्ड को रेस्क्यू किया द वीडियो गोज वायरल ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताज़ा तरीन हेडलाइन स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट 2 बजे तक हम प्ले करते रहेंगे बाहर का तापमान हो चुका है 27 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 33 एंड 6 कैनेडियन एक्टिविस्ट हैव बीन डिटेन्ड बाय इजराइल एंड क्यूपी लोकल 2 का जो tentative agreement hai wo they have pretty much reached that and Rajdhani Sweets and Restaurant 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant Dhurandhar 1 and Dhurandhar 2 badi kai reasons ke liye obviously this is the film that has made the most amount of मनी मूला एट द बॉक्स ऑफिस 1,000 crore पार कर गई है सेकेंड फिल्म और अगर सिर्फ फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखा जाए फिल्म मेकिंग आदित्य धर ने अच्छी की है हाँ डेफिनेटली इस फिल्म को लेकर एक प्रोपागंडा वाला शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है हाँ एक्शन की अगर बात की जाए तो ये बात भी सच है कि एक्शन इज़ ओवर द टॉप मतलब इतनी कुछ ग्राफिक सीन्स हैं जो कि मुझे लगता है शायद उसके बिना भी चल सकता था बट आई गेस इट्स द डायरेक्टर्स चॉइस इट्स हिज फिल्म ही कैन डू व्हाटएवर ही फील्स लाइक एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर पब्लिक जाती है टिकट खरीद कर फिल्म को एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार देखती है तो आई गेस द पब्लिक इज़ ओके विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाली गलौच एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन ओवर द टॉप एक्शन जो फिल्म में दिखाया गया है सम वेरी गोरी सीन्स जो फिल्म में दिखाए गए हैं अगर पब्लिक खुश है तो फिर यू नो क्या कह सकते हैं चलिए धुरंधर 2 का गीत शाश्वत सचदेव और खान साहब की आवाज़ में जान से गुजरते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग है इन्जॉय करें

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर दो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markkampur, doing business your way. Member of Wayne's Auto Group.
2: 10 meter, बस इतना को याद रखो। तो हानू ऊपरों लंघ दिया बिजली दिया पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 meter दूर रहना चाहिए है। ओंटारियो विच बिजली तो होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हैं, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 to $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment, walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
3: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन 9054573232। Clear Optical by Varun Kanda.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Jab

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
3: अच्छी, याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
0: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। पिछले वेंसडे एक रिपोर्ट आई थी, मोर देन 37,000 कैनेडियंस फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रपोजल्स। आज हमारे एक्सपर्ट ऑल दैट सॉल्यूशन से मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, कर्जों से आपको छुटकारा दिलवा रहे हैं फॉर क्लोज टू अबाउट थ्री डेकेड्स, 30 years। 5 लोकेशन से जीटीए में सर्व करते हैं। नंबर टू कॉल इज 416-671-0577। इस रिपोर्ट को लेकर आज सिद्दीक भाई की एक्सपर्टीज का हम फायदा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिद्दीक भाई, आपका स्वागत है।
5: थैंक यू सनी भाई, कैसे हैं आप?
4: जी फर्स्ट क्लास सिद्दीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक भाई, पिछले हफ्ते की ये रिपोर्ट, ऑब्वियसली यू डू दिस 365 days a year, आपको तो रिपोर्ट से पहले ही रिपोर्ट के हालात पर सारा कुछ पता होगा। रिपोर्ट सेज, हेडलाइंस है, मोर देन 37,000 कैनेडियंस फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रपोजल्स एंड मोर कैनेडियंस आर फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2026 देन एनी अदर क्वार्टर सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ग्रोइंग नंबर्स। मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें और हमें ये बताएं कि इस रिपोर्ट के पीछे ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी इज देयर, इन्फ्लेशन इज देयर, जॉब सिचुएशन इज देयर, आप इसे किस तरह से देखते हैं और आप हमें क्या करना चाहिए ये बताइए।
5: जी बिल्कुल सनी भाई, ये रिपोर्ट जो आई है इस पे पिछले तकरीबन पिछले फोर ईयर्स जब से इंटरेस्ट रेट हाई हुई हैं, ऊपर गए हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग देखने गए हैं। अभी तक भी कुछ लोग सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका ब्रेकिंग पॉइंट होता है तो वहां पे वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं और कई लोगों ने गलतियां भी बड़ी की हैं। मैंने पीछे जो 2-3 सालों में देखा है कि जब से लोग हाई इंटरेस्ट हुए हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट की पेमेंट, तो उन्होंने घर पे सैंकड़ मॉर्गेजेस ले ली हैं, सैंकड़ मॉर्गेजेस लेके क्रेडिट कार्ड्स पे कर दिए हैं और उस वजह से कई लोगों ने घर लूज किए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो मिनिमम पेमेंट करते रहे हैं सालों साल और अपने डेट को बढ़ाते रहे हैं और आखिर पे जाके जब उन्होंने मॉर्गेज ली वो इतनी हाई थी कि वो फिर अफोर्ड नहीं कर सके, फिर उनको घर भी छोड़ना पड़े। और इसके अलावा अक्सर लोग जो 90% मैं जो देखता हूँ, लोग उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं। और वो क्यों जाया करते हैं? क्योंकि इस चीज को वो सीरियस लेते ही नहीं है, बिल्कुल देखते ही नहीं कि आपकी हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। जब तक उनके पास क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है जस्ट पेमेंट किए जा रहे होते हैं, कभी नहीं देखा कि मेरा पैसा कितने इंटरेस्ट में जाया हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको सीरियस लें इनिशियल स्टेज में। अगर आप पे चाहे छोटा सा कर्जा है, 5,000-10,000 कर्जा है, पिछले 2-3 महीने से मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, तो अपना पैसा इंटरेस्ट में जाया होने से आप बचा सकते हैं। अगर आप इसको इनिशियल स्टेज में सीरियस लेंगे और इनिशियल स्टेज में मेरे पास आ जाएंगे तो आपका क्रेडिट भी खराब नहीं होगा, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उस वक्त इसको सीरियस लेते हैं जब वो स्टक हो जाते हैं, ऑप्शन को नहीं होता बिल पेमेंट्स करने का, तो वो मेरे पास आते हैं। उस वक्त जाहिर है ऑप्शन फिर बैंकरप्सी या प्रपोजल या डेट सेटलमेंट होता है, तो मेरा तो ये मैसेज है कि अपनी मनी मैनेजमेंट जरूर देखें, वीकली बाई वीकली एटलीस्ट महीने में एक दफा देख लें कि इस महीने आपकी इनकम कितनी थी और एक्सपेंसेस कितने थे। अगर उसमें आपको डेफिसिट नजर आए तो नेक्स्ट मंथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप बजट को रिव्यू करेंगे आई एम श्योर आपको कई चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें जिन चीज़ों के बगैर आपका गुजारा हो सकता है और आप उसके अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो जाहिर है वो डेफिसिट क्रेडिट कार्डों से पूरा होता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जब खत्म होंगी तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी आप पे कर्जा है, मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, तो एक दफ़ा कॉल करके चाहे फोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना। आए इंफॉर्मेशन लें, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हैं, कंसर्न्स हैं, कोई डर बैठा हुआ है आपके जहन में, तो आके डिस्कस करें और उसके बाद घर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर है 416-671-0577, 416-671-0577 पे कॉल करके चाहे आप फोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आ सकते हैं। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड्स का है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं, बिजनेस के लोन है, या फिर इनकम टैक्स का मामला है सीआरए के साथ पर्सनल, या बिजनेस का जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, पे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, या कोई हैस के एप्सिबल लोन लिए थे पे नहीं कर सके वापस, या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था पेमेंट नहीं कर सके उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं। हम इसमें आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ हो सकता है वो मिले अपने अपने क्लाइंट्स को और बाकी छोटी छोटी किस्तों में वो जो इजिली अफोर्ड कर सकें वो पे करें। इसलिए अगर आप पे कोई कर्जा है किसी किस्म का भी तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर आपको ज़रूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊंगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दूंगा। दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा। और अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब होता है या ऑलरेडी खराब हो चुका है तो हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में और क्रेडिट आपको वापस बहुत जल्द मिल सकता है। उसके लिए आपको 6-7 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आपके एसेट चाहे घर हैं, गाड़ियां हैं, RSP, RESP, बिजनेसेस, इन तमाम चीज़ों को लीगल तरीके से सेव करते हुए आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। नंबर है 416-671-0577, 416-671-0577। टॉल फ्री नंबर है 1-855-671-0577। लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्कारबरो में है मार्कम एंड राजमर के पास, इटोबिगो में हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सल के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बुवेड़ के पास। नंबर 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
4: बिल्कुल जी, ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक साहब 416-671-0577। और अगर आपको दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बैंक्रप्सी वाली है तो हो सकता है आपको गलत लग रहा है, क्योंकि बैंक्रप्सी के अलावा दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, द लास्ट ऑप्शन, जो कि ऑलवेज सिद्दीक भाई बताते हैं। देर आर मैनी अदर ऑप्शंस, कई सॉल्यूशंस हैं, ऑल दैट सॉल्यूशंस के सिद्दीक भाई आपको दे सकते हैं विद क्लोज टू 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। 416-671-0577 इज द नंबर, 416-671-0577। आज ही कॉल करें ऑल दैट सॉल्यूशंस के मोहम्मद सिद्दीक साहब को एंड जस्ट से गुड बाय टू ऑल योर डेट प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई।
5: थैंक यू भाई।
4: थैंक यू जी। 416-671-0577 इज द नंबर। एंड डॉन वैली नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा टिकट्स। इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन द मंथ ऑफ जून। ऑफर एंड होता है 31 मई को। अगर आप बाय करते हैं हांडे फ्रॉम देम, दो नेम्स फॉर टू टिकट्स विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। अगर विंटर टायर्स बाय करते हैं विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट एंड सिमिलर।

0: एंड एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आई हुई, वो हम ज़रूर प्ले करेंगे. एंड एक्चुअली आई हैव टू रिक्वेस्ट, वील प्ले दैट वन आफ्टर अनदर. और छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर गीत है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, अगेन कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ में.
1: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
3: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ,
3: 647-739-7710. 6477-739-8710. License number M200-34504.
5: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और log on to bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
6: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. विजिट Don Valley North Hyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर दो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
2: Doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते औना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
4: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Kanda. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which serve 30-plus locations. Se serve karte hai, 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
4: Zaruri nahi ho, to muskurana hi kyun? पाना नहीं हो तो उसे रिझाना ही क्यों. ख्वाबों में हासिल होती है तो होने दो. दिल बेचारे को नींद से जगाना ही क्यों. बदनाम है जब बला के नाम से तो इश्क को अपने गले लगाना ही क्यों. अगर वो रो पड़ते हैं याद में हमारी, अगर वो रो पड़ते हैं याद में हमारी, फिर उन्हें हमारी याद दिलाना ही क्यों. फिर उन्हें हमारी याद दिलाना ही क्यों.
5: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. जी हाँ, लोकल डेवलपर बिल्डर सदर्न ओंटारियो में जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं सिंस 2000, अतीक खान साहब हमारे साथ हैं. वी हैव अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने अतीक भाई को आज पूछने हैं. कुछ हमारे लिसनर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे खुद के हैं. 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है, 416-666-2745. अतीक भाई, आपका स्वागत है.
6: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को गुड आफ्टरनून. और बड़ी प्यारी बट दुखी शायरी सुनाई आपने आज.
3: आज कार्तिक साहब थोड़े ट्विस्ट वाले मूड और मोड में थे. लॉन्ग वीकेंड के बाद वापसी की तो उन्होंने कहा कि चलो आज ये सुना देते हैं अतीक भाई को.
6: वो बेचारे दिल जले जो होते हैं.
3: वो वीकेंड आपको पता है, लॉन्ग वीकेंड के बाद आके बंदा दिल जला ही होता है थोड़ा सा.
6: बिल्कुल सही बात है.
3: आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. नहीं, कार्तिक लगाने के टाइम में कह रहे थे कि अतीक भाई को कुछ अच्छी सी सुनाते हैं. अब आई थिंक उनको खुद आइडिया नहीं होगा कि ये थोड़ी अच्छी नहीं थी शायद इतनी.
6: नहीं, शायरी बहुत अच्छी थी. मैं और आप इन चक्रों में पढ़ते नहीं है.
3: हाँ, फील कुछ डिफरेंट था उसमें.
6: बिल्कुल.
3: तो सबसे पहले अतीक भाई, आपका नंबर एक बार मैं फिर से दूं, 416-666-2745. एंड अतीक भाई, हमारे लिसनर पूछते हैं कि इज देयर अ वे वी कैन गेट मंथली रिटर्न्स. अगर हाँ तो कितना मंथली रिटर्न मिल सकता है इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को जिसको आपने जन्म दिया है.
6: तो सनी साहब, मैं अभी आते हुए आपका पिछला इंटरव्यू सुन रहा था सिद्दीक साहब वाला, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कुछ ऐसे बादल होते हैं जो आपको नजर आने लगते हैं कि जब आप डेट्स अपने उतार नहीं पा रहे हो और इनकम आपकी सप्लीमेंट नहीं कर रही है अपने एक्सपेंसेस को, तो अल्लाह ना करे कि कोई भी मेरा लिसनर इस सिचुएशन में आ रहा हो, बट उस सिचुएशन में आने से पहले जो बात होती है वो आपका ये क्वेश्चन है. 10% के हिसाब से, यानी आपने अपने क्रेडिट कार्ड उतारने हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट उतारनी है, कुछ भी उतारना है, उससे पहले बजाय इसके कि आप अपने आप को रीफाइनेंस कराइए या बैंक से लोन लीजिए या सेकेंड थर्ड मॉर्गेज लीजिए, इससे कहीं बेहतर है कि आप 10% के हिसाब से मुझसे 1 साल, 2 साल, 3 साल के चेक्स पहले ही ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए, हर महीने अपने वो 10% की इनकम आप कमाना शुरू करेंगे, उसमें से जो आपको क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट को पे करना है वो आप पे करते रहिए, और ये ओपन एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड थ्रू दी कॉरपोरेशन, रजिस्टर्ड ऑन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि आप प्रॉपर्टी के ओनर भी रहे और हर महीने आपको 100, 500, 1000 डॉलर आपके बैंक में आता रहे. मेरे पास कितने ऐसे रिटायर्ड कपल हैं जो इस फैसिलिटी को उठा रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फैसिलिटी को उठा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओसेप लोन या कहीं और से लोन ले लेके वो फीस पे करें, उससे कहीं बेहतर है 500-1000 डॉलर महीना लैंड डेवलपमेंट से कमाएं और अपने एक्सपेंसेस को पे करें.
3: जी, जिसके लिए अतीक खान साहब का नंबर दोस्तों नोट कर लीजिए, 416-666-2745. अब इसका काउंटर एक और सवाल यहाँ पे उठता है अतीक भाई की, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, क्योंकि आपने कई बार मेंशन किया अबाउट द 30-40% रिटर्न, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट 30-40% रिटर्न, एंड व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ रीचिंग दिस टारगेटेड रिटर्न, इसकी श्योरिटी भी क्या है, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स में ये सवाल सबसे ज्यादा उठता है.
6: वेरी गुड क्वेश्चन सर. देखिए 30-40% नॉर्मली 16-18 महीने में आ जाता है, और ये 16-18 महीने कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस सिटी किस म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं. बट जनरली स्पीकिंग आप उसको 18 महीने का एक प्रोसेस समझ लें, 1.5 साल के अंदर उस लैंड को खरीदना, उसकी ड्राइंग्स करवाना, उसकी सॉइल टेस्टिंग कराना, उसकी इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स कराना, उसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी कराना, फंक्शनल सर्विस रिपोर्ट, ये सब चीजें कराते कराते आपको 16-18 महीने लग जाते हैं, और 16-18 महीने में आप 30-40% बना लेते हैं. तो कहां 10% आप ले रहे हो, कहां 30-40% आप ले रहे हो, आपका एवरेज रिटर्न 20-25% बनता है, जो मेरे हिसाब से आज की मार्केट में बहुत बड़ा फिनोमिनल डिफरेंस लाएगा आपके लाइफस्टाइल के अंदर. और ये एक बिजनेस है सनी साहब, आप जाके 30-40 हजार का कोर्स करते हैं, यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करते हैं, मैं तो आपसे फीस भी नहीं ले रहा, कह रहा हूँ आइए लर्न करें और अर्न करें.
3: बिल्कुल दोस्तों, ये वो बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसे लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक भाई लेकर आए हैं 25-26 साल से, ही इज बिन डूइंग दिस. एंड जैसे अतीक भाई खुद भी कहते हैं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ होगी, आप पैसे भी बनाएंगे, आप लैंड में ओनर भी होंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन पेपर, लॉयर विल बी इन्वॉल्व, यू बिकम अ पार्टनर ओनर ऑफ द लैंड, योर नेम विल बी ऑन द टाइटल, व्हाट बेटर वे, एंड लुक एट द मनी, द रिटर्न दैट यू आर लुकिंग एट. सब अब आखिरी सवाल ये भी है अतीक भाई, कई बार आपने अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन किया है कि किस तरह से जोनिंग बदलती है लैंड की, आप उसे जोनिंग को बदलवाते हैं, एंड देन यू सजेस्ट कि यहाँ पे ये होना चाहिए या यहाँ पे ये बेहतर है. हमारे लिसनर पूछ रहे हैं कि इज इन्वेस्टमेंट इन अ प्लाजा बेटर और अ सीनियर होम बेटर, आजकल सीनियर होम के बारे में बहुत बातचीत होती है.
6: सर हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन सीनियर होम, रिटायरमेंट होम, अल्जाइमर होम, इस टाइप के 65 से लेके 85 तक की एज के जितने भी आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो सीनियर्स को केटर करते हैं, आप यकीन नहीं जानोगे सनी साहब, उसका रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट पेइंग रेट ऑफ रिटर्न है इन टुडेज मार्केट. आपका प्लाजा का एक टेनेंट भी अगर चला गया तो उसको रिप्लेस करते करते आपको 6-7 महीने लग जाते हैं. सीनियर होम के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और कब से वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं.
3: जी,
6: सो सीनियर इंटेलिजेंट स्मार्ट क्वेश्चन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस टाइप के सीनियर होम्स या रिटायरमेंट होम का. आप मुझे कॉल करिए, आपको फर्दर डिटेल आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच इतना टाइम देने का. 416-666-2745
3: 416-666-2745 अतीक खान साहब का नंबर है दोस्तों. और अगर आप इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट जो हमने बात की है ब्रीफली, ये बिज़नेस कॉन्सेप्ट जितना आपको समझ आया है, एक इंटरेस्ट आपके अंदर जागी है, तो आप किस तरह से इससे बेनिफिट कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, एंड ऑब्वियसली जो कि अक्सर अतीक भाई बताते हैं, द प्रोज ऑफ ओनिंग अ लैंड वर्सेस अ प्रॉपर्टी. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं एंड दे आर लुकिंग एट अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ फॉर themselves एंड द फैमिली. अतीक भाई से आप डायरेक्टली संपर्क करें, 416-666-2745. और ऐसा ना हो कि आप
7: यू नो पिछले कुछ हफ्तों से अतीक भाई को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मैं अब कॉल करूंगा, अब लॉन्ग वीकेंड आ गया, अब कॉल करूंगा, ये करते करते

0: जो भी भाई बहन ब्रैम्पटन में तलाश कर रहे थे अपना फर्स्ट रेजिडेंस या एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। टाउन होम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 600s, मेविस रोड और रे लॉसन बुलेवार्ड का जो एरिया है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने वाली है। मिस आउट अगर नहीं करना चाहते, हमें कॉन्टैक्ट कर लें जल्द से जल्द। ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत जल्द आपके हाथों से स्लिप आउट हो जाएगी। वेरी हॉट लोकेशन है ये, जैसे कि आप जानते हैं मेविस रोड और हाईवे 407 बहुत ही करीब है ये इंटरसेक्शन, और हाइड मैन पॉकेट है ये कनेक्टिंग मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन। वेदर आप स्ट्रॉन्ग रेंटल पोटेंशियल से देखें, एंड यूजर अपील देखें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें, अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स है इसमें, और ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स। नेचर जो है एकदम करीब आपके स्टेप्स पर, रोलिंग वुड्स, हिकरी वुड पार्क, मिलस्टोन पार्क, सब कुछ विद इन वॉकिंग डिस्टेंस है। और कोई भी डिटेल्स, कोई भी इंक्वायरीज आपकी है, हमें कॉल कर लें, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। नंबर एक ही है हमारा, 6478661086। सरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू सो मच
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। 6478661086, 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के साथ काम करते हैं। अगर आप बायर हैं, सेलर हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, एक बार ज़रूर संपर्क करें 6478661086। नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू जी। 6478661086, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉर्ज टाउन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं। आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक। अपॉइंटमेंट बनाए 9054573232। एंड ओके, गीत संगीत चलना चाहिए। आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो 2 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा मैं। इट्स ऑलमोस्ट 1:30। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अ डेडली स्टैबिंग इन मिसिसागा राइट नाउ, एंड वहाँ पर जो है स्ट्रीट को बंद किया गया है जिस एरिया में ये स्टैबिंग हुई है। मैन डेड आफ्टर बीइंग स्टैब नियर हुरंटारियो एंड डंडास इन मिसिसागा। सो जाँच जो है पुलिस की शुरू हो चुकी है इन रिगार्ड्स टू दिस स्टैबिंग। पुलिस सर्चिंग फॉर सस्पेक्ट्स लास्ट सीन फ्लीइंग ईस्ट बाउंड ऑन एग्नेस स्ट्रीट, एंड पैरामेडिक्स से विक्टिम वाज प्रोनाउंस्ड डेड एट द सीन। गीत बिल्कुल रेडी है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी सूर्यवंशी, टिप टिप बरसा पानी।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
2: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham, doing business your way. Wayne's Auto Group.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM। BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख। सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही है, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही है, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं। और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी। तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी। इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे। पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं। $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky कस्टमर कैन गेट इट 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ। 98 इंच सैमसंग टीवी $1999 का। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी। कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता। हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी। अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी। ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है। टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा। वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: जी, 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
5: ओ आज तो कमाल ही होगी, घरवाली कहंदी किचन
6: कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
7: सुनदे हो, मेरे प्रादिया च फ्लाइट है इंडिया तो।
8: ओ याद है पर उनु कहीं कि आंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
7: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सपने ना देखो। choleBhature.ca ते चलो।
9: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
10: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
11: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first-class experience with a state-of-the-art dealership. Aur aapki apni language mein expert service. Lease karein beautifully designed 2026 G70, sirf 1.9% se. Ya lease karein 2026 GV70, sirf 4.9% se. Aaj hi book karein test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street. Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 6476280040, 6476280040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com
0: skylakeimmigration।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940। मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
1: 10 मीटर बस इतना को याद रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। 7 दिन आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। 1 easy स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086, 647-866-1086, राज जोशी, नाम ही काफी है।

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव एंड मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी।
0: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के आज की जर्नी में ऑन CMR FM 101.3। टुडे इज ट्यूसडे मई 19 और आज का जो दिन है फिर से एक नई वाइब लेकर आया है, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी एनर्जी और ढेर सारे अच्छे मोमेंट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये जो हफ्ता है ये बड़े मज़े में आपका गुजरे, क्योंकि मौसम है बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक, सुपर सुपर हॉट मौसम है। और आज कहते हैं एक स्माइल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड कर दीजिए, क्योंकि गुड मूड भी एक चॉइस होता है। कहते हैं जब सोच पॉजिटिव होती है तो आपका दिन अपने आप बेटर लगने लगता है। तो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, दिलों को हल्का कीजिए और ख़ुद को अच्छे थॉट्स के साथ सराउंड कीजिए और बने रहिए मस्ती की रेलगाड़ी पर शाम के 4 बजे तक ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: वेल दोस्तों, बहुत ही मजेदार गाना आपकी नजर किया मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3। टुडे इज ट्यूसडे मई 19, और इस वक्त का जो तापमान है वो है बहुत ही बेहतर। फील्स लाइक 35 डिग्रीज। हीट वार्निंग इज इन इफेक्ट। कभी स्नो वार्निंग, कभी बरसात की वार्निंग, कभी सर्दी की वार्निंग, लेकिन आज है हीट की वार्निंग, जिसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन हीट वार्निंग का नहीं, थोड़ी थोड़ी गर्मी का इंतजार कर रहे थे। इतनी जल्दी पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा थपेड़ा पता नहीं था। लेकिन ये हीट में आप किस तरह से अपने आप को संभाले हुए हैं, जरूर हमारे साथ डिस्कस करें। 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, फील्स लाइक 35 डिग्रीज, और यही है आज का हाईएस्ट। इससे ऊपर तो कुछ जा नहीं सकता। वेल, लोएस्ट वुड बी 21 डिग्री सेंटीग्रेड रात के 11 बजे। और बहुत ही मजेदार शो लेकर हम हुए हाजिर एक बार फिर से मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3। 4 बजे तक आपका शालिनी का साथ रहेगा बरकरार। इट्स ट्यूसडे आज, और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपकी नजर करेंगे और आप लोगों के विचार लिए जाएंगे कि उस टॉपिक के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, कुछ मेहमानों का साथ, और ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी अ बिजी ट्यूजडे। हमारा डायरेक्ट नंबर ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ। अगर किसी अपने को मैसेज कोई पहुंचाना चाहे तो भी आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हैं। 416-569-7812, 416-569-7812। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस लौटते हैं, खोलते हैं बॉलीवुड कैलेंडर का पहला पन्ना मस्ती की रेलगाड़ी पर। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन सीएमआर 101.3 एफएम पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
0: Welcome to Madras Restaurant. Swad Swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 2026. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600. घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वॉप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: शॉन एक्सप्रेस द म्यूजिकल, से इट लाउड।
5: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
6: चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812, 416-569-7812। और अब आपको बताते हैं कि आज कौन सा बॉलीवुड स्टार जो है वो अपना बर्थडे मना रहा है। एक बहुत ही अच्छे सितारे हैं आज के, और आज के सितारे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर हैं, और कहा जाता है कि पूरी तरह से नेचुरल एक्टर हैं। इनकी जब हम एक्टिंग देखते हैं, हम कैरेक्टर को नहीं भूल पाते। एक ऐसा नाम जिसने स्ट्रगल को सक्सेस में बदल दिया और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है, और ये पावर हाउस परफॉर्मर के नाम से जाने जाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और इनका जो सफ़र है ना, एकदम इंस्पिरेशनल है। छोटे से गांव बुधाना उत्तर प्रदेश से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था। कई सालों तक उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, कभी नोटिस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब जब गिरे तब तक वो उठकर खड़े हो गए। फिर आया वो वक्त जब उनको असली पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासीपुर से, और फैजल खान का रोल इतना पावरफुल था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओवरनाइट स्टार बन गए। देन ही नेवर लुक बैक। गैंग्स ऑफ वासीपुर, द लंच बॉक्स, मंजली, द फाउंटेन मैन और बदलापुर, सेक्रेट गेम्स, ये सारी इन्होंने टॉप फिल्म्स करी हैं। और ये सॉन्ग्स में ज़रा कम नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ भी होते हैं वहाँ पर अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, गाने की बात रही तो एक फिल्म आई थी मोतीचूर चकनाचूर। उस फिल्म में ये थे आतिया शेट्टी के साथ, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। कम उम्र की लड़की एक जो है बड़ी उम्र के आदमी से शादी करती है ताकि उसको बाहर जाना आसान हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी, प्लॉट बहुत अच्छा था। क्रेजी लग दी इसी फिल्म से लिया गया, बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है। आपकी नज़र करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर, इंजॉय।

देसी लगदी कुड़ी पागल लगदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गाना नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आतिया शेट्टी पर पिक्चराइज्ड। मोतीचूर चकनाचूर, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म। अमेजिंग सी राइड चल रही है मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज लेकर आए हैं और आपसे पूछेंगे सवाल और उसका जवाब आपसे मांगेंगे। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और आज के विनर को $100 का गिफ्ट मिलने जा रहा है। फिलहाल बता दें, अगर आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टेरियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम अपने आप इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक, चाहे घर या ऑफिस। एक्सेप्शनली गुड लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। और बता दें, इनके पास फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। यश विंडोज एंड डोर्स की फास्ट ग्रोइंग टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 416-873-0050, 416-873-0050। अगर आप ऑनिंग और कैनोपी लगवाना चाहते हैं तो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी में जरूर बात करें, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर है कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स आप लगवा सकते हैं। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है और फ्री बारबेक्यू है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन, दिस इज द एड्रेस। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, नंबर इज 416-831-4790, 416-831-4790। आप जुड़े रहें शालिनी के साथ CMRFM 101.3 पर, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। और दोस्तों, कोई भी अगर गाना आप इंजॉय करना चाहें, किसी बॉलीवुड में कोई गाने से आपकी यादें अगर ताज़ा हो जाती हैं, तो वो गाना ज़रूर हमें भेजिए एंड वी वुड लव टू ब्रिंग योर यादें बैक अलाइव अगैन। कहते हैं कि कभी कभी आप जब पुराने दौर में जाते हैं ना, तो आपको उस गाने से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें याद आती हैं। अब ये गाने को ही देख लीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है आ जा रे परदेसी, और ये लता मंगेशकर ने गाया है। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास काफी देर से आई हुई है। फिल्म का नाम है मधुमती। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म। और इस फिल्म में वैजयंती माला थी, उनके साथ थे दिलीप कुमार। और इस फिल्म के जो बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स आर माइंड ब्लोइंग। इसमें जो म्यूजिक है वो सलिल चौधरी का है, और ये बहुत ही प्यारा सा गाना आ जा रे परदेसी, इसकी फरमाइश आई हुई है। और डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आज के क्लासिक सेगमेंट में हम ऐड करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून दोस्तों। ये खूबसूरत सा गाना आपकी नजर करते हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। गुड आफ्टरनून।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 905-458-5300.
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking

0: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
2: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। ताइवान में स्थानीय चुनाव के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारत विरोधी पोस्टर लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे। रूसी सरकार ने मंगलवार को कहा कि पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ईरान की संसद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। उधर भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है, लोगों को की जान जो है उसकी हिफाजत जरूरी है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फिलहाल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में 5 फुट लंबा सांप निकला। सूचना मिलने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। जालंधर के रहने वाले अशोक मस्किन की जिंदगी से रूबरू कराएंगे आपको एक रील से, कैसे बदल गई पूरी जिंदगी।
3: और दोस्तों अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट GTA की खबरों की तरफ। एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन सामने आया है जिसमें बैगेज टैग स्कैम को एक्सपोज किया गया है। पिछले एक साल में कम से कम 17 इनोसेंट पैसेंजर्स को ड्रग स्मगलिंग के आरोपों में विदेशों में डिटेन किया गया। इन यात्रियों के बैगेज के टैग्स बदलकर उनके नाम पर ड्रग्स भेजे गए। कई लोगों को हैंडकफ कर जेल तक भेजा गया और बाद में उन्हें रिलीज किया गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस मामले में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से जुड़े 6 बैगेज एंड रैंप वर्कर्स को अरेस्ट किया है। केसेस डोमिनिकन रिपब्लिक से लेकर यूरोप और एशिया तक फैले हुए हैं। ये स्कैम ग्लोबल लेवल पर ट्रैवल सेफ्टी को लेकर बड़ा कंसर्न बन चुका है। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है मिसिसागा से, कुक्सविल एरिया से बड़ी क्राइम की खबर है। पील रीजनल पुलिस के अनुसार ह्यूरेंटारियो और एग्नेस स्ट्रीट के पास स्टैबिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई है। विक्टिम को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के साथ मौके पर ही मृत घोषित किया गया। सस्पेक्ट्स ईस्ट बाउंड एग्नेस स्ट्रीट की ओर भागे हैं। नियर बाय स्कूल्स को प्रिकॉशन के तौर पर होल्ड एंड सिक्योर्ड में रखा गया था, बाद में जिसे हटा लिया गया है। हॉल्टन रीजन में बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। हॉल्टन रीजनल पुलिस की प्रोजेक्ट साइप्रस इन्वेस्टिगेशन में 24 फायर आर्म्स सीज किए गए हैं। डिपार्टमेंट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजर सामने आया है। 6 महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद चार सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया। कुल मिलाकर 30 चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक हाईली

0: organized drug trafficking network tha. टोरंटो पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल जारी है. मेयर ओलिविया चाओ ने कहा कि चीफ ऑफ पुलिस को पब्लिक ट्रस्ट रीस्टोर करने के लिए काफी काम करना होगा. ये रिएक्शन उस मामले के बाद आया जिसमें तीन टोरंटो पुलिस ऑफिसर्स स्पेन में अलेजेड असॉल्ट केस में चार्जेस फेस कर रहे हैं. मेयर ने कहा कि अगर आरोप साबित होते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए. एक कंज्यूमर अलर्ट, शॉपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट वार्निंग. कॉस्को कनाडा ने रेनप्योर टी ट्री एंड रोजमेरी शैम्पू एंड कंडीशनर को रिकॉल कर दिया है. रीजन है पॉसिबल माइक्रोबायल कंटामिनेशन और रिस्क है स्किन इरिटेशन या सेंसिटिविटी का. इफेक्टेड लॉट कोड्स हैं 2603C065 एंड 2604-6066. कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वापस करने की सलाह दी गई है. उधर ब्रैम्पटन से जुड़े मिसिंग टीन केस में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है. जय सिंह वेब लॉन्ग 16 ईयर के थे. इनकी बॉडी एक साल बाद सस्केचवान में मिली है. आरसीएमपी अब इसे होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देख रही है. इनसे लास्ट कॉन्टैक्ट 16 मई 2025 को हुआ था. केस ने पूरी कम्युनिटी को शॉक में खड़ा कर दिया है. एक लग्जरी कार चोरी की खबर आ रही है वॉन से. वॉन में आर्म्ड होम इन्वेजन हुआ. यॉर्क रीजनल पुलिस के अनुसार 5 सस्पेक्ट्स ने घर में घुसकर रेसिडेंट्स को गन पॉइंट पर थ्रेटन किया. कैश, ज्वेलरी और लैम्बोर्गिनी कार चुराकर फरार हुए. उसके बाद इंसिडेंट स्टॉर्ममॉन्ट ट्रेल एरिया में सुबह 4:45 पर हुआ है. पुलिस सस्पेक्ट की तलाश कर रही है और पब्लिक से इंफॉर्मेशन मांगी गई है. और अब नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट वेदर की तरफ. येलो हीट वार्निंग जारी है. इस वक्त आपको महसूस हो रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और ओवरनाइट लो आज रात में जा सकता है रात के 11 बजे 21 डिग्री सेंटीग्रेड. सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3. गुड आफ्टरनून. न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी. फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
2: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना. शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.

0: वेल दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी का सफर जारी है ऑन CMRFM 101.3। मैं हूं शालिनी, आप लोगों का फिर से वेलकम करते हैं। 2:41 इज द टाइम राइट नाउ, और आज के दिन में क्या खास हो रहा है वो आपको बताते हैं। और ये जो आज का दिन है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है देओल ट्रैवल के सौजन्य से। और आपको बता दें, आज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स देओल ट्रैवल के, टोरंटो से दिल्ली एंड मुंबई आप जा सकते हैं इस महीने वन वे 820 में। नाउ अमृतसर जा सकते हैं दिस मंथ 960 में दो बैग्स के साथ। नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है लिमिटेड सीट्स के साथ $1,490। नाउ टोरंटो से अमृतसर एंड टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,540 विद टू बैग्स। नाउ टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। All right, और आज का दिन क्या कहता है आपको बता दें, आज के दिन में क्या खास हो रहा है, और आज का दिन जो है आज के दिन को क्यों इंपॉर्टेंट बनाता है, यानी आज के दिन का जो सेगमेंट है वो आज के दिन को क्यों इंपॉर्टेंट बनाता है। और 19th ऑफ मई है आज, और सबसे पहले नेशनल डेविल्स फूड केक डे है आज। बड़ा मजेदार सा दिन है, रिच चॉकलेटी और सुपर इंडल्जेंट आज डिजर्ट तो बनता है। लाइफ थोड़ी सी स्वीट होनी चाहिए, इजंट इट, तो आज अच्छा सा मजेदार आप केक वाला डिजर्ट खा लीजिए। इसके अलावा आज है नेशनल बार्बर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। जो बार्बर्स होते हैं सिर्फ हेयर कट नहीं करते, बल्कि कई बार वो लोगों की बातें सुनकर उनका स्ट्रेस भी कम करते हैं। आप जानते हैं, जब भी आप हेयर सैलून में जाते हैं तो आप जब जाते हैं तो अपने दिल की बात करते हैं, और आपका दिल हल्का हो जाता है, उनका भी दिन अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो खूब सारी गॉसिप सुनते हैं। समटाइम्स यू नो अ सिंपल कॉन्वर्सेशन कैन हील यू। इसके अलावा आज का एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिमाइंडर है नेशनल मैकेनिकल ड्राई आई डे। और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से जो आँखें हमारी वो ड्राई हो जाती हैं, ड्राइनेस बड़ी कॉमन हो गई है। सो टेक ब्रेक्स, आप ब्लिंक मोर और अपनी आइज का खासा ध्यान रखें। नेचर लवर्स के लिए आज है प्लांट समथिंग डे। आज छोटा सा प्लांट लगाइए, ग्रीन टुडे बेटर टुमारो। नेशनल स्टॉप नोजिया डे है, और हेल्थ इश्यूज को इग्नोर ना करें। अगर छोटे छोटे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं किसी वजह से, तो वो भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे। फैमिली डॉक्टर्स जो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारे साथ खड़े रहते हैं, और मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो कोशिश करें अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आज ज़रूर कह दें। तो आज का दिन है ओवरऑल स्वीट हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस के साथ नेचर और केक का परफेक्ट कॉम्बो। आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, जहां पर एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है ऑन CMRFM 101.3। और आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द शो। स्टूडियो के नंबर पर 416-593-0055 416-593-0055। गुड आफ्टरनून
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
5: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810। मिड्डा फर्नीचर।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर, अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
7: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
8: Sean Express,
9: Simply Good, retro style, old classics.
0: वेल दोस्तों, आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टूडियो का नंबर जिसकी अब आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप जीतना चाहते हैं $100 का गिफ्ट, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरह से स्पॉन्सर्ड है ये गिफ्ट। और अब मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल और फिर चलेंगे आज के गोल्ड सॉन्ग की तरफ। सोने सा चमकता दमकता गाना आपके लिए तैयार है। ऑल राइट, और आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए क्या, वो मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं पूछती हूं एक सवाल, आप बताइए उसका जवाब कि आजकल सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा वक्त आपका किस चीज़ पर वेस्ट होता है ज़िंदगी में, ये आप मुझे बताइए। क्या आप कहते हैं कि 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था और 2 घंटे रील्स में निकल गए, क्या ये रीज़न है, या फिर जल्दी से आप के पास किसी का फ़ोन आ गया और बातों में वक्त ज़ाया हो गया, आप विंडो शॉपिंग करने निकले थे और कब जो है आप विंडो खोल के घर के अंदर ही चले गए और पूरे मॉल को छान मारा और आप 10 मिनट के लिए गए थे और आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मॉल से बाहर निकले। कौन सी वो एक चीज़ है जो आप ज़िंदगी में करते हैं और आपको पता है वो करने से आपका वक्त ज़ाया होता है, कौन सी एक चीज़ आप मुझे बताना चाहेंगे। आवर लाइन्स आर ओपन नाउ और आई नीड टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कौन सी वो एक चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद होता है, हमें बताइए ओपनली और ऑनेस्टली ऑन एयर। 416-593-0055 416-593-0055। और आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। फिल्म का नाम है शान और ये गाना लेजेंडरी सिंगर आर डी बर्मन की एनर्जेटिक स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल था। लाइव ऑर्केस्ट्रा की इसमें जो फील है वो ऑडियंस को पूरी तरह से क्रेजी कर देती है। और कहते हैं जब दोस्ती में मस्ती का रंग जम जाए, जब दोस्ती में मस्ती का रंग जम जाए तो हर रात भी सेलिब्रेशन बन जाए। ऑलराइट, इस गाने की तरफ चलेंगे और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। गुड आफ्टरनून, हु इज दिस?
8: गुड आफ्टरनून, रश्मि हियर, कैसे हो समीर?
0: हाय, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रश्मि?
8: बढ़िया बढ़िया।
0: क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में?
8: ऑब्वियसली सोशल मीडिया।
0: अच्छा, तो कितना वक्त आप लगाती हैं सोशल मीडिया पे रील्स देखने में?
8: अगर वो वक्त पता होता तो टाइम ही वेस्ट नहीं होता।
0: नहीं, अब वेस्ट कर दिया।
8: एक रील या एक रील देखी लगता है और स्क्रॉल कर लूं और देख लूं।
0: अच्छा, तो ऑन एन एवरेज अब देख लिया, बर्बाद हो भी गया टाइम, चलिए, या इन्वेस्ट हो गया, कुछ भी कह लें, क्योंकि रील्स से हम कभी कभी सीखते भी बहुत कुछ हैं। तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितनी देर आप रील्स देखती हैं, तो डू यू हैव एन आइडिया इन अ डे?
8: लाइक कंटिन्यू तो नहीं देखते, लेकिन जब भी फोन हाथ में आया तो कुछ 10-15 मिनट निकल जाते हैं, तो पूरे दिन में आप गिन लो। लाइक मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे ऑल टुगेदर इन अ डे।
0: ओके, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू रश्मि जी फॉर योर कॉल। ऑलराइट, एंड वी हैव द नेक्स्ट कॉलर नाउ। गुड आफ्टरनून, हु इज दिस? हेलो,
10: मेरा नाम विपुल है।
0: जी विपुल जी, बताइए।
10: हाँ, मैं, मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा टाइम जो बिगड़ता है वो ड्राइविंग पे बिगड़ता है।
0: अच्छा, ओके।
10: हाँ, ड्राइविंग में, ट्रैफिक में, ड्राइविंग में सबसे ज्यादा टाइम जाए होता है।
0: तो एक दिन में आप कितनी गाड़ी चला लेते हैं, कितने आवर्स आप चलाते हैं एक दिन?
10: एक्चुअली 2-3 घंटे तो चली जाती है गाड़ी।
0: अच्छा, और आपको लगता है कि ये अगर ड्राइविंग में,
10: आप कभी मॉल में जाओ या शॉपिंग में जाओ या जॉब पे जाओ, कहीं भी जाओ, 401 ये सब कुछ हमेशा जाम ही मिलता है और जबरदस्त टाइम बिगड़ता है।
0: ऑलराइट जी, थैंक यू। और आप ड्राइविंग करते वक्त आप अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ये सारी चीजें आप करते होंगे?
10: मैं आपके हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
0: मुझे पता है, आई नो जी,
10: आई एम एंजॉयिंग योर शो एब्सोल्युटली।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच विपुल जी, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉल। ऑलराइट, सो हैव अ सेफ ड्राइविंग एंड एंजॉय योर डे।
10: थैंक यू
0: जी। और हमारे लिए एक और कॉलर तैयार हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेकर। और कौन सी चीज में आपका टाइम जाया हो रहा है जिंदगी में, वो बात का जवाब उनके पास है। लेट्स हियर इट। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
11: इट्स पुनीत, हाउ आर यू?
0: I'm good, Puneet. How are you?
11: Pretty good, thanks. Anyway, it's a very good question that you asked today, because it's very important to people, because the life is short, you know. And people waste a lot of time in other things, you know, instead of important things that they need.
0: That's
11: now,
0: right.
11: The thing is, you know, I think I'm included into it, right? Because I see a lot of TV too. But the thing is that, you know, people should realize in this when they are watching TV that they spend more time in watching advertisements than the program itself.
0: Okay.
11: So there's a lot of time that's wasted in watching TV. This is what people should realize. Because, you know, there are such a lot of advertisements. The programs are hardly 25%. And 75% are all advertisements.
0: I see. Okay. So that's what you don't like. Okay, interesting. और पुनीत जी, ऐसा भी होता है ना कि जब हम टीवी देखते हैं तो आजकल कोई टीवी भी एक बार में पूरा नहीं देखता, टीवी के साथ हमारे हाथ में फोन हमेशा रहता है, फोन के साथ साथ टीवी देखते हैं। Am I right?
11: That's true.
0: हाँ, अच्छा, सिर्फ जब हम मूवी थिएटर में फिल्में देखने जाते हैं बस वहाँ पर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कीप द फोन असाइड बिकॉज इट्स डार्क एंड वी डोंट वांट टू बॉदर एनीबॉडी। दैट इज द ओनली टाइम मुझे लगता है कि जब हम फोकस के साथ कोई चीज देखते हैं।
11: दैट्स ट्रू। Yeah.
0: Right? Okay. All right. Thank you so much for...
11: One thing good about the films, they don't have so many advertisements, you know.
0: Right. Okay. Thank you so much for joining us, Puneet ji. Have a wonderful day. जी और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं लेट्स हियर इट कौन बात कर रहे हैं वेलकम
12: हाय शालिनी दिस इज सुमी या सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आई वुड से एक्सेस ऑफ सो आई डोंट नो कि किस पर्सपेक्टिव से देखें उससे वेस्टेज के हिसाब से देखें या समबडी रियली वांटेड टू नो अबाउट समथिंग एंड इट जस्ट गॉट ट्रैप्ड इनटू लाइक मल्टीपल थिंग्स सो आई थिंक फॉर मी आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ आई एम श्योर कि हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है कोई ड्राइविंग पसंद नहीं कर रहे कोई टीवी एक्सेस नहीं पसंद कर रहे या एक्सेस सोशल मीडिया नहीं पसंद कर रहे एज आई सेड लाइक यू नो इन द बिगनिंग एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर मी पर्सनली आई थिंक आई ओवर थिंक टू मच rather than like you know taking action like you know in the moment I think I overthink I plan I get trapped into what if questions like you know so I think for me like it's overthinking kills my time too much and I think I just need to put up some action rather than overly think about something
0: How nice, Sumi. I absolutely loved what you said. Or you're being very honest. In fact, all the callers are being honest. Or openly अपनी बात accept करना कि मेरे से ये गलती हो जाती है और मैं ये क्योंकि we are all human beings end of the day. And when we have such discussions and that's when we realize कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं थोड़ा इसमें हम ट्वीक्स कर सकते हैं थोड़े चेंजेस कर सकते हैं तो जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है
12: बट मैं इसको थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखती हूँ मैं आई जस्ट डोंट सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि हम गलती कर रहे हैं सी द थिंग इज कि आजकल की जो लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल है एवरीबॉडी वांट्स टू हैव सम डाउन टाइम मी टाइम राइट तो आपका वो मी टाइम टीवी हो सकता है मेरा वो मी टाइम मे बी लाइक यू नो लिसनिंग टू नाइस म्यूजिक हो सकता है मे बी किसी और का ड्राइव पे जाना हो सकता है सो आई थिंक हम सब वो एक चैनल ढूंढते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा डाउन टाइम मी टाइम मिल सके और उस मी टाइम में हम इतना एंजॉय कर जाते हैं कि वो हमें लूज कर जाते हैं ट्रैक कि भाई टाइम कितना हुआ है जैसे कि मुझे रिफ्लेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है पर मैं उसमें इतनी वो एंगेज हो जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरा सारा टाइम उससे निकल गया रादर देन आई शुड हैव टेकन यू नो डन समथिंग लाइक अबाउट इट
0: दैट्स राइट सुमी मैं इस बात को ये मानती हूँ कि अगर देयर इज समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली एंजॉय तो वो टाइम को हम ये नहीं कह सकते कि टाइम जाया हुआ है वो टाइम आपका इन्वेस्ट हुआ है तो आज मेरा जो सवाल था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है जाया हो रहा है बट व्हाट यू आर सेइंग इज दिस इज समथिंग वेयर तुम्हारा आपका जो वक्त है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है मुझे ये लगता है स्ट्रांगली आई फील दैट कि अगर हमें किसी चीज में खुशी मिलती है हमें वो वक्त हमारा है हम वो वक्त में कुछ भी करें चाहे हम क्रेजी चीजें करें चाहे हम कूदें चाहे हम गाना गाएं चाहे डांस करें चाहे रील्स देखें अगर वो चीज़ हमारे दिमाग को शांत कर रही है और हमारे दिमाग की डोज है वी शुड डेफिनेटली डू दैट सो इन दैट मीन्स कि जो आप अभी कर रही हैं वो अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर रही हैं वक्त को ज़ाया नहीं कर रही सो कीप डूइंग दैट इफ दैट इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस और वो करने के बाद आपको गिल्टी फील नहीं हो रहा कि अरे मेरा वक्त इतना चला गया जब तक वो चीज नहीं हो रही तब तक सब
12: चीज हो रहा है क्योंकि ओवरली एज आई सेड एडिटिंग इज
0: तो इसका मतलब हो रहा है फिर ओके
12: हो रहा है तो एक्सेस हो रहा है चीज को 10 मिनट लगने चाहिए उस चीज को 20 मिनट लगेंगे तो देन ओके हो रहा है
0: जी बिल्कुल बट अच्छा हुआ आपने ये चीज रियलाइज करी और इसमें आप कुछ ना कुछ ट्वीक जरूर कर सकती हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट यू फॉर दैट और हमारे साथ जितने भी कॉलर जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और 4 बजे तक आप लोग कॉल्स कर सकते हैं व्हेनेवर गेट अ चांस और हम बीच बीच में कॉलर से बात करते रहेंगे और आपसे मैंने पूछा था एक सवाल कि कौन सी वो एक चीज है अपनी जिंदगी में एक आदत है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है और आप ओवरडू करते हैं उसको तो जरूर हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812 चलते हैं सीधे आज की ताजा खबरों की तरफ स्टे ट्यून्ड
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया
0: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. Free seminar every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Limited seats but unlimited opportunities. Call 905-206-1008 or visit winlifetime.com. Madras Restaurant, Swad, Swag or South ka Tadka. Friday, Saturday or Sunday enjoy kare authentic South Indian unlimited thali starting at only 20-26. And KCDL Construction Group, legal basement construction se lekar full home renovation, separate side entrance, residential and commercial asphalt paving, resurfacing, concrete, interlocking and much more. Call 647-766-4335, 647-766-4335.
13: शबे फुरकत में तारे गिन रहा था मगर एक अश्क ने गिनती भुला दी. इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. ताइवान में स्थानीय चुनाव के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारत विरोधी पोस्टर लगाया है. इसमें पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा नो यानी प्रतिबंध का निशान बना हुआ था. पोस्टर का मैसेज था कि भारत से आने वाले प्रवासी मजदूरों का विरोध किया जाए, वे अपराधी होते हैं, उन्हें देश में न आने दिया जाए. ये विवाद ऐसे समय में हुआ है जब ताइवान भारत के साथ हुए श्रम सहयोग समझौते के तहत भारतीय कामगारों को बुलाने की तैयारी कर रहा है. ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिनतांग यानी KMT भी भारतीय मजदूरों को बुलाने का विरोध कर रही है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे. रूसी सरकार ने मंगलवार को कहा कि पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी ने पुतिन को दिसंबर 2025 में उनके भारत दौरे के दौरान आधिकारिक तौर पर समिट में शामिल होने का न्योता दिया था. एक साल के भीतर पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा होगा. पीएम मोदी भी इसी साल रूस दौरे पर जाएंगे. ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है. आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है. ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने कहा कि संसद जल्द इस बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा. रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है. अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें.
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा जीतना चाहते हैं, ज़िंदगी भर जीतना चाहते हैं, तो विन लाइफ टाइम का रुख आप ज़रूर कीजिए। और ये वीकेंड कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अहम वीकेंड साबित हुआ, जो लोग गए सेमिनार में सैटरडे को और अपने लिए एक सही करियर चुना। और जिन लोगों ने नहीं सुना, उन लोगों के लिए और ज़्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम विन लाइफ टाइम, राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: Good, good, very well. Good afternoon to you and your listener.
1: Thank you so much, Rafi ji, for joining us today. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे listeners को बताएं कि कैसा रहा आपका सेमिनार, कितने लोग थे जो बड़ी खुशी खुशी विन लाइफ टाइम को ज्वाइन कर गए, कितना एक्साइटमेंट आपको नजर आया लोगों में?
2: देखिए, एवरी सैटरडे सेम एक्साइटमेंट, सेम एनर्जी से हम प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह एनर्जी लोग लेके आते हैं। तो दोनों ऑफिस में सेमिनार हुआ, दोनों सक्सेसफुल थे। इस वक्त मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ बैंक की रॉकी माउंटेन में से। तो वहाँ उठे अपने होटल के रूम से, हम पांचों ने ट्रेड लिया, $500 पर पर्सन ने ट्रेड लेके। अब हम वैंकूवर और सेमिनार कर रहे हैं, कैलगरी पहुंच चुके हैं। तो दुनिया में आप कहीं पर भी हो, हमारा सिस्टम इस तरह का यूनिक है कि कहीं पर भी बैठे, ख्वा माउंटेन्स हो, ओशन हो, ऑफिस हो, घर हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, तो आप ये काम कहीं से भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन करें, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: अमेजिंग। तो मैं, जैसा राफी जी आपने बताया कि आप जिंदगी में इंजॉय भी कर सकते हैं काम के साथ साथ, तो आई एम श्योर हमारे तमाम हजारों लाखों लिसनर्स जो हैं वो भी ये करना चाहेंगे कि आप वेकेशन की वेकेशन और काम का काम आप करें। तो ये काम आप कर सकते हैं दोस्तों। तो विन लाइफ टाइम को ही क्यों चुना जाए ट्रेडिंग करने के लिए, ये भी मैं आपसे पूछती हूँ।
2: देखिए, हमारा प्रोफेशनल ऑफिस है, दोनों है, 30 का स्टाफ है, हम एज ए हॉबी नहीं करते, बकायदा प्रोफेशनल है। इवन दो आई एम नॉट इन द ऑफिस विद माय टीम, लेकिन पूरे का इट्स नॉट ए वन मैन शो कि अगर राफिल साहब नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर चलना क्या रुक जाता है। तो हमारी पूरी टीम के तौर पे हम इसको करते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो इस वक्त हमारे डिफरेंट मेंटर्स इस वक्त ऑफिस चला रहे हैं, तो यू विल फाइंड अस कम्प्लीटली डिफरेंट कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स।
1: ओके, वंडरफुल। तो दोस्तों, आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं सक्सेसफुली मेंटर्स की गाइडेंस के साथ, और कोई भी फंडिंग अपनी तरफ से नहीं लगानी। जैसा राफी जी हमेशा कहते हैं, देर आर कंपनीज हु आर गोइंग टू फंड योर ट्रेडिंग। और आप लोग सैटरडे का सेमिनार अटेंड करें या वीकडे में भी आप जाकर लाइव फ्लोर देख सकते हैं कि कैसे लोग वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। हार्ट ऑफ मिसिसागा में लोकेटेड है, फॉर द लास्ट 18 ईयर्स, बड़ा रेनाउंड नेम है हमारी कम्युनिटी का। विजिट करें ज़्यादा जान के लिए winlifetime.com, नंबर टू कॉल 9052061008 9052061008। राफी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट, टॉक टू यू सून।
2: थैंक यू जी, टेक केयर,
1: बाय। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
3: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। मंगलवार को दिए गए इस मामले पर आखिरी फैसले के साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नजबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। जो अफसर इनका पालन न करें उन पर अवमान का केस चलेगा। राहुल गांधी ने मंगलवार को नॉर्वे में एक महिला जर्नलिस्ट हैली लिंग के सवाल को टालने पर पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। राहुल ने हैली की एक्सपोस्ट पर शेयर करते हुए ये लिखा। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट की थी, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि देश में सभी लोगों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर उतरकर आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने या डर का माहौल बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने ये बात नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी सुनवाई के दौरान कही। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भारत के मैदानी इलाके खास तौर पर जो बहुत तप रहे हैं इन दिनों, जहां पर तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहां बेसब्र होकर इंतजार किया जा रहा है मानसून की फुहारों का। फिलहाल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है। मौसम विभाग ने तय तारीख 1 जून से पहले 22 से 26 मई के बीच मानसून के केरलम पहुंचने की संभावना जताई है। इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका ज्यादा है, ऐसा मौसम विभाग बता रहा है। इसलिए लगातार बारिश के बजाय मानसून बार बार अटकेगा, एक ही जगह ठहरा रहेगा और इसमें बिना बारिश के दिनों की संख्या ज्यादा रह सकती है और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। बताया जा रहा है कि जून से सितंबर के दौरान 7 से 14 दिन तक के कई ब्रेक आ सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक 5 फुट लंबा सांप निकला। सूचना मिलने के बाद उसे रेस्क्यू करने के लिए एक स्नेक रेस्क्यूअर मौके पर पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांप अपार्टमेंट के नीचे मिला था। रेस्क्यूअर ने उसे हाथों से पकड़कर सुरक्षित तरीके से काबू में किया। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और इस ऑपरेशन में मदद की। और अब कहानी अशोक मस्किन की, जिंदगी जिनकी एक रील के साथ बदल गई। जालंधर के रहने वाले अशोक, इसी रील से उन्हें ऐसा ऑफर मिला कि फैक्ट्री में खरात का काम करने वाले मस्किन कोक स्टूडियो में गाने लगे, बुलैया वे और लगदानी दिल मेरा जाना। रातों रात स्टार बन गए। उनका गाया हुआ जो गीत है उसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक उन्हें बॉलीवुड मूवीज के गाने के साथ लाइव शोज के ऑफर तक आ रहे हैं। हालांकि अशोक की जिंदगी पहले बहुत संघर्ष से भरी हुई थी। 15 किलोमीटर पैदल चलकर अशोक ने मशहूर पंजाबी सिंगर साबर कोटी से गायकी सीखी। हालांकि गरीबी के चलते उनकी गायकी का जो शौक है वो दिहाड़ी में ही दब गया था। 50 साल की उम्र में फेमस हुए, फैक्ट्री का काम छोड़ दिया और पूरा ध्यान अब सिंगिंग पर है। किस्मत बदलने पर अब पत्नी और बेटी को भी गर्व और खुशी है। जिंदगी के संघर्ष और अचानक मिली शोहरत जो है वो अशोक मस्किन ये कहते हैं उसके लिए कि ऊपर वाले का करम है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश के सामने आ रहे दहेज उत्पीड़न और सुसाइड के मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 33 साल की महिला की संदिग्ध मौत के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए एक लंबा पोस्ट लिखा। कंगना ने युवा महिलाओं को सलाह दी कि वे शादी से पहले अपने करियर और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दें। उन्होंने समाज पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय समाज शादी के बाद बेटियों को उनके हाल पर छोड़ देता है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हर दिन शादीशुदा युवा महिलाओं से संबंधित दुखद खबरें सामने आ रही हैं। कई शिक्षित महिलाएं इस दमघोटू माहौल से निकलने के लिए अपने माता पिता से मदद मांगती हैं, लेकिन हमारा समाज शादी के बाद बेटियों का साथ छोड़ देता है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
4: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
6: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
7: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
8: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
9: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
8: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
9: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
8: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
4: Sean Express.
10: Simply Good.

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Ja.

0: एक ऐसी टीम जो आपके साथ साथ रहती है शुरू से लेकर आखिर तक। और जब हम डेट की बात करते हैं दोस्तों, वो डेट के साथ बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं। हमें स्ट्रेस होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, हमारे फाइनेंशियल्स ख़राब होते हैं और हमारी फैमिली लाइफ भी सारा उथल पुथल हो जाती है। तो इसीलिए मैक्सिमम डेट रिलीफ की हम बात करेंगे। जॉइनिंग अस नाउ ऑन एयर इज़ रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर आयशा मुनव्वर जी। और पिछले कितने सालों से कम्युनिटी की हेल्प कर रही हैं और आपको डेट से फ्री कर रही हैं। नंबर है 416-428-2165। हमारे साथ जुड़ेंगी ऑन एयर। आयशा जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफ़ा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाएं। बट एनीवेज फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा आशा जी ने बताया कि आपके लिए सल्यूशन अवेलेबल है और बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको सल्यूशन मिलेगा और आप डेट फ्री हो जाएंगे। नंबर नोट करें आशा जी का, 416-428-2165, दैट्स 416-428-2165। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3 और हमारा आज का जो टॉपिक है स्टेज द सेम। कौन सी वो एक आदत है आपको लगता है जिसमें आपका वक्त बर्बाद होता है जिंदगी में, और आप ऑनेस्टली उस आदत को एक्सेप्ट करेंगे। और स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस लौटते हैं और आपसे बातचीत भी होगी। एक बहुत प्यारा सा गाना है, आपकी नजर करेंगे हम शॉन एक्सप्रेस पर। स्टे ट्यून। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं। सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते ओनादि टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
4: इह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
3: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant 905-789-6600. That's 905-789-6600.
7: Sean Express, yani aap aur hum. Aur is gaane mein hai kuch dum.

0: विद जॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812
1: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा

0: 657.
1: ये जो नंबर है ना आपकी ज़िंदगी में बड़ी आपकी मदद कर सकता है, मैजिकल नंबर है। और इस नंबर के थ्रू आपको इतनी इतनी इतनी हेल्प मिलती है, और हेल्प तब मिलती है जब आपको उस हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आपको पता नहीं होता, आपके होशो हवास गुल हो जाते हैं कि अगला स्टेप मैं क्या लूँ, जब आप कार एक्सीडेंट में फंसे हुए होते हैं और आपको लगता है कि कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो मुझे सही गाइडेंस दे, क्योंकि उस वक्त हम जो रैशनली बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो जाए आपके साथ तो राइट अवे इस नंबर को डायल करें और आपको मदद मिलेगी। अंजुम कुरैशी जी बड़ा रिनाउन नेम है हमारी कम्युनिटी का, हमारे साथ जुड़े जा रही हैं। 416-570-0157। अंजुम जी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि हम अपने पास रखते हैं, हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि आपको हर वक्त नजर के सामने ऐसे होने चाहिए कि जिस वक्त आपको, जब हम एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत पैनिक हो जाता है इंसान, तो ऐसी जगह ये नंबर होना चाहिए कि आपको पता हो कि अगर मैं पैनिक भी हूं तो मुझे ये पता हो कि ये मेरा नंबर कहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि ये वो नंबर है जिससे ना सिर्फ आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं, आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कार एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आपका कार एक्सीडेंट होता है उस वक्त आप कितने ही क्यों ना समझदार हों, आदमी के होश उड़ जाते हैं, उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसलिए हमने हमेशा बताया कि जब कार एक्सीडेंट होता है एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की बजाय आपको बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आना है। जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बगैर ना तो आप कलिजन सेंटर जाकर अपनी आप चीजें साइन कर सकते हैं और ना ही आपको रिपोर्ट बन सकती है। तो रिपोर्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उस रिपोर्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास सीन की तस्वीरें भी मौजूद हों, आपके पास जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उस पार्टी का लाइसेंस, आपके इंश्योरेंस की जो स्लिप है वो, और गाड़ी की नंबर प्लेट उतारना मत भूलिए। हम बार बार क्यों कहते हैं नंबर प्लेट, क्योंकि नंबर प्लेट से ये होता है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई और भी बंदा गाड़ी चला रहा है लेकिन गाड़ी जो है रजिस्टर्ड किसी और के नाम है, तो एटलीस्ट आपको सही पता होता है कि गाड़ी का ड्राइवर कौन है, और उससे हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो ये तमाम सर बातें याद रखना, आपका काम हमारा काम गाहे बगाहे आपको याद दिलाना। हम आपको बताते हैं कि अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है तो पर्सनल इंजरी के लिए अंटारियो में दो बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कि आपको कोई भी फीस अपफ्रंट नहीं देनी पड़ती, बल्कि आपको फीस उस वक्त देनी होती है जब एक लॉयर केस को सेटल करा चुका होता है, नंबर वन। नंबर दो, आपको जो है यहाँ पर अगर फर्ज कीजिए कि आप एट फॉल्ट भी हैं तब भी आप अपने क्लेम को कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी अगर हमारा एट फॉल्ट एक्सीडेंट है तो हम किस तरीके से करेंगे, हमारा तो अपना फॉल्ट है। तो यहाँ पर अंटारियो में आप जो अपना प्रीमियम पे करते हैं उसमें आपको ये सहूलत मिलती है कि अगर आपका कार एक्सीडेंट है तो आप अपने कार एक्सीडेंट को एट फॉल्ट एक्सीडेंट को भी आप क्लेम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपकी टेक केयर करेगी, लेकिन आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो भी आपके जो उस वक्त जो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तमाम सवालों का आपको जवाब मिलता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आपका कानूनी मसला शुरू हो जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक लॉयर के पास जाएंगे तो सारे क्वेश्चन में वो तमाम तरह चीजें मांगेगा जो आपके पास सबूत के तौर पे मौजूद है। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाता है आप हमें कॉल करते हैं 416-570-0157। ये नंबर संभाल के रखें, हमारे लॉयर ना सिर्फ आपके केस को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अंजुम जी। और एक तरह का सहारा बनती हैं आप जब मुसीबत में लोग फंसे होते हैं। दोस्तों ये नंबर फिर से मैं बता देती हूँ, ये नंबर आप भी ले सकते हैं, अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 416-570-0157 अंजुम कुरैशी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों शो में, और मैंने आपसे पूछा था बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल कि कौन सी एक ऐसी आदत है आपको लगता है उस आदत से आपका वक्त ज़िंदगी में बर्बाद होता है और आप कुछ नहीं कर सकते उस आदत के बारे में, आप चेंज नहीं कर सकते ये जानते हुए कि वक्त आपका ज़ाया हो रहा है। लेट्स सी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कि उनका क्या कहना है। जी वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी, हु इज़ दिस? आप ऑन एयर हैं, बताइए। हाय, हु इज़ दिस?
3: Yeah, my name is Prasad. मेरी आवाज आ रही है?
1: जी प्रसाद जी आ रही है, बताइए।
3: हाँ तो

0: एक आदत है जो मेरे साथ बचपन से जुड़ी हुई है, और ये आदत मेरी है कि मैं ना नहीं बोल पाता, मना ना करने की जो आदत है, मुझे लगता है उस
1: अच्छा
0: आदत की वजह से बहुत सारा वक्त मेरा ज़ाया होता है। और
1: अच्छा
0: फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ और कोई कोलीग है या कोई है जो मुझे
1: जी
0: किसी काम के लिए पूछता है कि आप ये काम कर सकते हो क्या, जो मेरा काम नहीं है पर मैं ना नहीं कह पाता, तो उसका वो काम
1: अरे
0: करने में मेरा वक्त ज़ाया होता है, जो मैं उसको रीयूटिलाइज कर सकता हूँ कुछ बेटर करने के लिए।
1: अरे वाह,
0: तो
1: क्या
0: ऐसा मेरे
1: बात
0: साथ
1: है,
0: बहुत होता है।
1: वंडरफुल प्रसाद जी. और आप, यू सीम टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाके, लगता है, लोगों की मदद करते हैं. लेकिन आई अंडरस्टैंड, कभी कभी हम क्या करते हैं कि दूसरों का हेल्प करने के चक्कर में अपनी जो है वक्त बर्बाद कर लेते हैं. बट एक किताब आई थी बचपन में, एक बच्चों की किताब होती है, उसका नाम है नोनी सेज नो. तो वो अब ज़रूर आप पढ़िएगा, छोटे बच्चों की किताब है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज है. एक नोनी करके बच्ची होती है और वो मना नहीं कर सकती किसी को, और उसकी मदर फिर उसको समझाती है कि कैसे तुम्हें ना करना भी सीखना है, पोलाइटली आप ना कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली शी सेज नो. तो वो किताब शायद आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, आप कभी आपको मिले या इंटरनेट पर देखिएगा नोनी सेज नो, उससे आप
0: जी
1: काफ़ी कुछ सीख सकेंगे.
0: जी जरूर, जैसे कि मैं ना नहीं कह सकता तो मैं इस बात के लिए भी ना नहीं कहूंगा और मैं जरूर पढ़ूंगा।
1: हाँ,
0: थैंक यू सो
1: स्वीट,
0: मच।
1: वंडरफुल, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. और भाई, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े ऑनेस्टली हमें सब लोग बता रहे हैं आके. और यू नो, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपका वक्त खा लेती है और आपको पता ही नहीं चलता आपका वक्त कहाँ गया. तो ये मैंने आपसे पूछा था. $100 का गिफ्ट अभी भी रखा है, और वो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है. फिलहाल बता दें, देओल ट्रैवल के लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं. टोरंटो से दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं इस महीने 1 वे 820 में. अमृतसर जा सकते हैं इस महीने 960 में, 2 बैग्स के साथ. दिल्ली से टोरंटो आप आ सकते हैं मिड जून से अगस्त तक, राउंड ट्रिप लगा है $1,490 में. नाउ टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप है $1,540, 2 बैग्स. लिमिटेड टाइम ऑफर है. और इटोबिको एंड ब्रैम्पटन, दे सर्व फ्रॉम 2 लोकेशंस. देओल ट्रैवल नंबर्स आर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. आप हैं शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी के साथ, ऑन CMR FM 101.3. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. और दोस्तों, हमारे घर पे जनरली छोटी बड़ी चीज़ें, परेशानियां आती रहती हैं. जैसे कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्लम्बिंग इश्यूज़ आ गए, आपका टब जो है वो क्रैक हो गया है, आपकी पानी लीक कर रहा है, वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें आपकी आती रहती हैं लाइफ में. तो इसके लिए आपको चाहिए एक हैंडीमैन जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, जिनकी पूरी टीम हो, जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दें. तो वो नंबर नोट कर लें, राजेश शर्मा जी का क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस का नंबर है, और ये हैंडीमैन की सर्विसेज भी देते हैं. एट द सेम टाइम, आप पूरी तरह से रेनोवेट करना चाहते हैं बेसमेंट, या बेसमेंट बनवाना चाहते हैं, किचन रेनोवेट करना चाहते हैं, टाइल्स लगवाना चाहते हैं, पेंट्स का मसला है, हार्डवुड फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, साइड एंट्रेंस कराना चाहते हैं, कंप्लीट घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, नंबर आप नोट कर लें राजेश शर्मा जी का, 647-210-2075, 647-210-2075. आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, ऑन CMR FM 101.3, मेरे यानी शालिनी के साथ. छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, और अगला गाना आपकी नज़र करते हैं. इस गाने की फरमाइश आई हुई है काफ़ी दिनों से, और अनयूजुअल सा गाना है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो गाना बेहद पसंद आएगा. स्टे ट्यून्ड.
2: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.
3: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
4: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
3: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
4: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
2: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा।

बहुत प्यारा सा गीत आपकी नज़र किया हमने सीएमआर एफएम 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ, और आशा भोसले की आवाज़ और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। आरडी बर्मन का म्यूज़िक था, फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलेन प्रेमनाथ और साथी कलाकार। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर, और वेल द सन डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप अगर चाहते हैं अपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की विंडोज़ एंड डोर्स लगवाना अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में, तो यश विंडोज़ एंड डोर्स से ज़रूर कांटेक्ट करें। सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो, खुद ही विंडोज़ एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। सो नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। गुड लुक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी, इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी और सुपीरियर एनर्जी एफिशिएंसी, और इसके साथ साथ प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करें। फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यश विंडोज एंड डोर्स में बात कर सकते हैं। 416-732-3600, 416-732-3600। और इसके साथ साथ कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड, घर और बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग, ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है। बिल्कुल फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। अपनी आउटडोर स्पेस को ज़्यादा सुंदर, सेफ और फंक्शनल बना सकते हैं। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है। नंबर है 416-831-4790, 416-831-4790। और अगर आप परेशान आ चुके हैं चूहे, खटमल, कॉकरोच और इस तरह की चीज़ों से या वाइल्ड लाइफ से, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल हैं आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ रिमूवल एक्सक्लूजन करते हैं, इनका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा फास्ट है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। और अपने घर और बिजनेस को पेस्ट फ्री रख सकते हैं, आयान काशिफ जी से बात करें। 647-966-4355, 647-966-4355। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 3:47 हुए हैं। आप जुड़े रहिएगा शालिनी के साथ ऑन सीएमआर एफएम 101.3 पर, और एक नए गाने की फरमाइश आ रही है, और ये जो नया गाना है आपकी नज़र करते हैं हम, और ये बड़ा मज़ेदार गाना है। ये हमने बजाया भी था पहले भी और आप लोगों को बड़ा मोटिवेट किया था इस गाने ने, और फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। ये बड़ा मोटिवेशन बूस्टर गाना कहा जाता है जिंदा, और इसकी फरमाइश आई हुई है और ये गाना आपकी नज़र करेंगे। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आपसे पूछा था मैंने एक सवाल, अगर आप हमारे साथ आज पार्टिसिपेट और करना चाहें, वैसे हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी हैं, हम लकी विनर बस निकालने लगे हैं। आज $100 का किसको मिलता है इनाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के सौजन्य से। और आपसे पूछा था सवाल कि कौन सी वो एक आदत है आपको लगता है जिंदगी में जो आपका वक्त बर्बाद करती है। टॉक टू अस ऑन 416-593-0055, 416-593-0055। भाग मिल्खा भाग है फिल्म का नाम, और 2013 की फिल्म थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा का डायरेक्शन था, और ये हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी, बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। और इस फिल्म में जो है बहुत ही अमेजिंग रोल अदा किया था फरहान अख्तर ने, बड़ा अच्छा रोल था उनका। म्यूजिक था शंकर एहसान लॉय का, और ये जो गाना है जिंदा, ये आपकी नज़र करेंगे हम मस्ती की रेलगाड़ी पर। इसको एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, और फिर एक मेहमान हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने जा रहे हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055।

0: बिल्कुल दोस्तों, बड़ा मोटिवेशनल गाना है। आपकी नजर किया सीएमआर एफएम 101.3 पर, मस्ती की रेलगाड़ी पर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ड्यूरिंग दिस आफ्टरनून राइड। और दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स आए, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। और इतनी अच्छी अच्छी आदतें आप लोगों ने बताई, कौन सी है जो आपको लगता है कि वक्त बर्बाद करती है। अब भाई, वक्त बर्बाद नहीं, वक्त का सही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको एक जगह जाना है, एक बहुत ही मानी हस्ती हैं, उनसे मिलना है जाकर, और फिर देखना कैसे चुटकियों में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। जॉइनिंग अस नाउ इज जिनको मैंने नाम दिया है मिरेकल गुरुजी। सो आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे 9 पीढ़ियों के अनुभव के साथ, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं, क्योंकि ये रहती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपको ठीक करती हैं विद नो साइड इफेक्ट्स। और नंबर बहुत आसान सा है गुरु जी का, 437-438-3399। गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी, मैं बहुत अच्छा है, भगवान को आशीर्वाद से। आप कैसा है बहन जी?
0: बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप इतने बिजी रहते हैं और इतने सारे लोग आपसे मिलने आते रहते हैं हमेशा, तो ग्रेट टू हैव यू विद अस।
1: यस यस यस जी, क्या क्या जी? जी मेरा पास लोग आता है, आप बताया था वो दुख से कष्ट से आता है, एक वन वीक 10 दिन में उसको हैप्पी हो जाता है।
0: राइट।
1: ये सारा ऊपर वाला को आशीर्वाद है, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या है, बीमार आता है हमारा कर्मा से।
0: दैट्स राइट।
1: यस, हमारा कर्मा से बीमार आ जाता है। बीमार को लिए क्या होता है, कौन सा बीमार कब कब आता है हमको नहीं मालूम पड़ता है। उसमें क्रोनिकल या उसके क्रोनिकल भी डिसीज होता है, ये क्रोनिकल डिसीज जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो जाता है। एक अच्छा। बार आया तो उसमें आर्थराइटिस एक बहुत क्रोनिकल डिसीज है, और एक शुगर भी क्रोनिकल डिसीज है, ये जल्दी ठीक नहीं हो जाता है, वैसा रहता है शरीर को अंदर। ये पहले ये बीमार किसके लिए आ रहा है, बीमार किसके लिए आ रहा है, उसको जड़ को लिए दवा देना है। मेरा दवा, मेरा हर्बल तो सारा हिमालय से लेकर आता है, हिमालय एंड कुल मनाली काठमांडू बद्रीनाथ का बद्रीनाथ केदार वैसा वैसा जगह के जाके मैं सारा मेरा हर्बल सारा उधर आता है। इसलिए क्या होता है, हमारा दवा में हमारा हर्बल में साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, साइड बेनिफिट्स होता है, उससे हमारा शरीर में बीमार सारा सारा में सारा ठीक हो जाता है। बिल्कुल साइड इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट अच्छा हो जाता है।
0: ओके, और बात
1: बहुत
0: है।
1: लोगों को बहुत लोगों हमारा हमारा शो सुन के आ गया था, जॉइंट पेन वाला और आर्थराइटिस वाला, नी पेन वाला और लोअर बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए और वो पैरों में सूजन आता है, सुन आ जाता है, नमनेस आ जाता है, उसके लिए बहुत लोग आ गया था। ये लोग सारा को सारा भगवान आशीर्वाद से हमारा दवा लेकर ठीक हो गया था। और ये हमारा दवा सारा उम्मीद दे रहा है, नाड़ी देखता है, सारा ट्रेडिशनल है। हमारा हमारा वो 60-70 साल के पहले इंडिया में डॉक्टर MBBS डॉक्टर बहुत कम था। वो लोग तब बीमार होने के टाइम में लोग किधर जाता है, वो गुजर जाता है, वो वकीम को पास जाता है, वेद को पास जाता है, वैसा वेद मेरा फैमिली है, वैसा वेद मैं कर रहा है। वो लोग क्या करता है, नाड़ी देखता है, नाड़ी का मतलब पल्स देखता है, पल्स में क्या क्या बीमार होता है वो देख के उसको लिए क्या करना है, क्या वो वाता पित्त कफ दोष, 3 दोष होता है बॉडी में, ये 3 दोष के लिए कौन सा जड़ी बूटी से दिए तो ठीक होता है बता करके देता है, उससे 100% पक्का पक्का पक्का ठीक हो जाता है विदाउट साइड इफेक्ट से। ठीक होने होने ठीक नहीं होता है, ये बीमार फिर वापस नहीं आता है जिंदगी में।
0: क्या बात है। अच्छा, एक बार अगर ठीक हो गई फिर वापस नहीं आएगी, दैट इज वेरी गुड।
1: नहीं आता है, एक बार ठीक हो जाए तो फिर वापस आने की बात नहीं है।
0: अच्छा, कभी कभी गुरु जी लोगों को लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से जल्दी ठीक होते हैं और इससे थोड़ा ठीक होने में वक्त लगता है, तो क्या यू नो ये जो दवाइयां हैं इनको खा के इमीडिएट इफेक्ट आ सकता है विद इन फ्यू डेज?
1: हमारा दवा विद इन 1 वीक को अंदर इफेक्ट हो जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: वन वीक को अंदर उसको इफेक्ट बन जाता है, 3-4 दिन में हमको रिजल्ट मिलता है, 20%, 30%, 20%, 30%, उससे 3-4 दिन में हमको रिजल्ट 100% मिलता है। मिलने के बाद क्या होता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा से काम करता है। ये सारा स्पेशलाइज जड़ी बूटियां हम लेकर आता है हिमालय से, लेकर आके उसको प्रोसेस करके किसको किसको कौन सा प्रॉब्लम से करना है करके मैं देता हूँ।
0: बिल्कुल, अरे वाह, दैट इज वेरी गुड। तो गुरुजी, अगर आपसे मिलना हो हमारे लिसनर्स को तो कहाँ मुलाकात हो सकती है आपसे?
1: मेरे को वीकली 3 दिन कार्गो में रहता है, 4 दिन ब्रैम्पटन में रहता है जी।
0: ओके,
1: मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में स्कारब्रो में रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन में ब्रैम्पटन में रहता है।
0: वेरी गुड। तो नंबर दोस्तों नोट कर लें गुरुजी का, राइट अवे इस नंबर पे मैसेज भेजिए, आपके सभी डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएंगे। कहाँ कैसे मिल सकते हैं गुरुजी से? 437-438-3399, 437-438-3399, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। जी दोस्तों, और इसी के साथ बस आज का आखिरी गाना आपकी नजर करने जा रहे हैं, उससे पहले बता दें आज की कॉन्टेस्ट की विनर रही हैं सुमी, कंग्रेचुलेशंस, आप हैं आज की विनर, और कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से आपको दिया जा रहा है $100 का गिफ्ट। ये कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के साथ शालिनी इजाजत मांगती है, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड, और अपने ख्यालों में हमें हमेशा याद रखें। कल दोपहर 2 से 4 फिर से आपसे जुड़ेंगे मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। और जितने बिजनेस ओनर्स हमारा शो इंजॉय कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस और मैसेजिंग अस एट 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. Tune in Monday to Friday or log on to CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मेरे भाई वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन। किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि राह जीने की बताओ तो कोई बात बने, राह जीने की बताओ तो कोई बात बने, हौसला दिल का बढ़ाओ तो कोई बात बने। सिर्फ इजहार मोहब्बत से नहीं काम चले, सिर्फ इजहार मोहब्बत से नहीं काम चले, हाँ अगर साथ निभाओ तो कोई बात बने। बहनर भाइयों, जिंदगी में अगर सुहाना साथ मिल जाए तो जीने की राह आसान बन जाती है, सुहानी बन जाती है। आज जितेंद्र अपना बर्थडे मना रहे हैं, आइए लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत नगमे की ओर जो हमने लिया है फिल्म जीने की राह से, आ मेरे हम जोलिया। हाँ जी बहनर भाइयों, खूबसूरत नगमा आपके लिए, ये द वॉइस, हमने आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
4: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
8: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन पुरुषोत्तमास। मित्र भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हमारी कालगणना यानी कि कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं बदलती, बल्कि हर 3 साल में हमें आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होने का एक जादुई मौका देती है। जी हाँ, इसे ही हम अधिक मास या पुरुषोत्तमास कहते हैं। इस साल ये अनूठा और पवित्र कालखंड 17 मई से 15 जून तक रहने वाला है। आइए जानते हैं इस महीने के पीछे का अनोखा विज्ञान क्या है। बिंद्र भाइयों, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध खगोल विज्ञान है। सूर्य और चंद्रमा की चाल में हर साल 11 दिनों का अंतर आता है। अगर इस अंतर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे मौसम और त्योहारों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसी गैप को भरने के लिए प्रकृति हर 3rd साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ देती है, जिसे हम अधिकमास कहते हैं। इस तरह 12 महीनों का साल इस बार 13 महीनों का महावर्ष बन जाता है। है ना दिलचस्प बात। एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा है कि शुरुआत में इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी यानी कि भगवान नहीं था, इसलिए इसे लोग मलमास कहकर इसकी उपेक्षा करते थे। तब इस महीने ने भगवान विष्णु की शरण ली। श्री हरि ने दया भाव दिखाते हुए न केवल इसे अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम दिया, बल्कि इसके अधिपति देवता भी बन गए। यही वजह है कि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार, श्री राम कथा और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का माहौल चारे तरफ गूंजने लगता है। हां जी बिंद्र भाइयों, पुरुषोत्तम मास आध्यात्मिकता से जुड़ने का एक और महीना। ये वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: प्राइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन डॉक्टर नील जे गज्जर एसोसिएट्स आपकी मुस्कान को नया जीवन देते हैं। मिसिसागा और सदर्न ओंटारियो में उनका सेंटर आपके परिवार की हर डेंटल जरूरत को पूरा करता है, एक सुंदर मुस्कान की ओर एक प्यारा कदम डॉक्टर नील जे गज्जर एंड एसोसिएट्स की ओर बेनर भाई। और वहीं से डॉक्टर भीष्मा जी हमें एजुकेट करते हैं अबाउट अवर डेंटल हेल्थ। आइए सीधे चलते हैं उनके पास और लेते हैं ज्यादा जानकारी। डॉक्टर भीष्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं आज किस बात पर हमें एजुकेट करना चाहेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर भीष्मा जी।
2: थैंक यू सो मच जतिन जी। आज हम लास्ट वीक के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग। तो उसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कुछ फैक्टर्स है जो आपकी क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए दो तीन चीजें जानना जरूरी है। एक तो ये है कि करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक क्या है और दूसरा बायोफिल्म क्या होती है। तो करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक आपने बहुत टाइम पाया जाता है आप मूवीज में या सीरीज में, आप देखते हैं कि कोई भी एक्टर या कैरेक्टर होता है उसमें स्क्रीन पे, वो उठ के ब्रश करने लगता है तो वो सीधा पेस्ट लगा के घिसने लगता है दांत को, फ्रंट एंड बैक साइड टू साइड। ये कम्प्लीटली गलत टेक्निक है। एक्चुअल टेक्निक अप एंड डाउन मोशन है जिसको हम मॉडिफाइड बेस टेक्निक बोलते हैं। दूसरे कई सीरियलों में हम या मूवीज में ये भी देखते हैं, वो राउंड राउंड सर्कुलर मोशन यूज करते हैं, उसको हम फोन्स टेक्निक बोलते हैं। वो बच्चों के लिए बेहतर रहती है क्योंकि उनमें हैंड कोऑर्डिनेशन उतना डेवलप नहीं हुआ होता। बट हमारे लिए एडल्ट्स के लिए मॉडिफाइड बेस टेक्निक, बेस यानी BASS टेक्निक होती है। जरूर आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। अगर आपने इनकरेक्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज की है तो क्या होगा, गम्स की अटैचमेंट कम हो जाएगी, यानी गम्स उतरना चालू होंगे और मसूड़े की जहाँ से गम स्टार्ट हो रही यानी अराउंड द नेक ऑफ द टूथ डेंट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां का एरिया बहुत पतला होता है, जो ऊपरी परत दांतों की होती है वो बहुत पतली होती है और वो घिस जाती है और सेकेंड लेयर सॉफ्ट होता है तो ब्रशिंग की वजह से वो डेंट बनना चालू होता है और फिर वो जगह सेंसिटिव हो जाती है। तो ये होता है रिसेशन। दूसरा होता है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या चीज़ है, आपके दांत के आसपास एक परत है वो जो बरकरार रहती है थ्रू आउट द डे, उसके अंदर सलाइवा है, बैक्टीरिया है, फूड पार्टिकल्स है, प्लाक वगैरह वगैरह। तो ये परत आपके गम्स को इन्फ्लेमेशन करती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स यानी गम्स के इन्फ्लेमेशन का जो क्लासिफिकेशन है उसको जिंजिवाइटिस इंड्यूस्ड बाय बायोफिल्म हम बोलते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स बिकॉज ऑफ बायोफिल्म। तो ये बायोफिल्म को हम ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रश करके। एक बार आपने ब्रश कर लिया बायोफिल्म ब्रेक होगी, बात खत्म। अगर कोई कोने में बायोफिल्म बच जाती है तो वो वहां पे बैठी बैठी डेवलप होती है, वहां पे प्लाक थोड़ा सा थिकन होता है और फिर वो प्लाक कैलकुलस में या टार्टर में बदल जाता है। टार्टर में कैसे बदलता है, सलाइवा से। आपके सलाइवा में मिनरल्स होते हैं, आपके सलाइवरी डक्ट्स जो होते हैं, एक डक्ट होता है वो अपर सेकंड मोलर यानी अगर आपके पास विजडम टीथ है तो सेकंड लास्ट टूथ के पास ओपन होता है जिसको स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, और लेफ्ट और राइट मैंडिबुलर यानी नीचे की सलाइवरी ग्लैंड टंग के नीचे सेंटर में ओपन होती है, बार्थोलेंस डक्ट से। तो सलाइवा पूल वहां पे होता है अंटिल यू स्वॉलो। तो आपने काफी टाइम पाया होगा कि नीचे के दांतों के आस पास ज्यादा टार्टर जमा होता है, ये जमा होके गम्स को नीचे पुश करता है, गम्स के अंदर जाता है और वहां बैठा बैठा इन्फ्लेमेशन की वजह से बोन लेवल उसके बाद रिड्यूस होना चालू होता है। बोन लेवल ओरिजिनली गम्स जहाँ से चालू होते हैं यानी नेक ऑफ द टूथ से 2-3 मिलीमीटर तक होता है, तो वो फिर 4 बन जाता है 5 बन जाता है और जब हम ये टार्टर निकालते हैं तो पॉकेट बनता है, उसको हम डीप पॉकेट्स बोलते हैं, जो 3 मिलीमीटर से ज्यादा के पॉकेट को डीप पॉकेट बोलते हैं। और आपके रूट की लेंथ कम होती है 8 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इन मोस्ट केसेस, कभी कभार लॉन्गर भी होती है, बट सपोज आपको 6 मिलीमीटर के पॉकेट हैं तो यू आर ऑलमोस्ट लूजिंग 40% ऑफ योर बोन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिंजिवाइटिस को पेरियोडोंटाइटिस में बदल देते हैं, पेरियोडोंटाइटिस यानी गम डिजीज। अगर आपको ये सारे इश्यूज हैं तो तो हम फ्रीक्वेंसी थोड़ी इनिशियली ज्यादा रखते हैं, अबाउट फॉर फर्स्ट ईयर वी कॉल यू एवरी 3 months, यानी साल में 4 बार, और फिर हम चेक करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन जब हम गम्स को टच करते हैं तो ब्लीड होते हैं या नहीं. लेस देन 10% ऑफ साइट पे होते हैं तो फिर हम उसको तुरंत रिड्यूस करते हैं. अगर उतना सीवियर नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं कि यू कैन कम एवरी 4 months, यानी 3 times a year, या फिर एवरी 6 months, यानी 2x a year. और काफ़ी रेयर केसेस में, बट ये काफ़ी हमने देखा है कि इफ़ यू आर वेरी गुड विथ योर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग यू कैन कम इवन 1x a year. बाकी के फैक्टर्स भी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही. और हमारा एड्रेस है 735 Twain Avenue, यूनिट नंबर 16, मेविस और ट्वेन के इंटरसेक्शन पे. और हमारा फ़ोन नंबर है 905-564-2021.
1: डॉक्टर भीष्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहनों भाइयों, जरूर पहुंचिएगा 735 Twain Avenue, यूनिट नंबर 16, नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड इन मिसिसागा. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 905-564-2021, 564-2021. वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं drgajjar.com. ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन. आज स्टूडियो में हमारे साथ पयास्विनी जी. डॉक्टर नील गज्जर, एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स. एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है. अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट. CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर, एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021, 905-564-2021. डॉक्टर नील गज्जर, एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट, आपके फैमिली डेंटिस्ट.
3: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम.
7: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है. इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
1: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ही रेडियो वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन। संगीत की धुन एक, गाने की धुन एक, लेकिन फिल्में अलग अलग, गाने अलग अलग। क्या ऐसा हो सकता है? बॉलीवुड में सब कुछ हो सकता है। मवाली नाम की एक फिल्म आई थी, एक गाना बहुत फेमस हुआ था जिसके बोल थे, उई अम्मा उई अम्मा, मुश्किल ये क्या हो गई, तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। यह गाना जयाप्रदा पर फिल्म आ गया था। गाने की शुरुआत में उनकी साड़ी उड़ जाती है और बंदर भाइयों पूरा गाना जयाप्रदा पर फिल्म आया जाता है। इस गाने को किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया था। गाना तो बहुत पॉपुलर हुआ लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर नाराज हो गए। जयाप्रदा ने ऐसे सीन और गाने नहीं करने का वादा किया। हालांकि उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, आगे चलकर 1986 में दोनों ने शादी कर ली। तो पहला गाना आया उई अम्मा, फिल्म का नाम मवाली। मवाली के बाद एक और फिल्म आई, इस फिल्म में इसी धुन पर गाना बना। हां जी बिंद्र भाइयों, उई अम्मा के बाद जो फिल्म पर इसी धुन पर गाना बना वो फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ। 3 साल डिले थी ये फिल्म। श्री निर्मला देवी कंबाइंस के बैनर तले ये फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म में रूपाली गांगुली नजर आई थी। उन पर एक गाना फिल्माया गया, बस वही धुन। गाने के बोल थे, उल्लाला उल्लाला, तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना। बैनर भाइयों, ये फिल्म याद आ गई फिल्म। हाँ जी सही की सुना आपने, द डर्टी पिक्चर फिल्म का गाना। लेकिन रूपाली गांगुली पर जो फिल्म आया गया वो गाना भी इसी धुन पर फिल्म आया गया था। बेंद्र भाइयों, गाने के बोल थे, फुर्सत मिले तो मिलने तू आना मेरी दुकान पर। यानी कि 3 गाने, उई अम्मा उलाला उलाला और फुर्सत मिले तो आना मेरी दुकान पर मिलने। बेंद्र भाइयों, तीनों गाने एक ही धुन पर बनाए गए। गाने तीनों सुपरहिट रहे। ये हिट वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50-7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरु लक्ष्मी.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: bye.
1: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
2: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
1: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
3: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
5: हाँ जी बिंदर भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। बिंदर भाइयों, पैसों के लिए आपने सुना होगा कि बढ़ती उम्र के साथ पता चला दुनिया पैसे की गुलाम है, या फिर जिस दिन आपके पैसे खत्म, आपके रिश्तेदारों की संख्या भी खत्म, या फिर जिंदगी में कभी हार मत मानो क्योंकि वक्त सबका आता है, पैसा भी सबके पास आता है, या आपने ये भी सुना होगा पैसे के पास जुबान तो नहीं है पर वो बोलता बहुत कुछ है, और पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है, और इसी वजह से शायद इंसान पैसे के पीछे भागता है, धन धन धन। लेकिन आइए सुनते हैं जाने माने मुनि श्री तरुण सागर जी, जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही थी। आइए आपको सुनाता हूँ तरुण सागर जी की आवाज।
6: समय दिया ना पत्नी को, समय दिया बस एक ही आप दिमाग में भूत सवार, धन धन धन धन धन, इधर घंटी बज रही है, उधर घंटी बज रही है, इधर टेलीफोन आ रहा है, उधर का टेलीफोन आ रहा है, बस एक ही बात, धन धन धन धन, जिंदगी भर करता रहा धन धन धन। और एक दिन मर गया, और मरा उसके बेटे ने शोक पत्रिका लिखी, और शोक पत्रिका भी लिखा, परम दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया, निधन निधन निधन। और जिंदगी भर करता रहा धन धन धन धन, आखिरी में रिजल्ट आया, कितना बड़ा ताजुब है ठंडे दिमाग से सोचना। तरुण सागर की बात केवल हंसने के लिए नहीं होती है, सीधी आदमी के दिल पर चोट करता हूं। ठंडे दिमाग से सोचना,

0: से सोचना, जो आदमी जिंदगी भर करता रहा धन धन धन धन धन, आखिरी में रिजल्ट आया, आखिरी में रिजल्ट आया निधन। ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। सुबह सुबह आंख बंद करो और तरुण सागर के एक ही वक्तव्य को सोचना कि जिंदगी भर करता रहा धन धन धन, आखिरी में रिजल्ट आया। और लिखा किसने, लिखा किसने? बेटे ने। दुश्मन भी लिखता तो कहता अरे मजाक कर रहा है। शोक पत्र का अगर दुश्मन भी लिखता तो कहते हाँ मेरे को मालूम है तू मजाक कर रहा है। पर लिखा कितने? परम दुख के साथ सूचित किया जाता कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। ये किसने लिखा बोलो?
1: हाँ जी मित्र भाइयों, धन धन धन, जिंदगी पर करते हैं हम धन धन धन और रिजल्ट आता है निधन निधन निधन। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नहीं नहीं अनारी नहीं है, तरुण सागर जी, मुनि श्री तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन जरूर सुनना। और अगर ये धन धन और निधन की बात ना समझे तो ये क्लिप फिर से सुन लीजिएगा। हम हैं आपके दोस्त जतीन, ये है आपका अपना रेडियो वॉइस। और कई श्रोता कहते हैं, कॉल करके कहते हैं कि आपसे बात करनी है, कैसे कर सकते हैं? लीजिए हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं, आप जरूर आपका फीडबैक भेजिएगा। jatin@weeklyvoice.com jatin@weeklyvoice.com। आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 & 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

0: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: हाँ जी महेंद्र भाई, यू द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग की उम्र अब 50 से कम करके 45 साल की गई है। विशेषज्ञों और सर्वाइवर्स ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। समय पर जांच से बच सकती है हजारों जान। जानिए कैसे उठाए इसका लाभ। ऑन्टारियो सरकार ने कैंसर की जल्द पहचान के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब 45 इयर्स की आयु से ही नागरिक कोलोरेक्टल कैंसर के लिए मुफ्त जांच करवा सकेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर ऑन्टारियो में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ऑन्टारियो हेल्थ ने स्क्रीनिंग की न्यूनतम उम्र 50 से घटाकर 45 साल कर दी है। कैंसर सर्वाइवर्स और विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे गेम चेंजर बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस कैंसर का पता पहली स्टेज में चल जाए तो इलाज की सफलता की दर 90% से अधिक होती है। अब 45 इयर्स के लोग अपने डॉक्टर से FIT यानी कि फिकल इम्यो केमिकल टेस्ट आराम से करवा सकते हैं, उसकी किट मांग सकते हैं, और घर पर ही आसानी से किया जाने वाला ये टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है। यह फैसला न केवल स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम करेगा बल्कि हजारों परिवार को इस जानलेवा बीमारी के दर्द से बचाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि उम्र कम करने का मतलब है कि अब हम उन मामलों को पकड़ पाएंगे जो पहले स्क्रीनिंग के दायरे से बाहर थे। यदि आपके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है या आपको पाचन संबंधी कोई समस्या महसूस होती है तो 45 इयर्स की उम्र का इंतजार न करें, तुरंत ही जांच करवा ले। हाँ जी बिंदर भाइयों, सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। ये हेड वॉइस, हम है आप ही के दोस्त जतीन।

0: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन रॉजर्स की बेहतरीन डील से आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा। वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर ही डील्स। जरूर डायल कीजिएगा 647-864-8000 647-864-8000। सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा। ओवर टू वकार खान जी।
1: जी थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ है। इसमें पैकेज है जिसमें टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9 30 मिनट्स हर महीने, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें। बहुत ही स्पेशल ऑफर है, अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडम अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत ही चीप रेट पे दिला देंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है, और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज कॉल कीजिए, वह बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल करें। नंबर है मेरा 647-864-8000 मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 647-864-8000
0: वंडरफुल। वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर भाइयों जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से, 647-864-8000 864-8000 यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
6: हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम यहाँ के दोस्त जतीन, बॉलीवुड अजीब दास्ता है ये। बंदर भाइयों, अजीब दास्तान में आज राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की बात। फिल्म आनंद सुपरहिट फिल्म। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन चुके थे और उनका स्टारडम अपने चरम पर था। वहीं अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म के सेट पर जहां अमिताभ बच्चन समय से पहले पहुंच जाते थे, वहीं राजेश खन्ना के देर से आने की चर्चा आम थी। कई बार ऐसा होता था कि अमिताभ बच्चन घंटों सेट पर इंतजार करते कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई शिकायत नहीं की। हालांकि कहते हैं कि अमिताभ की यही आदत राजेश खन्ना को खटकने लगी थी। राजेश खन्ना सुपरस्टार नंबर वन थे। एक किताब है एक्सलेंस द अमिताभ बच्चन वे, उसमें कहा गया है कि एक इंटरव्यू में जब अमिताभ बच्चन से राजेश खन्ना की तुलना की गई और उन्हें पूछा गया कि बच्चन साहब तो वक्त पर आ जाते हैं, राजेश खन्ना जी आप क्यों वक्त पर नहीं पहुंचते सेट पर, तब राजेश खन्ना ने, सुपरस्टार थे, उन्होंने कहा था, भाई क्लर्क समय के पाबंद होते हैं, मैं कोई क्लर्क नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मेरा मन किसी का गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेकिन बहन और भाइयों, जो समय के पाबंद नहीं होते और मर्जी के मालिक होते हैं, उनका क्या हश्न होता है, हर किसी ने राजेश खन्ना की कैरियर देखकर महसूस किया ही होगा। जंजीर के बाद बच्चन साहब सुपरस्टारडम की ओर आगे चले और राजेश खन्ना पीछे छूटते गए, शराब की आदत में लपटे गए। अवतार, सौतन, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों से उनके कमबैक का जिक्र किया गया, लेकिन तब देर हो चुकी थी। और आज समय की पाबंदी ही बच्चन साहब को महानायक बना रही है। ये थी बॉलीवुड की अजीब दास्तान। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
7: बचपन में मुझे मौका मिला उस महान कलाकार को लाइव सामने सुनने का, जिनका नाम है मन्ना डे। मन्ना दा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मन्ना दा का एक दूसरा पहलू मेरे सामने आया, जो कि एक बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही लाजवाब फनकार। एक गज़ल गायक होने के नाते मन्ना दा के गानों में कहीं जज्बात ढूंढता रहा।
8: जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो

एंड हियर वी मीट अगेन ऑन द डे जो आया है आज मंडे की फील वाला रूप धर के. कहने को ट्यूजडे है देखो, पर लॉन्ग वीकेंड वाला ये ट्यूजडे इज एक्चुअली मोर कड़वा बिटर देन यूजुअल रूटीन मंडेज, है ना. अब देखो ना, इंसानी फितरत भी यूं ही होती है कि जब हमें पहले एक ही छुट्टी मिलती थी संडे की, सैटरडे अक्सर हाफ डे होता था, है ना, तब लगता था पूरा सैटरडे क्यों नहीं मिल रहा. अब दो मिलती हैं यहाँ पे सैटरडे संडे दोनों, तो लगता है लॉन्ग वीकेंड का इंतजार, जहाँ तीन मिल जाएंगी. और जब तीन मिल जाती हैं तो वो जो फोर्थ डे आता है वर्किंग डे होता है, वो ऐसा लगता है काम पर जाने को हम हैं ही नहीं तैयार. पर जिंदगी भी पूरी से आनी है, है ना. ये ही तो सिखाती है कि कुछ चीज़ें मन हो या ना हो भाई करनी ही पड़ती हैं. जब सवाल पापी पेट और बिल्स का हो तो इस काम धाम की सुननी भी पड़ती है. सो ऑन दिस अक्लमंदी है इसी में कि जितना मिले खुश रहो इसी में वाली नोट, दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि जो ना मिले पर चाहिए ही चाहिए लाइफ में, तो या तो मन में ठान लो या फिर मन को ही मना लो, उसे बांध लो.

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी.
1: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में.
2: बिल्कुल. लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%. मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर. कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600.
1: My property, my choice. My Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract. अच्छा, इस बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल्टर के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत. बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यू भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा. विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें. घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
7: ਮਾਜਾ ਮਾਲ ਵਧੋ ਆਪਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
8: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
9: ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਠਾਕਾ ਚੁੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਗੋ ਮਿਲਨੀ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਸੇ ਡੋਲੀ ਤੱਕ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਜਾਵਟ ਕਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਮੈਲੇਨੀ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 9 ਐਂਡ 10 ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 905-799-9400
7: ਮਾਜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
0: On your feet with Peppy Nukkar Beats.

0: through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Fresh Breeze, new release. On CMR at 5 p.m. इट्स तफरी टाइम पर ये टाइम है एक फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज का. आप सुन रहे हैं सीएमआर 101.3 एफएम पर योर प्राइम इवनिंग ड्राइव टाइम शो विद स्वाति एंड हैरी. एंड इस वक्त जो गाना हमने आपके लिए चुना है जिससे आपको नए नए गाने से इंट्रोड्यूस किया जाए वो मैंने जैसे ही सुना ना इट रियली गॉट माय अटेंशन इन वन सिंगल प्ले. तो सुनाना तो बनता है ना. ये जून 12 को रिलीज होने वाली 1947 के पार्टीशन पर बेस्ड एक लव ड्रामा फिल्म है विच हाईलाइट्स एन इमोशन जो मुझे लगता है हर माइग्रेंट दिल खुद से अपने पीछे छूटते अपनों से या यू नो अपनी प्यारी चीज़ों से घर से एक वादा करता है क्या कि मैं वापस आऊँगा. है ना, होता है ना. वो बात और है कि सारे वादे पूरे कहाँ हो पाते हैं. और 1947 के विभाजन के दौरान जो बिछड़े उनके क्या तो वादे और क्या इरादे. नहीं, फिल्म एक्सप्लोर्स लव, लॉन्गिंग, माइग्रेशन, यादें, वादे एंड अ लॉट मोर. नसीर साहब है फिल्म में अलॉन्ग विद फ्रेश पेयरिंग ऑफ शर्वरी वाघ एंड बिदांग रैना और साथ में दलजीत दोसांझ भी है इन अ लीड रोल. इम्तियाज अली की फिल्म है और म्यूजिक है ए आर रहमान साहब का. तो भी गाने पे आते हैं म्यूजिक पर जिसको सुनते ही मैं कह रही थी और देखते ही के क्लिक कर गया एक बार में. इट्स कॉल्ड मस्कारा. म्यूजिक वाइज एक बहुत अच्छा ब्लेंड आपको सुनने को मिलेगा फोक का भी और 1970 के ज़माने का म्यूजिक कह लें विद अ मॉडर्न टच. बेस्ट पार्ट इस गाने की ये है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा व्हेन यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग द कंट्रास्ट. जब फीमेल वोकल्स और मेल वोकल्स आते हैं एक्सचेंज होते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है ना फीमेल वोकल्स बड़े मस्ती खोर शरारती और शौकियों से भरे हैं और मेल वोकल्स बड़े सिंसियर सॉफ्ट और प्यार से भरे हैं. दोनों प्यार से भरे हैं वैसे तो. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. प्लस वेदांग रैना ने भी अच्छा गाया है. नीलांजना घोष ने भी अच्छा गाया. एकदम जस्टिस किया है विद द लिरिक्स विच आर बाय इरशाद कामिल. पेपी है, रोमांटिक है, सोलफुल भी और शरारतों से भी भरा है. मतलब एक हिचक रहा है कहने में और दूसरा खिंचाई भी कर रहा है प्यार में. इट्स कॉल्ड मस्कारा विद अ ब्लेंड ऑफ मोर पंजाबी एंड लेस हिंदी लिरिक्स. आर फ्रेश प्लीज न्यू रिलीज लाइन अप नेक्स्ट.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: एंड अ क्विक रिमाइंडर, आपसे कुछ ही देर में बस फौरन से ही समझ ले, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सौरभ सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल फॉर योर क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट या फिर कोई और पॉलिसी सरकार की जो समझ में नहीं आ रही है और आपको लगता है आपका भविष्य और आपके इन्वेस्टमेंट्स उस पर रिलाय कर सकते हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उस बारे में आप बात कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहेगा आपके सवालों के लिए 4165930055। और उसके बाद 6:15 बजे के करीब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबरॉय जी, नंबर्स की बात करने। नंबर्स डू वंडर्स इज द सेगमेंट जहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हर बार बहुत लोगों का, आप लोग का सपोर्ट रहता है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट जो है हमारे अनुज जी बहुत खुश भी होते हैं उन्हें आंसर करते करते। तो स्टूडियो का नंबर वही रहेगा तब भी उनके सेगमेंट के दौरान 4165930055। वैसे तो आज नंबर 6 के बारे में वो बात करेंगे, लेकिन आप अपने नंबर के बारे में उनसे सवाल और अपनी जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। अगर नंबर्स कैन डू वंडर्स एज पर हिम तो डेफिनेटली आपको आपका कुछ तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो सेगमेंट का फायदा उठाएं, ऑन एयर अपने क्वेश्चन पूछे, है ना। स्टूडियो का नंबर चाहे सबरवाल जी से पूछना हो चाहे ओबरॉय जी से, वही रहेगा 4165930055।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 FM शो है फिल्मी नुक्कड़. मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस विनी. और हर ट्यूसडे की तरह इस ट्यूसडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टीम सबरवाल से एक एक्सपर्ट सौरभ सबरवाल जी. आप सब उन्हें जानते हैं, अच्छे से जानते हैं. इनफैक्ट जो लोग ये सेगमेंट रेगुलर सुनते हैं वो ध्यान रखते हैं कि ट्यूसडे को तो ज़रूर ट्यून इन करना है. इस वक्त इस सेगमेंट में खास बात ये रहती है कि बहुत सारे आपके सवाल जो आपके जहन में चल रहे होते हैं पर आप सोचते हैं कब पूछेंगे, किससे पूछेंगे, और वो रह जाते हैं बिना आंसर मिले. वो उन सवालों के आपको आंसर्स मिलते हैं. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ से परे हो जाती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं. अब इससे एक फ़ायदा हमें ज़रूर होता है, हम वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और डिसीजन लेते वक्त एक सही सॉलिड डिसीजन हम ले पाते हैं. इसलिए ये सेगमेंट गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है. उनका नंबर सेगमेंट के बाद कॉल करने के लिए 6478648844. आप सेगमेंट के दौरान उनसे बात करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर रहेगा 416-593

0: 0055. Saurabh ji, welcome.
1: जी स्वादी जी, थैंक यू वेरी मच. और आई थिंक सेफ टू से कि समर इज फाइनली हियर.
0: मौसम अभी दो दिन बाद के लिए कह रहा है कि अभी बताता हूँ.
1: हाँ, तो अभी अभी के लिए जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लेते हैं. बट एज ऑलवेज एवरी ट्यूजडे इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू. बहुत अच्छी बातें होती है हमारी, काफी अच्छी डिस्कशन होती है. तो आज भी मैं शामिल.
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. आज का एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, और मुझे लगता है बहुत लोगों के जहन में ये होता भी है, कि कई बार ये देखा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट्स इतना फ्लक्चुएट करते हैं, कम होते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, और घर जब देखने जाते हैं ख़रीदना होता है तो भी हमें लगता है लो प्राइस पर मिल जाए, मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर मिल जाए, है ना, हमारा जो बजट है उसमें भी कम पे मिल जाए तो और भी अच्छा है. अब ऐसे में कई बार अगर हमें चॉइस लेनी पड़े लो इंटरेस्ट या लो प्राइस हाउस, तो एज पर योर एक्सपर्टीज हमें क्या चुनना चाहिए?
1: जी देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि राइट ऑफ द बैक कनाडा जैसी जगह में यू नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. तो बट अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं तो देखिए, इसी सी बात है. एवरीबडी यू नो जैसे कि सब बोलते हैं यार हाउसिंग मोर अफोर्डेबल होनी चाहिए. जैसे प्राइसेस अभी पीछे बढ़े थे, इतने टाउन हाउसेस के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे. अफोर्डेबिलिटी इज डेफिनेटली अ बिग इशू. तो एवरीबॉडी वांट्स एक किस्म से कि यार अफोर्डेबिलिटी हो, घर खरीदना चाहते हैं मगर अफोर्डेबल नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या है कि अ लॉट ऑफ द सेम पीपल, जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, बोलते हैं यार अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आनी चाहिए. तो वो ये भी चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए और बहुत जल्दी.
0: दोनों हाथ में लड्डू चाहिए.
1: बहुत बिल्कुल,
0: मुंह में भी चाहिए.
1: तो हिस्टोरिकली अगर आप देखो, जब रेट्स नीचे आते हैं तो होम प्राइसेस जो होते हैं, घर के प्राइसेस जो होते हैं, रियल एस्टेट इन जनरल जो होता है, उनके प्राइसेस यूजली दे गो बैक अप. सो जैसे आपने बोला कि लो इंटरेस्ट रेट, अगर चॉइस दें लो इंटरेस्ट रेट की या लो होम प्राइसेस की, तो दोनों का मिलना मुश्किल है. एंड थोड़ा सा इसको हम डाइसेक्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज यू नो व्हाट डू वी बेसिकली प्रेफर, क्या होना चाहिए. तो अगर आप एक सेकंड के लिए अगर आप सोचो, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स कोविड के टाइम पे तो बहुत सस्ते थे. You know, they were very low during COVID time. अभी जाके recently interest rates बढ़े हैं. तो higher interest rates generally they slow down housing market. ये हमने देखा हुआ है over the years, and that is usually has been the trend. तो prices soft हो जाते हैं, buyers थोड़ा सा आज की date में, जैसे you know अभी भले ही इंटरेस्ट रेट इतना, क्योंकि देर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल सिनेरियो एज वेल, बट भले ही अगर इंटरेस्ट रेट अभी इतने हाई नहीं है, नीचे आ रहे हैं, कुछ हद तक आ गए हैं, तो यू नो स्टेप बायर्स भी थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं, बोलते हैं यार थोड़ा सा वेट कर लेते, देखते हैं आगे क्या होता है. प्राइसेस नीचे जाते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स जो हैं दे बिकम यू नो And if the interest rates are high, they become brutal. They become very high, जो हमने भी recently experience किया है. और बहुत लोग अभी experience कर रहे हैं जिन्होंने अपने COVID time पे mortgage ली थी या renew कराई थी. They are you know they are going through this right now. So Canadians एक किस्म से you know वो फंसे हुए हैं middle ground में. Homes are still expensive, borrowing money is still expensive, ek kisam se, and nobody feels like they're winning. Koi bhi nahi jeeta, it's not a win-win situation whatsoever. So, ek agar aap example lo, ki agar aap saala ka agar aap condo lete hain, for example, with a 3% interest rate market chaliye, ye ek option A hai. Aur option B ye hai ki aap same condo agar aap 550 ka lete ho, and mortgage rate 6% hai. So what basically you know helps affordability more, cheaper borrowing or cheaper prices? So that is where this debate becomes very interesting. So pehli side hum lete hain, cut rates kam hote hain, let's say

0: at Wayne's Auto Group. आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. ऑलराइट, इस सेगमेंट में आपकी बात हम करवाते हैं सौरभ जी से फ्रॉम टीम सबरवाल. उनका नंबर रहता है 6478648844. स्टूडियो का नंबर 4165930055 फॉर योर क्वेश्चंस एट दिस टाइम ड्यूरिंग द सेगमेंट. आज हम बात कर रहे थे अभी तक कि लो इंटरेस्ट रेट्स या लो प्राइस का घर, इनमें से एक चूज़ करना पड़े, एक ही चूज़ कर सकते हैं, दोनों नहीं मिल पाए अगर, तो हमें किस तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए वाइल मेकिंग अ डिसीजन. तो सौरभ जी उस बारे में हमें बता रहे हैं कि क्या होता है, क्या साइकोलॉजी वर्क करती है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और कैसे क्या चीज़ हम किस तरफ टिल्ट होना हमारे फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए. सौरभ जी वेलकम बैक.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. तो लाइक यू सेड, यू नो, टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस की वुड यू रादर बाय अ चीपर हाउस विद अ हायर मॉर्गेज या पसंद करेंगे एक महंगा घर लेके लोअर मॉर्गेज रेट.
1: जी,
2: तो यू नो दैट इज द आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन व्हाट दे वांट. मगर
1: जी,
2: ये एंगल भी देखना चाहिए कि अगर रेट्स नेक्स्ट ईयर ड्रॉप हो जाते हैं ड्रास्टिकली
1: जी
2: और होम प्राइसेस विल जंप अगेन बाय 10% लेट्स से हाइपोथेटिकली, क्योंकि जो होगा, क्योंकि अगर डिमांड होगी

0: तो फिर जो पेंट अप डिमांड जिसको हम बोलते जा रहे हैं बार बार, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है अगले साल अगर, और प्राइसेस जंप हो जाते हैं एटलीस्ट बाय 10%, तो अफोर्डेबिलिटी डिड इट एक्चुअली इम्प्रूव? तो ये सोचने वाली बात हो जाती है. और यंग कैनेडियन जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनके लिए क्या सूट करता है? क्योंकि अगर घर महंगा होगा लोअर इंटरेस्ट के साथ, या यू नो व्हाट वुड दे प्रेफर? सो दैट इज अनदर थिंग वी नीड टू आस्क. तो क्या है कि कनाडा में यू नो इट मे नॉट एक्चुअली वांट चीप हाउसिंग, मगर व्हाट वी रियली वांट, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन,
1: राइट,
0: इज कि मतलब टू अ सर्टेन डिग्री वी वांट एक्सपेंसिव हाउसेस बट चीपर मंथली पेमेंट.
1: एक एक चीज सबको चाहिए होती है, जब मैं मकान बेचूं तो मेरा महंगा बिके, जब मैं खरीदूं तो सस्ता बिके.
0: क्योंकि देखिए वी आर इन दैट क्रॉसरोड्स वेयर प्राइसेस आर ऑलरेडी यू नो दे वेंट अप क्वाइट अ बिट, दे हैव कम डाउन लिटिल बिट, मगर एनी मोर देन पीपल विल स्टार्ट लूजिंग देयर इक्विटीज एंड यू नो
1: या वो बहुत डिजास्टर हो जाएगा.
0: बिल्कुल
1: जी जी.
0: तो maybe the real question isn't ki when will rates come down, magar I think the main question should be ki has Canada become too dependent on rising home prices, jo economy ko drive karta hai.
1: Right.
0: So kyunki abhi kya ho raha hai, homeowners want protection, and rightfully so. Buyers affordability chahte hain, investors chahte hain lower rates, obviously.
1: Ji.
0: You know, because they made an investment. Policy makers are trying to balance everything out. They're trying to make everybody happy. Wo ek perfect balance dhoondne ki koshish kar rahe hain.
1: मेरे ख्याल से वो सही भी है एट द एंड ऑफ द डे कि सबको थोड़ा थोड़ा टॉय मिल जाए.
0: तो दैट इज वेयर वी स्टैंड. तो इसलिए यू नो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एंड एवरीबॉडी इज इन अ डिफरेंट सिचुएशन. फर्स्ट टाइम होमर होम बायर्स माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन समबडी हु हैज मल्टीपल प्रॉपर्टीज व्हाट दे प्रेफर. सो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट.
1: राइट. तो मैं यहाँ
0: मार्केट में अभी जैसे हो रहा है यू नो वी आर वेटिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन. देयर आर स्टिल पीपल हु आर वेटिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन. सी यू नो व्हेन इज द राइट टाइम टू गेट इन. राइट टाइम इज टू गेट इन व्हेन यू आर एबल टू.
1: यस, दैट्स आई थिंक दैट्स द क्रक्स कि जब आप रियल स्टेट, जैसे कि आप हमेशा से कहते हैं सौरभ जी, अगर जो कोई फॉलो करें हमारे सारे सेगमेंट्स, कि व्हेन एवर यू आर रेडी वो बेस्ट टाइम है. और आप रेडी हैं या नहीं इसको पता करने के लिए, ठीक से इस पर क्लैरिटी लाने के लिए, आपको एक अच्छे रियल्टर, एक्सपीरियंस रियल्टर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको प्रोज एंड कॉन्स आपकी सिचुएशन समझ के पूरी बता सकते हैं, फैला के बता सकते हैं, और फिर आप डिसीजन उस समय ले पाते हैं. बट वेन एवर यू आर रेडी दैट इज़ द राइट टाइम टू गेट इन टू दिस, वरना तो मार्केट ऊपर नीचे आगे पीछे ये तो होता ही रहेगा.
0: It's kind of like very similar to getting married. To me, bahut saal pehle, you know, my father was like, yaar, and he gave a very good example to somebody who was confused.
1: कि शादी करें नहीं करें अभी, हाँ रुक जाएं और या नहीं.
0: करो ना करो, पता चला 40, 50, 60 years ही हो गए. And you know, nobody's you're off the market. Nobody's gonna be interested in you anyways.
1: हाँ, आपके choices कम हो जाते हैं.
0: You either jump into it. Or you just make a decision.
1: Basically, whenever you are ready, वो best time होता है. और जितनी जल्दी या timely, जल्दी is the wrong word, जितनी timely आप ready होते हैं, आप उतनी timely अपनी चीज़ों को streamline कर पाते हैं life में. तो ये तो time तो बहुत important होता ही है. तो well, मैं यहाँ पे फिर से ये याद दिलाना चाहूँगी कि it's always a good idea कि अगर आप सोच भी रहे हैं, कुछ confusions हैं, तो always sit and talk with an expert, a realtor. हम जब बात करते हैं तो सौरभ जी तो नाम सबसे ऊपर आता ही है. आप टीम से बरवाल से सौरभ जी को एक बार कॉल करके बैठ के अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस ज़रूर करें, एंड फिर डिसीजन लें आपको करना क्या है. 6478648844 उनका नंबर है. यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabharwal.com. सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए. अगले हफ्ते फिर एक नए सवाल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे.
0: जी बिल्कुल. थैंक यू.
2: तूने अभी देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं.

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
2: Business में growth रुक गई है? हो सकता है आपका business name या वास्तु सही support ना कर रहा हो? पन्ना शाह के साथ पाइए business name correction, shop and office वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
4: Doing business your way.
3: Member of Wayne's Auto Group.
5: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट अमितखुराना.com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए आप वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये। एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca. Retro in Metro, Nukkad Classics.
3: अच्छा, don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है।
1: That was from Sir Farosh, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम बहुत छोटा सा रोल था, वो खबरी वाला जहाँ वो गाते घूमते थे लाख होता रे टडरंग टडरंग आसमां में टडरंग टडरंग ऐसे वो करते थे। काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो कैरेक्टर उनका। और मैं सोच रही थी कि ऐसा ही होता है जो सॉलिड आर्टिस्ट होते हैं ना, कि रोल उनका छोटा हो या बड़ा वो नोटिस हो ही जाते हैं, तारीफें भी बटोर ले जाते हैं और हमेशा याद रहते हैं। खासकर नवाजुद्दीन के केस में मैं देखती हूँ उनके डायलॉग्स अभी तक बहुत सारी फिल्मों के लोगों को रटे पड़े हैं। जैसे कि वो है ना, वो किक फिल्म का मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, मुझे वो टक बोलने वाला स्टाइल उनका बहुत अच्छा लगता है। एंड देट वो सीक्रेट गेम्स के तो खैर अनगिनत हैं, खासकर वो जो कभी कभी तो लगता है पुनीची भगवान है, ये डायलॉग तो अक्सर मैंने लोगों को यूज़ करते देखा है फॉर दोज पीपल जिनकी यू नो बहुत पम्प्ड अप ईगो होती है उनके लिए। लेटली मैंने उनकी नेटफ्लिक्स पर कौस्तव देखी थी, बायोपिक है, अच्छी लगी मुझे, आप देखिएगा ज़रूर, ही फिट्स द बिल एक्चुअली, वो रोल में बिल्कुल सूटेबल लगे हैं। रोज़ के लिए तो वैसे ये बात भी है कि कॉमेडी हो चाहे लाइक यू नो हाउसफुल 4 वाली या नेक्स्ट शो टाइप वाला रोल हो, जैसे मोती चूर चकनाचूर में था उनका, फोटोग्राफ में था, या वो डॉनगिरी टाइप वाला हो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे था, या बहुत डार्क जैसे रमन राघव में था, या बहुत सीरियस टाइप जैसे कि मांझी द माउंटेन मैन का था, या वेरी सपोर्टिव लाइक बजरंगी भाईजान का था, या यू नो प्रॉपर फुली फिल्मी विलेन टाइप लाइक इन किक, ही ऑलवेज यू नो फिट्स द बिल। हमेशा कैसा भी रोल दे दो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं के लिए बना था। वेल ऑन हिज बर्थडे टुडे उनको बर्थडे विश तो कर ही देते हैं, एक आध गाना भी आपको सुना देती हूँ उनकी एक फिल्म से।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
4: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street, Park Cooper,
5: doing business your way.
4: Member of Wayne's Auto Group.
6: काव्य होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
7: Follow us on Facebook, Filmi Nukkad, it's the free time.

0: ये कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 FM स्वाति और पायस विनी के साथ और ये है फिल्मी नुक्कड़. इट्स तफरी टाइम पर ये टाइम है कि आपको क्विक वेदर अपडेट दे दिया जाए. तो इस वक्त सबको पता है कि भाई गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, साथ में सीवियर स्टॉर्म रिस्क भी लगे हाथ जारी कर दिया गया है. येलो कलर की वार्निंग है. लार्ज हेल्स कह रहे हैं गिर सकते हैं, बोले तो ओले पड़ सकते हैं. अब इस वक्त बेशक आपको फील लाइक 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिख रहा हो, पर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आने वाले कुछ वक्त के अंदर अंदर टुडे इटसेल्फ आपको तेज तर्रार हवाएं चलेंगी 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सीवियर स्टॉर्म रिस्क में ओले, डैमेजिंग विंड्स, टोर्नाडो, टोरेंशियल रेन, बहुत सारी बारिश. मैंने प्यासी प्यासी धरती, पेड़ पौधे, उनकी प्यास ज़रूर बुझेगी. तो अगर आप पानी नहीं डाल पाए क्योंकि गर्मी लग रही थी तो आप ही खुद बाहर से नहीं निकले और सोच भी रहे थे कि यार मेरे पार के पौधे वगैरह बेचारों प्यासे प्यासे मर जाएंगे, तो वेल बारिश, बादलों ने उनकी सुन ली है. बारिश आज ज़रूर पड़ने वाली है. तेज तर्रार 2 to 4 millimeters पड़ेगी शुरू में एंड देन और भी, लेकिन अच्छे से पड़ेगी. इवनिंग में बारिश रहेगी, ओवरनाइट भी रहेगी, और सुबह तक आते आते जो अभी गर्मी दो दिन की आपको दिख रही है ये थोड़ी सी आपको थोड़ी सी इसमें ठंडक मिल जाएगी, कहते हैं राहत मिल जाएगी. हम भी कैसे होते हैं ना कि जब तेज़ गर्मी हो तो भी हम परेशान, तेज़ ठंड हो तो भी हम परेशान, हमें कैसे भी तसल्ली होती नहीं है. ह्यूमन नेचर उल्टा चाहिए, जो मिल रहा है उसमें हम कभी भी खुश नहीं रहते. वेल वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स क्योंकि मौसम तो भाई हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है. पर एक चीज़ फ़िलहाल मेरे कंट्रोल में है वो ये कि अगले सेगमेंट का नंबर आपको बता दूं, क्योंकि अगले सेगमेंट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबरॉय जी, तो आप नंबर्स डू वंडर्स में नंबर्स कैसे आपके साथ वंडर कर सकते हैं वो पता कर सकते हैं. आपके सवालों के लिए नंबर रहेगा स्टूडियो का 4165930055. बस फटाफट आप अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछते जाएं, वो आपको आंसर देते जाएंगे. क्विक क्वेश्चंस ऑन करियर, हेल्थ, मैरिज एंड मेनी अदर थिंग्स. कई बार हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के साथ जी रहे होते हैं, तो एक एक एक एक सवाल क्विकली आप पूछते जाएंगे, वो बताते जाएंगे रैपिड फायर की तरह. तो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट. स्टूडियो का नंबर अगैन 4165930055. He's going to join us at around 6:15. तो टाइम था ही 6:18 हो गया मुझे पता है. बस बस दो मिनट में और इस गाने के बाद उन्हें ही लेते हैं हम.

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: All right, Filmy Nukers, here on 101.3 FM, but you are with Swati and Payaswini, and हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी, जो कहते हैं, मानते हैं और समझाते भी हैं कि भाई नंबर्स कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव जो सभी की जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें आप थोड़ा सीधा करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो यकीन माने नंबर्स कैन डू वंडर्स. अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, थोड़े से चेंजेस लाते हैं, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं. कई बार हम ये देखते हैं अनुज जी कि जब नंबर्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो हम बदल नहीं सकते.
2: बिल्कुल नहीं बदल सकते, वो तो फिक्स है.
1: वो तो फिक्स है, तो नंबर्स को कैसे आप चेंज कर पाते हैं कि देख माना मैं नंबर 6 हूँ, नंबर 1 हूँ, नंबर 4 हूँ, वट एवर, और उसका एक इम्पैक्ट है मेरी जिंदगी में.
2: बिल्कुल है.
1: तो हाउ If that has make that is making not a very positive impact, और इस वजह से मेरा कुछ changes हो रहे हैं, जैसे आपने कहा था एक मोबाइल की पूरी न्यूमरोलॉजी होती है.
2: बिल्कुल होती है.
1: तो मोबाइल के नंबर तो चलो मैं फिर भी बदल सकती हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकती, या कई बार घर का नंबर नहीं बदल सकती. तो क्या हाउ एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट यू से वी कैन स्टिल डू वंडर्स विद नंबर्स?
2: वो एब्सोल्युटली मैम. सबसे पहले तो सबको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब.
1: मैं सीधे सवाल पे आ गई, सॉरी.
2: कोई बात नहीं मैम. देखिए, हमारी बॉडी तो वही रहती है, सेम वेज हमारी डेट ऑफ बर्थ वही रहती है. बट क्या हम कपड़े नहीं बदलते?
1: ओह यस.
2: सेम वेज हम छोटी छोटी रेमिडीज करके, देखिए न्यूमरोलॉजी का बेस होता है 5 एलिमेंट्स. तो हम अपने एलिमेंट्स को कुछ धारण करके, कुछ निवारण करके, छोटे छोटे उपाय करके हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं. तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. जैसे आजकल के बच्चों में मल्टीपल 2s आते हैं. तो हम लोग ब्लेस थे, हम लोग पिछली शताब्दी में पैदा हुए तो हमारे पास 1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिलती थी.
1: अच्छा.
2: 19 समथिंग डेट ऑफ बर्थ होती थी, मगर अब वो 19 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 20.
1: ओह यस,
2: राइट. तो अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है. तो 1 का सीधा सीधा जो उसका एलिमेंट होता है वो वाटर होता है. तो पानी तो पी सकते हैं ज्यादा. हाँ. इससे सिंपल तो कोई रेमेडी नहीं है.
1: वाओ, इंटरेस्टिंग. और ये तो बहुत ही आसान चीज, वैसे भी कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा है तो पिए.
2: मैम देखिए, सीधी बात ये है, जो चीज हमारे पास कम है हम उसको धारण करते हैं. जैसे पानी पिया हमने, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया. अब मल्टीपल 2s आ रहे हैं तो उसको निवारण करना पड़ेगा.
1: ओके.
2: सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत सिंपल शब्दों में आपको चीज़ें समझ में आती है.
1: अच्छा, समझ से मुझे याद आया, पहले तो आपका नंबर बता देती हूँ जो इस सेगमेंट के बाद कॉल करना चाहते हैं सर को. 6473308555 है अनुजी का नंबर, 6473308555. पर समझ से मुझे याद आया कि आप एक बहुत अच्छा सा कोर्स रन करते हैं, तो उस कोर्स के बारे में क्विकली बताएं जो
2: बिल्कुल मैम
1: और समझना चाहें इसको डिटेल में.
2: मैम ये मंथली बेसिस पे चलता है. और इसमें इस बैच से मैंने, जो अभी करंट बैच चल रहा है, इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी भी इंक्लूड की है.
1: व्हाट इज ग्राफोलॉजी?
2: ग्राफोलॉजी इज द शेप हाउ यू राइट नंबर्स.
1: ओह.
2: जैसे आप 1 को देखिए, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक सीधी, पहले ऊपर एक फ्लैग के जैसे दिखता है.
1: हाँ, हाँ,
2: ऊपर एक ऐसे एरो है, फिर स्ट्रेट लाइन आती है, फिर नीचे बेस होता है. सेम वेज अगर 2 को देखिए तो डक के जैसा है.
1: हाँ.
2: मगर अगर 2 के नीचे सपोर्ट तो है, एक सीधी लाइन है, मगर वो सिर्फ आगे से जुड़ती है. राइट. तो उसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो वो वहां पर उसके पास सपोर्ट नहीं है, जहां पर 2 का कर्व आता है. करेक्ट. तो अक्सर नंबर 2 वालों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो इस तरह से 3 देखिए, ऊपर है, नीचे देयर आर 2 सेमी सर्कल्स व्हिच इज बोथ आर बैलेंस्ड. तो नंबर 3 काफी बैलेंस्ड होता है. 5 को देखिए, नीचे एक उसके राउंड सर्कल होता है. तो इनके पैरों में पक्का से चक्र लगे होते हैं, ये रुक ही नहीं सकते एक जगह पे.
1: अच्छा.
2: तो ऐसे ही हम देखिए नंबर की शेप, और जैसे आप नंबर्स को लिखते हैं उससे भी बहुत कुछ पता चलता है. और वास्तु, आयुर्वेदा भी इंक्लूड किया है, जिससे हम नंबर्स के थ्रू अपनी हेल्थ जान सकते हैं.
1: आओ.
2: ये पूरे कंप्लीट टॉपिक्स नहीं है, वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, मगर आपको बेसिक वास्तु समझ में आ जाएगी, जिससे आपको अपनी न्यूमरोलॉजी को क्लियरिटी मिल जाएगी.
1: राइट.
2: तो ये 2 घंटे का कोर्स होता है, एंड इट रन्स नॉर्मली इन 2 बैचेस, 5 to 7 एंड 7 to 9. एंड या 30 डेज, गिव मी 30 डेज. पिछली बार मैंने कहा था ठाकुर मुझे 60 घंटे दे दो.
1: जी
2: तो ये 60 घंटों में आप काफ़ी करिश्मा कर सकते हैं.
1: फिलहाल तो मैं सब ठाकुर्स एंड नॉन ठाकुर्स जो भी सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स उनको नंबर दे देती हूँ स्टूडियो का. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टूडियो का नंबर है 4165930055. हमारी लाइंस खुली हैं इन केस आपका कोई सवाल है. नाम नहीं बताना चाहते ना बताएं, अलग से ऑफ एयर सवाल पूछना चाहते हैं ऑफ एयर भी सवाल आप पूछ सकते हैं अगर जो प्राइवेसी आपका कंसर्न है. बट स्टूडियो का नंबर 4165930055 फॉर योर क्वेश्चन. हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं. विल बी टॉकिंग मोर.

0: टर्न वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: All right, हम धीरे धीरे आपके कॉल्स लेते रहेंगे. आई नो यू वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चंस. आप प्लीज़ पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें. स्टूडियो का नंबर 416-593-0005. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कॉलर. हेलो जी.
2: हेलो.
1: हाँ जी, चाहे तो नाम बताएं वरना सीधे डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताएं.
2: हेलो, गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून सर, चाहे तो नाम बताएं.
2: माय डेट ऑफ बर्थ इज 16th ऑफ मई 1962.
1: ओके, तो 16 मई 1962.
2: यस
1: जी. और आपका सवाल क्या है सर?
2: मैंने अपने लक के बारे में और हेल्थ के बारे में पूछना है.
1: जी जी अनुज जी, लक एंड हेल्थ.
3: सर, आप तो वैसे ही एक ब्लेस्सी सोल हैं सर. बहुत, जिसको बोलिए कि थोड़े रिलीजियस माइंडेड होंगे या स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे. एजुकेशन अच्छी है, फैमिली ओरिएंटेड हैं. ओवरऑल एक अच्छी लाइफ रही होगी आपकी. जहाँ तक हो मेरे को लगता है वहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही आपने काम किया होगा.
2: जी,
3: तो ये एक अच्छी डेट है सर. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा लोगों से आपका वैर नहीं है. नॉर्मली यू आर अ प्रीटी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन एंड यस, थोड़ा सा होम एंड फैमिली के लिए थोड़े एक्स्ट्रा केयरफुल हैं और होना भी चाहिए. तो एज सच सर, ये एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है. आपकी लाइफ एक अच्छी ही गई होगी, आगे भी अच्छा ही रहेगा.
2: थैंक यू सो मच.
3: नो प्रॉब्लम.
1: नो मेजर हेल्थ और लक इश्यूज हियर. हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. जी, आप अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ और सवाल बता सकते हैं.
4: हाय.
1: हाय, योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन.
4: मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना है. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1975. उनका सब काम बनते बनते रुक जाता है, ओनली लाइक दैट.
3: मैम, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है. दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ. बट इनकी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग. इनको बोलिए दिमाग को थोड़ा खाली करें. और कभी भी लाइफ में, आज हम नंबर 7 की ही बात करने वाले थे एंड इनका नंबर ही 7 आता है, 25 से 7. मैम, इन लोगों के लिए एक जनरल सबके लिए एडवाइस है, कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करें और कभी भी किसी को पैसे उधार ना दें. ठीक है, हमेशा इनकी लाइफ में इनको धोखे ही मिलेंगे ऑन दीज टू फ्रंट्स. और इनकी प्रॉब्लम ये कि है तो बहुत सीक्रेटिव, मगर ये बहुत जल्दी किसी को भी ट्रस्ट कर लेते हैं. तो जहाँ पे ट्रस्ट करते हैं वहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ती है और मिलता है धोखा.
4: जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं. ऐसे ही होता है, ट्रस्ट बहुत करते हैं.
3: जी मैम, प्रॉब्लम ही यहीं पर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ डेट ऑफ बर्थ विच इज यू नो एटलीस्ट 100 मिलियन का एसेट होने चाहिए इनके पास.
4: ओके, बट अभी जैसे अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं पर जैसे रुक जाता है सब काम. तो आपको लगता है आगे कुछ अच्छे चांसेस हैं?
3: मैम, ये दो काम मत करिए, एक ओवर ट्रस्टिंग, ओवर थिंकिंग एंड डोंट यू नो डोंट डू एनीथिंग इन पार्टनरशिप. स्काई विल बी द लिमिट. बाकी अगर आप इनका नाम बता सके तो, या ऑफ एयर मेरे से बात कर लीजिएगा. 647 व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा.
4: एक सेकंड में आपका नंबर. एक क्वेश्चन और है सर मेरे पास.
3: मैम, अभी लाइन बढ़ रही है तो एक ही सवाल ले पाता हूँ मैं एट अ टाइम.
4: ओके, एक सेकंड में आपका. ओके, मैं आपका नंबर.
3: मैम, आप शो पे रहिए, अभी आपको मेरा नंबर कोई ना कोई बता लग ही जाएगा.
1: Just stay with us. So, just stay with us, ma'am. हम लेते हैं next caller की तरफ. Hello, जी. Hello.
5: Hello.
1: जी, आपका date of birth and your question.
5: 29th April 1987.
1: And meanwhile,
5: 29th.
1: जी, आपका सवाल बताएं.
3: Sir, before आप सवाल पूछे, relationship ठीक है?
5: हाँ जी, ठीक है.
3: बस फिर बाकी सब कह रही थे सर. यहाँ पर थोड़ी सी इशू रिलेशनशिप में दिख रही थी. आप सवाल पूछिए.
5: बस वही लक के बारे में पूछना था
3: सर.
5: लॉटरी कब लगेगी?
3: लक थोड़ी सी डाउन है, इतना वो नहीं. 4-6 साल, ये साल अच्छा है आपके लिए सर. कहीं ना कहीं थोड़ा यू नो मेडिटेशन कीजिए, दिमाग शांत रहेगा. दिमाग में बहुत हलचल है आपके, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है.
5: यू
3: नीड टू काम डाउन. सो काम डाउन के लिए बेस्ट थिंग इज टू डू मेडिटेशन. आप कोई भी एक टाइम पर एक ही जगह पे बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ यू नो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नोस्ट्रिल्स, जस्ट बिलो योर नोस्ट्रिल्स, वो जहाँ पर वो हिटलर की मूछें होती है ना, दैट एरिया. तो बस वहाँ पर आप अपना ध्यान लगाइए एंड ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट.
5: ठीक है,
3: ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और हो सके तो आई डोंट नो विच रिलीजन यू बिलीव इन, हो सके तो पानी शिवलिंग पे चढ़ाइए.
5: ओके,
3: ये दो काम करिए, आपके लिए अच्छा है.
5: थैंक यू,
3: वेलकम.
1: चले मैं यहाँ पे अनुज जी का एक बार नंबर फिर से बता देती हूँ. 6473308555 6473308555 नंबर इनका नोट कर सकते हैं आफ्टर दिस सेगमेंट अगर अलग से बात करना चाहते हैं. बट अभी इस वक्त भी आप कॉल करके क्विक क्वेश्चन अपना डेट ऑफ बर्थ बता के पूछ सकते हैं. हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो.
6: हेलो.
1: हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन आप बता सकते हैं.
6: हेलो.
1: हेलो, कैन यू हियर अस? आप हमें सुन पा, हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
6: हाँ जी, हाँ जी.
1: चलिए डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछ सकते हैं.
6: मैं अपनी डॉटर के लिए पूछ रही हूँ. उसका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 16, 2007. उसका वैसे तो वो यूनिवर्सिटी में है बट उसके काम बनते नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, बिगड़ जाता है.
3: मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं नहीं करता हूँ. आप मेरे से ऑफ एयर इनका नाम बता दिया, मैं इनका नाम ज़रूर बैलेंस कर दूंगा. बाकी लक इनकी ओवरऑल अच्छी ही है, कोई इनमें मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में बहुत अच्छा करेगी.
6: अच्छा, क्योंकि वो जैसे जॉब्स बच्चे ढूंढ रहे होते हैं तो उसको एजुकेशन के लिए जॉब चाहिए, वो नहीं मिल रही है तो वो थोड़ी डिसहार्टन हो जाती है.
3: ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहते हैं बट ओवरऑल शी विल डू वेरी वेरी वेल. बहुत सुंदर बच्चा है देखने में, वेरी अट्रैक्टिव चाइल्ड. थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होगा बट दैट्स ओके, शील डू वेरी वेरी वेल इन लाइफ. इनके छोटा बच्चा है अभी तो इसके लिए सिर्फ नाम इसका बैलेंस कर सकते हैं. वो आप मेरे से ऑफ एयर पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि नाम में कुछ गड़बड़ हो, इस वजह से बनते काम रुक रहे हैं.
6: ओके, ठीक
1: है, ठीक है जी. हाँ जी, थैंक यू सो मच. नाम बैलेंस कर दूंगा, तो ये जो नाम बैलेंस कर दूंगा ये आप कैसे कर पाते हैं? मतलब हाउ डज इट इम्पैक्ट, या ये कैसे करते हैं?
3: मैम देखिए, हम लोग, हमारा जो नाम होता है ना वो टू वे ट्रांसमीटर के जैसे काम करता
1: जी.
3: है. जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप टाइम स्क्वायर पे खड़े हैं, देर आर अ मिलियन पीपल देयर, राइट? आप सबको तो नहीं पहचानते हैं,
1: राइट?
3: अगर एक अननोन वॉइस आपको पीछे से सुनती है, स्वाति,
1: तो
3: आप इंस्टेंटली एकदम टर्न कर जाते हैं, राइट? तो वो इसीलिए कि आप स्वाति की वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं,
1: राइट?
3: तो अच्छा या बुरा वो आप उस वाइब्रेशन पे ही डिपेंड करता है. हो सकता है स्वाति आपको नाम सूट नहीं कर रहा, तो हम स्वाति को थोड़ा सा चेंज करके एच हटा सकते हैं या एच लगा सकते हैं या डबल ई कर सकते हैं. तो थोड़ा सा नेम को ट्वीक करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं.
1: ओके ओके, लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉलर. थैंक यू फॉर आंसरिंग मैम. मैं बीच बीच में अपने भी सवाल पूछ लेती हूँ यहाँ पर. ओके सर, सो नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन?
7: हेलो
1: जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज.
7: डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 73.
1: 28 जून 73, एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम?
7: क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप के बारे में पूछना है, चाहे रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ हो या बच्चों के साथ हो या इन लॉज के साथ हो.
3: मैम देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं.
1: अरे वाह.
3: ये आपकी है ना डेट ऑफ बर्थ?
7: जी
3: मैम, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है. इतनी जल्दी मतलब कटना, सर कटाना मंजूर है, झुकाना मंजूर नहीं है. वैसा आपका एक एटीट्यूड है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है. एक इंडिविजुअली आप बहुत ज़्यादा एक यू नो जिसको बोलते हैं कि आई नॉट कॉल की घमंड है बट यू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड ऑन योर सेल्फ. तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग सामने वाले इसको एरोगेंट समझते हैं, वहाँ पर आके रिलेशनशिप थोड़ी सी वीक हो जाती है. वरना आपकी डेट ऑफ बर्थ मैम हज़ारों में एक है, बहुत अच्छा कर सकती हैं आप लाइफ में.
1: तो बेसिकली टिप इज कि थोड़ा एरोगेंस,
3: थोड़ा गुस्से पे काबू रखिए.
1: ओके ओके, चले वर्षा जी, चले थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी.
8: हेलो
1: जी, आपका क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ क्विकली प्लीज.
8: माय डेट ऑफ बर्थ मार्च 12
1: 1974. 1974. And your question?
8: And I have similar question like the relationship. I go around in a loop.
3: Okay. Again, ma'am, you are pretty similar. Thoda sa, you know, jisko bole ki English mein bolte hai, nothing hurts more than an unwanted advice. So aapko thoda advice dene ki zyada aadat hai. Right? So thoda sa, ma'am, again, you know, 99 aa raha hai, to jitna ho sake utna aap red color ko avoid kijiye. Thoda gussa jaldi aa jata hai, us cheez ko thoda sa control kijiye.
8: Okay.
3: Okay. You'll do well in life, ma'am. Achhi date of birth hai overall. You're a pretty, you know, education bahut achhi hai and you use your knowledge as well.
1: कई बार होता है ना कि हम नॉलेज होती है तो हम जिनका भला सोचते हैं उनको हम एडवाइस बिना उनकी मांगे दे रहे होते हैं.
3: Exactly, इनके साथ वैसा ही कुछ है.
1: पर हम कंसर्न्ड होते हैं तो हम करने लगते हैं.
3: Exactly, मैम, ये किसी को भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं और हाँ. कभी कभी मैम सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है तो नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर देन मी.
1: चले अच्छा चलते हैं एक और कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो जी, आपका सवाल है. डेट ऑफ बर्थ प्लीज.
3: You said 24th Feb?
9: February 1986.
3: Okay. Friday को 6 वनीला आइसक्रीम बांट दीजिए करे आपके लिए.
1: मेरे में मैं प्लीज स्टूडियो का एड्रेस भी. मैं और पायस वनी यहीं मिलेंगे आपको.
3: सक्सेस तो है आपके पास, ऐसा नहीं है.
9: बट सेटिस्फैक्शन नहीं है. लाइक हाँ
3: वो सर देखिए 24 से 6 बनता है ना, तो 6 का एक एक बड़ी टैगलाइन है, ये दिल मांगे मोर. ठीक है. सो सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स ऑल टुगेदर. You do decent. I will not say कि ये आपकी कोई बहुत extraordinary date of birth नहीं है, but this is a pretty decent date of birth. So आपको कुछ ऐसा सच कोई लंबा चौड़ा problem नहीं है. अगर है तो आप मेरे से off air बात कर लीजिएगा, हो सकता है आपका भी name में कुछ problem हो. ना 24 born people are lucky.
1: Okay. All right, चलते हैं next caller की तरफ. Hello जी, please date of birth quickly and your question. हम चाहेंगे हम जितने cover कर सकते हैं कर लें. जी, please go ahead.
10: Hi, मेरा नाम देव है.
1: जी देव.
10: और मेरा date of birth है 26 November 1987. और मेरा question है how am I with my finances? मेरे पास पैसे कब आएंगे? मतलब
1: देखिए
3: पैसा संभालना तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, हार्ड वर्क बहुत आता है, मगर लक थोड़ी सी डाउन है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल है.
10: ओके.
3: राइट सर, जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहेंगे, मेहनत से मेरा मतलब है फिजिकल वर्क.
10: ओके.
3: यू नो यू आर वेरी वेरी गुड विद नंबर्स, यू आर वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
10: यू नो यू
3: only thing is ye thoda sa luck factor jo hai na. What do you do?
10: I work for a bank. I'm a planner.
3: Ha theek hai, that career, finance career suits you. Sports okay. Career would have been excellent for you.
10: Sports career.
3: Okay. Anything okay. In sports, you know, even if you get related to sports somehow. I know you're okay. Very good with numbers. Aapki finance management bahut achhi hai, so that career suits you, but even okay. Better would have been sports.
10: Okay.
3: Okay.
10: Thank you so much.
3: थोड़ा हार्ड वर्क है सर, बेयर विद इट.
1: चले नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी, क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ और नंबर डेट क्वेश्चन बताएं हमें प्लीज.
11: नमस्ते स्वाति जी.
1: नमस्ते जी.
11: अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ 9th अक्टूबर
1: जी
11: 1991. ये मेरे बेटी का है. शादी कब होगी?
1: शादी
3: सर इनकी शादी थोड़ा लेट ही होना अच्छा था, क्योंकि ये मंगलिक तो नहीं है?
11: नहीं
3: सर, इनमें अंशभर मंगलिक जरूर होंगे. ये इतने सारे 9 आ रहे हैं ना, तो फायर एलिमेंट एक्सेस होता है. जैसे थोड़ी एज होती है तो फायर एलिमेंट सेटल हो जाता है, तो अच्छा ही है इनके लिए. थोड़ी शादी लेट हो रही है तो अच्छी बात है. बाकी
11: कब तक
3: लास्ट ईयर में अच्छा चांस था इनकी शादी का.
11: अच्छा.
3: कुछ बन के बाद बिगड़ गई या समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड लास्ट ईयर.
11: तो
3: इस साल में थोड़ा
11: कब होगा? अप्रॉक्सीमेटली।
3: सर इस साल में तो अवॉइड ही करिए, ये साल शादी के लिए उनके अच्छा नहीं है, नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा चांस बनेगा फिर से।
11: अच्छा
3: ओके,
11: इसके लिए कुछ करना पड़ेगा
3: सर? उसके लिए रेमेडीज के लिए आपको फिर ऑफ एयर बात कर लीजिए मेरे से।
11: ठीक है, थैंक यू।
3: थैंक यू।
1: ऑफ एयर नंबर इज 6473308555। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज।
12: हेलो, हाय, दिस इज फ्रॉम माय वाइफ।
1: ओके,
12: हर डेट ऑफ बर्थ इज 18 December 1970।
1: हम्म, एंड क्वेश्चन?
12: क्वेश्चन इज रिलेशनशिप एंड प्रोफेशन, व्हाट इज गुड, बिजनेस और जॉब, और प्रोफेशन व्हाट इज गुड।
3: So relationship for her is as good as yours, no?
1: बात तो है।
3: Anyways, sir, ये देखिए relationship wise ये एक ideal date of birth नहीं है, right? और जहाँ तक profession का बात है, इनको किसी भी तरह का NGO जैसा काम बहुत suitable है, इनके लिए e-commerce जैसा काम बहुत suitable है, इनके लिए जहाँ पर कोई energies होती है ना, जैसे battery होती है या कार की बैटरी, कार गाड़ी की बैटरी, सॉरी अपनी गाड़ी की बैटरी, इस तरह की जहाँ पर एनर्जी आती है जिस चीज़ों में, वो काम इनके लिए बहुत सूटेबल हैं, एंड वाटर रिलेटेड काम भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं।
12: ओके
3: ओके
12: ओके, थैंक यू,
3: नो वरीज।
1: ओके, नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, आप क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ एंड सवाल बताएं।
13: हेलो,
1: हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड सवाल।
13: So this is also for my wife. Mm-hmm. Unki date of birth is September 22, 1987. Mm-hmm. And question hai health and.
3: Sir, ek second. 1987, you said, no?
13: 1987, September 22, 1987.
3: Okay.
1: जी.
3: Your question.
13: Question, sir. Health and.

0: एनीथिंग टू विद हैंड्स इज वेरी वेरी सूटेबल. हेल्थ थोड़ी सी इनको आई वुड से यू नो डिप्रेशन या एंजाइटी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं.
1: अच्छा
0: माइंड जो है ना सर वो हाइपर है.
1: ओके
0: ये एक बारी में जहां तक सोच सकते हैं एक नॉर्मल आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं पाता. राइट एंड साथ में एनर्जी लेवल्स आर वेरी वेरी हाई. समटाइम्स द बॉडी कैन नॉट टेक व्हाट माइंड इज गिविंग देम. यू नो व्हाट आई मीन. माइंड इज गिविंग लाइक 20 कमांड्स एट 1 सेकंड. राइट तो ऐसे लोग मतलब 0.1% चांसेस है कि स्टैमर भी करते हो.
1: ओके
0: ओके सो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए. ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है.
1: अच्छा सो हेल्थ वाइज बट ओवरऑल कुछ कर सकते हैं
0: सर. ओवरऑल नेम बैलेंस कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं. उसके लिए आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिए. मैं ऑन एयर रेमेडीज नहीं देता हूँ. ओके थैंक यू.
2: ऑलराइट नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी.
3: हेलो.
2: हाँ जी आपका सवाल बताएं. डेट ऑफ बर्थ.
3: डेट ऑफ बर्थ 29th of March 1991. और मेरा सवाल ये है कि मैटरनिटी लीव के बाद मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ वर्क मतलब फिर से अपने प्रोफेशन में लौटने की बट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग गुड इनफ अपॉर्चुनिटीज. तो वो कब तक आएगा.
0: मैम ये टाइम आपके लिए ठीक है. आई वुड नॉट कॉल इट द बेस्ट टाइम बट दिस इज अ टाइम वेयर यू नो आपको कुछ मोमेंट जरूर आएगी लाइफ में.
3: ओके
0: ओके बट ओवरऑल अच्छा ही है आपका. कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अगर थोड़ा सा इशू है तो
2: टेम्परेरी है.
0: थोड़ा यू नो कभी कभी बोलने पे काबू नहीं रहता आपके.
3: जी
0: बस उसके अलावा कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा यू नो कंट्रोल रखिए बोलने पे.
3: ओके
0: ओके थैंक यू मैम.
3: ओके ऑलराइट थैंक यू.
2: ओके एंड आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी.
4: हेलो.
2: या
4: मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3rd December 1977. एंड मेरे हस्बैंड का है 14th December 1973. और मेरा सवाल था रिलेशनशिप पे.
0: मैम उसके लिए दोनों का चार्ट बनाना पड़ेगा. उतना टाइम नहीं है अभी.
4: अच्छा ठीक है आप मेरा बता दीजिए.
0: 14 क्या
4: मेरा है.
0: नहीं आपका नहीं आपके हस्बैंड का. आपका 14/12/1977 है. उनका बताइए.
4: उनका है 14 December 1973.
5: हेलो.
2: हेलो
5: जी.
4: यस 14 December 1973 है उनका.
0: मैम ये 50-50 मैच है. कोई अलग नहीं होंगे बट कोई खास जिसको बोलिए बस चल रही है गाड़ी.
4: या
0: आई एम जस्ट गिविंग यू एट अ ग्लांस. आई जस्ट सॉ योर रोट योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई एम टेलिंग यू दिस. मैम रिलेशनशिप जहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक करनी है उसमें टाइम लगता है. आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिएगा 6473308555. और मैम ये सबके लिए एडवाइस है प्लीज़ जस्ट व्हाट्सएप मी. कभी कभी वो कॉल ज़्यादा होती हैं तो एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स आई ट्राई एंड रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप.
4: ओके
0: ओके मैम थैंक यू.
2: चलिए नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी. सॉरी कॉल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. आप चाहें तो दोबारा कॉल कर लें सर. उनको हमने लिया था पर हमारा शायद डिस्कनेक्ट हो गया. पर नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी.
6: हेलो
2: जी आपका डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन.
6: हेलो
2: योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज.
6: मेरी डेट ऑफ बर्थ है January 21, 1970.
0: एंड योर क्वेश्चन प्लीज.
6: क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा रिलेशन कैसा रहेगा मेरी वाइफ के साथ.
0: सर उसके लिए आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए. जैसे मैंने पिछले कॉलर को कहा था वो सर वो इतनी जल्दी कंपैटिबिलिटी नहीं निकाल सकते. उसके लिए दोनों का चार्ट स्टडी करने पड़ते हैं. सर आप भी बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं. आप ठीक है बढ़िया है सर. कंपैटिबिलिटी इतनी जल्दी मैं नहीं निकाल सकता सर. माफ़ी चाहता हूँ.
2: चलिए वैसे आप इट्स ऑलवेज एडवाइज अगर जो कंपैटिबिलिटी जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो आप अलग से ऑफ एयर भी सर से बात कर सकते हैं. उनका नंबर 6473308555 एनर्जी का नंबर है. यहाँ पे क्विक क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करते हैं सो दैट थोड़ा सा एक होता ना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है बस हमें. नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी. हेलो आपका जी आपका क्वेश्चन एंड योर

0: date of birth?
1: Yes, this is for my son.
0: Okay.
1: The date of birth is 3rd June 2000.
0: 12 June 2000?
2: So could you repeat the date, please? 3rd or 12th? 3rd June 2000, you said.
1: Yes, 3rd of June 2000.
2: And your question, please?
1: Marriage and profession.
2: Sir, anything to do with education is very, very suitable for him. Any advisory roles are very, very good. Any caregiving roles are very, very good. Mm-hmm. Okay?
1: Okay. Or marriage ka kuch chances in the near future?
2: Sir, this year is a good time for him.
1: Okay.
2: Chances are that this year he'll get new opportunities, new beginnings in life. So, yes.
1: Okay. Thank you.
2: Thank you, sir.
0: All right, chalte hai next caller ki taraf. Hello, ji. Your date of birth and question, please.
3: Am I online?
0: Yeah, please.
3: Haan ji, mera date of birth hai 20 May 1979. Okay. Aur mera question hai ki main ek makan dhoond raha hu. Matlab already hai mere paas, but ek aur dusra dekhna hai. So is a good time ki mere ko wo mil jayega? Kyunki certain house mere ko pasand aaya hai, wo
0: इच्छाएं.
2: सर, इस साल में आप एक से ज्यादा मकान बनाएंगे सर?
3: नहीं सर, एक ही बहुत है, एक ही मिल जाए वही बहुत है.
2: सर, मेरे से पहले वो आए हुए थे ना, मिस्टर सबरवाल. वो मेरे से अच्छा बता पाएंगे आपको मकान के बारे में. सर, आपका ये साल 8 का चल रहा है. 2 पे 8 थोड़ा सा भारी होता है, बट अर्थ एलिमेंट होता है. आपका 258 कम्प्लीट हो रहा है आज इस साल में. तो चांसेस आर कि आपका इस साल में नया घर जरूर बनेगा.
3: ठीक है, थैंक यू सो मच.
0: वो कहते हैं ना, ज्यादा सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर होते हैं, तो सोच गहरी मत करें. चले, मैं एक और कॉल लूंगी, लास्ट कॉल, और उसके बाद आई ट्राई के हम एक कॉल तो और ले लें. जी जी सर.
4: हेलो
0: जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन इफ यू हैव.
4: हेलो
0: जी, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन इफ यू हैव. 1964,
4: 20th October. And my wife is 24th July 1967.
0: Okay.
4: Health and wealth.
0: Okay, health and wealth. आप दोनों का बता सके तो दोनों का बढ़ाए. कंपैटिबिलिटी नहीं पूछ रहे.
2: सर, वेल्थ तो कमा लिया आपने.
0: अरे सर, कहाँ हैं आप ये बताएं.
4: You know me very well. Thank you, Ali.
0: अच्छा जी, okay, wow.
2: सर, वेल्थ तो होनी चाहिए आपके पास.
4: हाँ है.
2: तो बस सर, थोड़ी मुझे भी भेज दीजिए, मेरे पास नहीं है.
4: इंशाल्लाह.
2: नहीं नहीं सर, गुड गुड सॉलिड डेट ऑफ बर्थ एंड यू प्रीटी ब्लेस्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू.
4: थैंक यू.
2: यू वेरी वेलकम सर.
0: चले, नेक्स्ट कॉलर, एंड आई विल रियली ट्राई कि ये एक और ले लूँ. मैं कोशिश करती हूँ सर. जी हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ और मुझे वो बताएं. जी, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन बताएं.
1: यस, इट इज 19th March 1969. एंड रिगार्डिंग रिलेशनशिप
0: विद एवरीवन. हाँ, मतलब कैसे सबके साथ रिश्ते रहेंगे.
1: एग्जैक्टली
2: सर, आप यू नो यू आर अ ट्रू, जिसको बोलते हैं ना जेमिनाई होते हैं थोड़े से. आई विल नॉट कॉल यू टू फेस्ड, बट आप बहुत जल्दी स्प्लिट कर लेते हैं. वन साइड ऑफ यू इज़ पिटी एंग्री यंग मैन वाली, एंड दूसरी साइड इज पिटी जेंटल, पूरी जिसको बोले निरूपरो स्टाइल.
0: ममतामयी. जी,
1: एब्सोल्युटली यस, टू एक्सट्रीम्स.
2: यस, तो थोड़ा सा सर आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखिए एंड कंट्रोल योर एंगर. बाकी रिलेशनशिप सर, आप जो 19 वाले होते हैं वो बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं.
1: Okay.
2: तो ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको you're pretty balanced that way, and yes, थोड़ा सा आपको एक एडवाइस दूंगा, डोंट से थिंग्स विच यू डोंट मीन.
0: कई बार हम गुस्से में बोल जाते हैं, है ना?
2: वही exactly.
0: जी चले, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स टुडे. आई हैव टू स्टॉप टेकिंग कॉल्स एनी मोर, बट थैंक यू अनुज जी, आप इतना टाइम निकाल के आते हैं और हम लोग यहाँ पे एक कम्युनिटी की तरह सब मिलके अपने सवाल पूछते हैं और आप सबके जवाब भी दे रहे होते हैं.
2: एक मैं सारे ऑडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ कि यू नो एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई वर्क, आई पे माई बिल्स थ्रू इट. तो क्वेश्चन मैं सबके आंसर करने की कोशिश करता हूँ, बट आप 3-4-5 क्वेश्चंस मेरे से नहीं पूछे तो अच्छा है. यू नो, स्टिक ऑन टू वन थिंग एंड आई एम हैप्पी टू आंसर यू.
0: वाओ, तो ठीक है, ये बिल्कुल फेयर इनफ है कि यहाँ पे आप एक बार में एक सवाल पूछें. हर बार सेगमेंट होता है, हर ट्यूसडे को आप एक बार में एक सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं. और उसके अलावा अगर आप अनु जी से ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर रहता है
2: 6473308555. आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा वापस. कभी कभी कॉल लेना पॉसिबल नहीं होता.
0: चले, थैंक यू सो मच अनु जी.
2: थैंक यू स्वाति जी. थैंक यू एवरीवन. एंड कहा सुना माफ, किसी के लिए मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफी चाहता हूँ.
0: जी चले, थैंक यू. टू एडवर्टाइज विद फिल्मी नुक्कड़ ऑन CMR एट 5 PM योर प्राइम ड्राइव टाइम शो. कॉल स्वाति एट 6478305042. दैट्स 6478305042. इट्स द फ्री टाइम. मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया.
5: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का. मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी. पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है. अब बारी आपकी. कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600.
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को.
6: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group का proud member.
7: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना. 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 6473412785, 6473412785 or visit amitkurana.com.

0: शुक्रिया।
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861।
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास किसी माहदे तक पहुंचने के लिए महदूद वक्त बचा है, यानी सिर्फ 2 या 3 दिन। दूसरी जानिब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। ईरानी फौज की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया है कि हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने दावा किया है कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराक से आए थे। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि मुत्तहदा अरब अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान से जुड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में 22 खवारिज को हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान में अदम तहफ़ के बायस ट्रांसपोर्टर्स का ट्रकों के ज़रिए बलूचिस्तान से मादनियात की तरसील रोकने का ऐलान। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मादनियात के शूबे से मुंसलिक कंपनियों को तहफ़ फराहम करने के लिए फ्रंटियर कोर तैनात करने का फ़ैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि एक सूबे के वज़ीर आला का रास्ता रोक कर हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। इससे पहले उन्हें अडियाला जेल जाने से रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली हिस्से में ही रोक लिया गया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो की एक मस्जिद में फायरिंग से 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। सिलट में खेले जा रहे मैच के 4th खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 7 विकटों के नुकसान पर 316 रन बनाए हैं, जबकि जीतने के लिए उसे मजीद 121 रन दरकार हैं। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
3: खास खास खबरें आपके लिए जुबैरुद्दीन साहब पेश कर रहे थे। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 201.25 रुपए। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 201.25 रुपए। कॉल कर लीजिए 905-306-0000, 905-306-0000।
4: मंगल के दिन ऑल द सॉल्यूशंस से हम सदीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो से जुबानु जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे अजान मगरिब के बाद। और भी कुछ मौजूद हमारे विराम की बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ। मेरे छुपे समीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जहाँ अल्लाह रब करीम ने इंसानियत की तकमील फरमाई, नबूवत की तकमील फरमाई, वहाँ इखलाक़ जलीला की तकमील भी फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार किरदार की इंतहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इरशाद की इंतहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब आसमानी कुतुब का हर्फ आखिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलम का ये मकाम है कि इसे सदाकत नबूवत के लिए दलील के तौर पर पेश किया गया। सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है कि नबूवत से पहले तुम लोगों में एक उम्र बसर कर चुका हूं, क्या तुम समझते नहीं। गोया ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 बरस की तमाम उम्र भी मुरक्का इखलाक है। नबूवत इखलाक का नतीजा नहीं, इखलाक नबूवत की अता है, और नबूवत फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कमाल अता इलाही है। जब अल्लाह रब करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक का मयार बनाकर पेश करे तो वह इखलाक कितना मुकम्मल होगा, इसका अंदाजा मुश्किल नहीं। दरअसल इखलाक एक ऐसी राह अमल है जिस पर चलने वाले इंसान का किरदार मखलूक खुदा के लिए बेज़रर और मनफियत बख्श होता है। इंसानी सोच इखलाक का जो मयार देती है वो काबिल तासीर हो सकता है, लेकिन जब पैगंबर इखलाक का मयार दे तो मयार खुदा की तरफ से होता है, और खालिक बेहतर जानता है कि मखलूक के लिए कौन सा किरदार बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में जहां तारीख गवाह है, वहां कुरान भी शायद है कि ऐ पैगंबर तुम आला अखलाक में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इरशाद तकमील इखलाक के ज़मन में एक मीनार नूर की तरह दरख्शां है। इरशाद में उसने इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं, और ये کہیے کہ میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکار میں اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ شاید ہی کوئی ایسی اخلاقی صفت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM۔ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
0: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste 4141 Dixie Road Mississauga। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
4: सजना है मुझे सजना के लिए।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009। Your login ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki guarantee hamari।
5: Apne pyar

0: कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी एन चेत का, उस पर तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहो साल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख ली शीशा गराने शहर के, हाथ का ये कमाल भी। उसको ना पा सके थे जब, दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात सी कुछ मुहाल भी। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला, तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। उसकी सुगन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल भी। उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रुख के और चाल भी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी।
1: कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी।

0: क्या आपके विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। इट्स 416-206-3200।
1: जी हाँ, 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रास्ते के नंबर है। सुभान भाई हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी विंडोज नई हैं, लीक नहीं हो रही हैं, ना सिर्फ आपकी बिजली का बिल बचेगा, इसके अलावा एक सुकून आपको महसूस होता है। सुभान जी हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुभान जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
2: थैंक यू बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इंपॉर्टेंट है, विंडोज के हवाले से हम बात करते हैं, लोग बाजकल इसको सीरियस लेते नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सर्दी गर्मी से जो है वो बच सकते हैं और बिजली का बिल जो है वो भी फॉर श्योर जो है खत्म होता है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा विंडो क्वालिटी के बारे में बताइए, जो विंडोज आप लोग इंस्टॉल करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होती है?
2: तो बटी साहब, बहुत तरीके की क्वालिटीज मिलती है मार्केट में। एज अ कस्टमर आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और चेक करें कि भाई विंडोज जो है वो एनर्जी स्टार सर्टिफाइड है कि नहीं है। सो एनर्जी स्टार का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो विंडोज हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको सर्टिफाई करती है वेदर के मुताबिक। सो अगर -30 है, अगर उसमें आपकी विंडो ही नहीं कामयाब हो रही, तो फिर पॉइंट क्या है विंडो लगाने का। अभी हम, मुझे पता आज हम +30 में है, लेकिन हम सबने -30 का दौर देखा है, अभी पीछे निकला है, तो आई डोंट थिंक कि इससे धोखे में आएगी, वेदर ऐसे ही रहने वाला है।
1: नहीं, गर्मी भी उतनी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। सो उसमें क्या होता है कि जब जो अगर फ्रेम अच्छे नहीं है विंडो के, तो वो बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि इतनी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, गर्मी में फैलते हैं और सर्दियों में वो टाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो विंडो बेकार हो जाती है।
1: मतलब सामने नंबर नोट करें, 416-206-3200, 416-206-3200 पर आपका कर लीजिए। अच्छा, एक बड़ा मसला रहता है वारंटी का, आप जो विंडो इंस्टॉल करते हैं वारंटी कितनी है उसकी?
2: सो बटी साहब, बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं या विंडो के फ्रेम है, ब्रिक मोल्ड है, वो सारे 25 इयर्स के लिए कवर्ड है। उसको मार्केट में लोग लाइफ टाइम कह के भी बेचते हैं, लाइफ टाइम वारंटी। तो लाइफ टाइम अगर आप गूगल करें तो 25 साल ही होता है, तो हम भी 25 साल की वारंटी देते हैं और उसमें सब कुछ कवर्ड होता है।
1: 416-206-3200 रابطے के नंबर है। आजकल के मामला तो आपको पता है, इकोनॉमी कैसी है, पैसे लोगों के पास कम है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो लोग रेनोवेट कर रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, विंडो अगर वो इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, कोई फाइनेंसिंग का, कोई इंस्टॉलमेंट का कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोई आपके पास है?
2: बिल्कुल बट्टी साहब, अगर फर्ज करिए आपकी सारे घर की विंडो 10,000 में होती है चेंज, तो अगर आपने उसमें इनिशियल, अगर आपके पास कुछ 1500 है या 2000 है, अगर आप दे देते हैं, तो आपकी बहुत ही आसान किश्तों में जैसे 70-75-80 डॉलर के हिसाब से किश्त बनेगी महीने की, और आपकी सारे घर की विंडोज चेंज हो सकती है उतने में। और मैं ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा या कॉल अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल चीज हमने ऑलरेडी की हुई है आपके काफी कस्टमर्स के साथ।
1: बिल्कुल सही है। और इसमें आप जैसे दो तरीके का हो गया, एक तो ये हो गया कि आपने कुछ डाउन पेमेंट दे दी और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स बन गई, और कुछ जो है वो इंस्टॉलमेंट ही आपने बना दी, तो दोनों तरीकों से आप जो है लोगों की हेल्प कर सकते। ठीक,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 416-206-3200 रابطے का नंबर है। जनाब, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ साल पहले मैंने भी विंडोज जो है सवर्ण जी से ही जो है हमने रिप्लेस करवाई थी। अच्छा, जबरदस्त काम है इनका, तो जरूर आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। 416-206-3200 कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप?
2: बस बटी साहब, आपने सर्टिफाई कर दिया, एक तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा तगमा है। दूसरा जो है वो, अगर किसी को भी चेक करना है, हमेशा गूगल की रेटिंग्स पे जाइए। मुझे पता है कि आजकल लोग बहुत फेक भी डालते हैं, लेकिन हम इसके बाद चीज का वादा करते हैं कि आपको जो रेटिंग आप पढ़ते हैं, जिसके बारे में रिव्यू पढ़ते हैं, हम आपकी उनको फोन नंबर देंगे, आप उनसे डायरेक्ट रابطہ कर सकते हैं।
1: वेरी राइट, नंबर नोट कीजिए, अभी कॉल कर लीजिए, 416-206-3200, 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रास्ते का नंबर है। बहुत शुक्रिया सुभान जी, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं।
2: थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।
1: नंबर नोट कर लीजिए, 416-206-3200।
3: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو بھارت میں آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے. شرکت کے حوالے سے فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے اجلاس اسی ماہ میں دو مرحلوں میں ہوں گے. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس 21 مئی کو ہوگا, جبکہ بورڈ میٹنگ 30 اور 31 مئی کو بھارت کے شہر احمد آباد میں ہوگی. آئی سی سی اجلاس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فارمیٹ میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال ہوگا. موجودہ فارمیٹ میں ہر سیریز میں کم از کم 2 ٹیسٹ میچز کھیلنا لازمی ہیں. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں زمبابوے, آئرلینڈ اور افغانستان کو شامل کیے جانے پر بھی غور کیا جائے گا. بورڈ میٹنگ میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے شرکت کرنا ہے, جنہیں آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ بھی موصول ہوا ہے. تاہم محسن نقوی کے بھارت جانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
4: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कहम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
7: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
8: जी हाँ, 416-825-9275 रावते के नंबर है। सनशाइन ईद बाजार इस दफा दो जगह पे हो रहा है, पुराना पायल बैंक रोड, तो सभी को पता होगा, 22 और 23 तारीख को वहाँ, और फिर आइकॉन स्पेस, क्या कमाल का इवेंट स्पेस है, 24, 25 और 26 तारीख को, और हजारों की तादाद में लोग एवरी डे वहाँ पे आते हैं, और इस पाल भी यही कुछ होने जा रहा है। शाहीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी भरपूर सपोर्ट हमें मिलती है, और उसी की वजह से हमारे शोज भी कामयाब जाते हैं, क्योंकि जब तक के टीम वर्क ना हो और साथ ना मिले किसी का, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
8: नहीं, आपका माशाल्लाह से सालों साल से आपका कामयाब शो है, सभी जानते हैं इस बात को, और फिर बहुत लोग आते हैं, उनके बिजनेसेस भी प्रमोट होते हैं, तो इस दफा भी लगता है आपके कोई 150-200 स्टॉल तो हो जाएंगे, तो कैसी तैयारी है, क्या कुछ है, बताइए।
9: जी जी जी जी, माशाल्लाह से जो अभी हम आ ही रहे थे, प्लासियो में होकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी सारे स्टॉल कंप्लीट हो गए, तकरीबन 100 के करीब स्टॉल हैं प्लासियो में, और प्लासियो में हमारा होने जा रहा है 22nd-23rd ऑफ मे को प्लासियो इवेंट सेंटर में, जो कि पुराना पायल था जैसा कि अभी आपने बताया है, तो वहाँ पे माशाल्लाह से काफी कुछ हल्ला गुल्ला भी होने वाला है, बच्चों के लिए मैजिक शो है, बच्चों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, बच्चों के लिए गिव अवे हैं, तो आप लोग आना ना भूलिए, 22 और 23 हमने खास तौर पर बच्चों के खास प्रोग्राम रखे हैं, उसमें जरूर आइएगा। ये हमारा हो रहा है ग्लासियो इवेंट सेंटर में, मजीद मालूमात के लिए आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। और उसके बाद हम दोबारा से आ रहे हैं, कहाँ पर हम आ रहे हैं, आइकॉन इवेंट स्पेस में, जो आइकॉन इवेंट स्पेस जिसमें हमने ईद उल फितर का ईद बाजार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इंतहा कामयाब गया, हजारों लोग आए और लोगों की खूब सेल हुई। इस दफा हम हैं 24, 25, 26 मई को 3 दिन के लिए हम आइकॉन इवेंट स्पेस में हैं, तो आना ना भूलिए। आप सब लोग आइए, आप लोगों के लिए ढेरों ढेर इनामात हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, डायमंड के, इलेक्ट्रॉनिक्स इनामात और बहुत कुछ आपको हमारे वेंडर की जानिब से भी मिलने वाला है। लेकिन इसमें आना होगा आपको पांचों दिन आके आप अपना नाम और फोन नंबर लिखाएंगे, फिर हम कुरा में जो है ना आपका नाम निकालेंगे, बिल्कुल आपका कंपटीशन भी होगा वहां पर। और ये सारी चीजें जैसा कि आप जानते हैं कि सनशाइन रेडियो की रिवायत

0: एंट्री है, फ्री पार्किंग है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप 416-825-9275 416-825-9275 पे भी रब्ता कर सकते हैं। शाहिन साहब कुछ और ऐड करना चाहेंगी, कुछ और कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहूंगी कि चूंकि बिल्कुल फ्री है, सब कुछ आपके लिए फ्री है, बस आप लोग आइए। चूंकि देखिए जो बिजनेस वाले लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, पाकिस्तान इंडिया अरबी के इलाकों से सब जगह से आपके लिए चीजें मंगाते हैं, फिर वो अपने घर से उठा के लेकर आते हैं, अपने स्टोरों से उठा के लेकर आते हैं, आप लोगों के लिए स्टॉल सजाते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वहाँ जरूर आए और उनको बिजनेस दें, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, अगर आप लोगों की इनको सपोर्ट मिलेगी तो यकीनन ये लोग आगे बढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी जब मेहनत कर रही हो तो उसकी सपोर्ट जरूर करनी चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, नंबर मैं बताता हूँ, 416-825-9275 416-825-9275 पे आप अभी रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा प्लेसियो जो पायल बैंक्वेट हॉल था और उसके बाद आइकॉन, ये 5 दिन का जो है इनका स्पेशल प्रोग्राम है ईद बाजार का। 22 और 23 तारीख को प्लेसियो इवेंट सेंटर है जो कि 3410 सेमिनिक कोर्ट मिसागा में है, और आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड पे है। यहाँ मई 24, 25 और 26 को सनशाइन ईद बाजार हो रहा है। शाहिन साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और विश यू गुड लक, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, यू वेलकम, सलाम, अल्लाह हाफिज। 416-825-9275 पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे छोटे प्यारे सामने, जिंदगी में बाज़ औक़ात इंसान सोचता कुछ है हो को जाता है, इंसान दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन शायद उसके वापसी जवाब में उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिल नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही कर रहे हैं काम, अपनी तरफ से आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी का फायदा कर रहे हैं, तो आप यकीन कर लीजिए आपका कभी नुकसान नहीं होगा। और बाज़ औक़ात आपके बहुत अच्छे, बहुत दोस्त, बहुत साथी जिनके लिए आप कुछ काम करते हैं, और वो अगर आपके साथ ऐसा रवैया अख्तियार कर, आपको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इसका किसी से ताल्लुक नहीं है, ये तमीज मैंने सिर्फ इस गाने के लिए बांधी है जो मलका तरन नूर जहां आपके लिए पेश कर रही हैं। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन होता रहा, तू ही बता। आइए सुनते हैं।

0: क्या है?
1: ग्रिड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में आप देखें नंबर 4165930003। माहिरीन सेहत ने बच जाने वाले खाने को प्लास्टिक के डब्बों में फ्रीज करने से मुतालिक एहतियात का मशवरा दिया है। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि बच जाने वाले खाने को प्लास्टिक के डब्बों में फ्रीज करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सार्फिन के हकूक के इदारे के मुताबिक फ्रीजर में खाना महफूज करने के लिए शीशे या स्टील के बर्तन ज्यादा महफूज और बेहतर इंतखाब हैं। माहिरीन के मुताबिक शदीद ठंडा या बार बार गर्म करने से प्लास्टिक कमज़ोर हो जाता है और इससे नन्हे प्लास्टिक ज़रात यानी माइक्रोप्लास्टिक्स खारिज हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ज़रात खुराक में शामिल होकर इंसानी जिस्म में दाखिल होने का खदशा रखते हैं। तहकीकात से मालूम हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक्स माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, जबकि इंसानी सेहत पर मुमकिन असरात के बारे में साइंसदान अभी मज़ीद तहकीक कर रहे हैं। ये ज़रात इंसानी खून, फेफड़ों, नाल और माँ के दूध में भी पाए जा चुके हैं। नैनो प्लास्टिक्स दिमाग की हिफाजती निज़ाम तक भी पहुँच सकते हैं, जिससे मुस्तकबिल में आसाबी बीमारियों के खतरात हो सकते हैं। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
2: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157
3: SSR Auto Service 921 Pape Avenue Southeast Corner of Pape and Martimore Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain Drive-through maintenance aur namaz ki sahulat bhi Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se rabta kijiye 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है। रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे प्लाजा मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat, aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600, क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600, क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374.
3: Apna hum safar, global travel and tour.
4: Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain. IATA approved agent tamam major airlines

0: इस स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710
2: 6777 The team of two, just for you. Another Chella Job, the team of two, just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
3: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Chella at 647 273 2300.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: चौबीस घंटे मैंने शातर रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं। फेसबुक पर पेज है रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 TV, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बॉल जोन बॉक्स के साथ साथ एप्पल TV, अमेजन फायर TV, रोकू TV के साथ साथ ट्यूब रैप के थ्रू रॉजर्स पे मैंने शाह देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 TV। रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तलाब भट्टी 6472957861। लिए चलेंगे आपकी न्यूज़ की तरफ। जो पेश कर रहे हैं जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब।
3: You're listening to CMR FM 101.3।
2: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
4: खुदा न करे अगर आपका कार